और कुछ शायर और शायरी आप लोग को हम सुनाएंगे। दोस्तों प्यार भरी गीतों का महार प्रोग्राम, यहां से हम चलते हैं, कुछ शायर और शायरी हो जाए कि मत सोच तू इतना जिंदगी के बारे में, मत सोच तू इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा हमारे यारो, कि कहते हैं कि एक दिन हम भी कफन ओढ़ जाएंगे, एक दिन हम भी कफन ओढ़ जाएंगे, हर एक रिश्ता सी जमीन से तोड़ जाएंगे, हर एक रिश्ता इस जमीन से तोड़ जाएंगे, जितना जी चाहे सता लो यारो, एक दिन रुलाते हुए सबको हम छोड़ जाएंगे। ये हमारा पहला शेर है आज की।

और उड़े जब जब जुल्फे तेरी, और ओ जब जुल्फे उड़ते हैं तो कुमारियों का दिल क्यों मचलते हैं, आपको पता है तो जरूर बता देना कि क्यों मचलते हैं, कि कहते हैं कि जब आपका नाम जुबान पर आता है पता नहीं दिल को क्या मुस्कुराता है। जब आपके नाम जुबान पर आता है पता नहीं दिल क्यों मुस्कुराता है, है तसल्ली होती है मन को कोई तो है अपना जो हंसते हुए हर वक्त याद आता है। अक्सर हम अपनी रात यूं बर्बाद करती है, अक्सर हम अपनी रात क्यों बर्बाद करती है, बैठ के किसी कोने में उनको याद करती है, उनके वापिस आने की उम्मीद तो छोड़ दी कब की, फिर भी ना जाने क्यों हम अपना वक्त बर्बाद करती है। हम चलते हैं नाइटिंगेल, लता जी का एक सॉन्ग है जो एक हिट फिल्म था, फिल्म के नाम है बॉबी।

जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप घर से निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुक न चली जाए।

और अफसरे कोई लड़की इस हाल में कोई जरूर कभी 16 वर्ष के थे दोस्तों। फिल्म के नाम है बॉबी और ये यानी कि एक हिट सुपर हिट फिल्म थी ऋषि कपूर का दोस्तों और डिंपल का। हम कहते हैं कि किस्मत के लकीरों पर, किस्मत के लकीरों पर यकीन, किस्मत के लकीरों पर यकीन करना छोड़ दिया है जॉनी, किस्मत के लकीरों पर और यकीन कर दिया है जॉनी। जब इंसान बदल सकता है तो ये लकीरें क्यों नहीं, ये लकीरों क्यों नहीं दोस्तों। दर्द में कोई मौसम प्यारा नहीं होता, दर्द में कोई मौसम प्यारा नहीं होता, दिल हो प्यासा तो पानी से गुजारा नहीं होता। कोई देखे तो हमारी बेबसी, कोई देखे तो हमारी बेबसी, हम सभी के हो चाहते हैं पर कोई हमारा नहीं होता। हम सब को हो जाते हैं पर हमारा कोई नहीं होता है दोस्तों। कि कभी किसी से प्यार मत करना, हो जाए तो इनकार मत करना, कभी किसी से प्यार मत करना, हो जाए तो इनकार मत करना, निभा सको तो चलना उसकी राह पर, वरना किसी के जिंदगी बर्बाद मत करना। फूल तुम्हें हम भेजाए हैं यहां रेडियो फाहुन के माध्यम से और ये है मैथी मुकेश और लता जी का ये सुपर हिट सॉन्ग।

और फूल भी, और भेजा है खत में और फूल नहीं, वो किसी का दिल है दोस्तों, यानी कि फूल के खुशबू में किसी के दिल भी चला जाता है कि कहते हैं अई दोस्त मैं तेरी खुशियां बांटे शायद ना आ सकूं, अई दोस्त मैं तेरी खुशियां बांटते शायद ना आ सकूं, हाँ ये वादा रहा जब गम आए तो खबर कर देना सारी की सारी, सारी की सारी ले जाऊंगा मैं, यानी कि तुम्हारा गम। तो दोस्त इसी को कहते हैं दोस्तों कि बहुत रोया है दिल, बहुत रोया है दिल उन्हें याद करके, बहुत रोया है दिल उन्हें याद करके, कुछ ना मिला रूप से भी फरियाद करके, वो कह गए मैं ना दूंगी साथ आपका, कोई पूछे उन्हें क्या मिला हमें, बर्बाद करके हम चलते हैं। और एक सॉन्ग की ओर, वो है फिल्म के नाम है लव स्टोरी जिसमें, और वो है कुमार गौरव वियंती इसमें काम किया है, और ये भी एक बहुत सुपर हिट फिल्म थी दोस्तों। ये गीत हम आप लोग को जरूर सुनाएंगे।

और मैं भी आई आई आई लव स्टोरी फिल्म का नाम है 1981 का। और जितने लोग इस समय पे 18-19 बरिश के थे दोस्तों, तो फुल हाउस के साथ हमारा श्रीनाम का जो जितना फिल्म हॉल्स थे वो एकदम फुल थे दोस्तों। इस फिल्म भी हम भी कई बार जाकर देखे है लेकिन मन नहीं भरा। एक मोहब्बत भरी प्यार का ये फिल्म है और हम हसरत करते हैं जिनकी वो तो छुप गई कहीं। अगर तुम साथ दे तो नजर आ जाएंगी वो कहीं कि अपनी तमन्ना से कभी कुछ नहीं चाहा था हमने। अपनी तमन्ना से कभी कुछ नहीं चाहा था हमने। उसकी खुशी ढूंढते रहते तो बदनाम हो गई हम। बदल पे छलके है और नैतिकी लता जी का ये एक जोंग है दोस्तों। आओ मिलकर सुना जाए जिसमें अनिल ऋषि मीनाक्षी काम किए हैं। और इस फिल्म का हम खोजते हैं ये कौन फिल्म का गीत है। अगर जो हमें मालूम हो गया दोस्तों तो आपको हम जरूर बता देंगे। लेकिन और इस फिल्म में काम किया है मीनाक्षी काम किया है दोस्तों। और आओ मिलकर सुना जाए इस गीत को।

और बादल पे छलके आ, और इसमें अनिल कपूर, ऋषि ऋषि, मीनाक्षी सोनम, नाइटिंगेल लता जी और श्रीस का ये गाया यानी कि फिल्म है और बदल पे छलके है, बदल पे छलके है सॉन्ग का नाम है। और दोस्तों हम चलते हैं कुछ शायर और शायरी के ओर और कहते हैं कि पलकों से आंखों की, पलकों के आंखों की हिफाजत होती है, पलकों से आंखों की हिफाजत होती है, धड़कन दिल के अमानत होती है, हाय और हमारा रिश्ता भी बड़ा प्यारा है, कभी चाहत तो कभी शिकायत होती है। और कितने लोग हैं जो अलिंस्तांद है दोस्तों, जो अकेले रहते हैं, अकेलापन है, मेंस दी अलिंस है फॉर दी मेंस हैपिक ही नाम लिख अनपार मोशाइस एंड खाद रोम कि ना साथ है किसी का ना सहारा है कोई, ना साथ है किसी का ना सहारा है कोई, ना हम हैं किसी के ना हमारा है कोई। कहते हैं चेहरे के हंसी से, चेहरे के हंसी से हर गम छुपाऊं, बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ बोला पर कुछ ना बताऊं, कुछ ना रोतो, कुछ ना रूठो कभी पर सबको मनाओ, खुद ना रूठो पर किसी को, पर सबको मनाओ, ये राज है जिंदगी का, बस जीते जाओ। और कभी कभी प्यार करते हैं तुम किसी से, लेकिन वो अमानत किसी और का है।

चाहकर भी आपको भुला न सकेंगे। आप ही हो मेरे लबों की हंसी, आपसे बिछड़कर कभी मुस्कुरा न सकेंगे। और जो लोग अकेले रहते हैं वो कहते हैं, फिर से तेरे महफिल में चला आया हूँ, फिर से तेरी महफिल में चला आया हूँ। अंदाज वही है, बस अल्फाज नया लाया हूँ। ऐ काश दूर रहने वाले ठड़को एक बात, तुहके एक बात कहना चाहता हूं। अगर मेरा ख्याल आए तो अपना ख्याल जरूर रखना।

ये तो सही बात है दोस्तों, जैसा मेरा प्यार है वैसा हमारा गुस्सा वो भी है दोस्तों। आपको यहाँ गीत में बताया गया है कि कहते हैं किसी को चाहो तो इस अंदाज से चाहो, किसी को चाहो तो इस अंदाज से चाहो कि उसको जब भी प्यार मिले तो तुम याद आ जाओ। और कहते यार करते हैं तुम्हें तन्हाई में, याद करते हैं तुम्हें तन्हाई में, दिल डूबा है गमों की गहराई में, हमें मत ढूंढना दुनिया के बीच में, हम मिलेंगे तुम्हें तो तुम्हारी ही परछाई में। तो दोस्तों ये कुछ शायरी और शायरी आप लोग के लिए हम चलाएं।

क्या मांगू, इस गीत को मांग किया है। तो आज हम आप लोग को कुछ तक तक नहीं घंटे का गीत सुनाएंगे, आओ मिलकर सुना जाए कौन सा गीत है दोस्तों। और प्यार भरी गीतों का भान प्रोग्राम यहां से हम चलाते हैं।

और तेरी जान मैं बन जाऊं, कुछ दर्द भरी शायर भी आज लोग को बीच बीच में हम सुना देंगे दोस्तों, कि सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम अपना दर्द किसी को बता नहीं पाते हैं। पांच छटक वो रहे दर्द तब मन्ना रहता है, पास जब तक वो रहते दर्द, दर्द जो है तमन्ना रहता है। फायदा या दोस्तों जता है फिर एक आंख की काजल की तरह। और दोस्तों हम चलते हैं, तुझको देखा तुझको चाहा, और अगर जब तुझको देखा है तुझको चाहा है तो बीच में और क्या होता है, और तो कुछ नहीं हो सकता है ना।

देखा तुझे चाहा, परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सॉन्ग है। फिल्म के नाम है छोटी सी मुलाकात। छोटी की मुलाकात के बाद में हम चलते हैं कुछ बेवफाई शायरी आप लोग को हम सुनाएंगे कि फूल के साथ कांटा भी नसीब होता है, फूल के साथ कांटा भी नसीब होता है, खुशी के साथ गम भी नसीब होता है। मजबूरी ही ले डूबी है और आशिक को, मजबूरी ही ले डूबी है आशिक को, वरना खुशी से बेवफा कौन होता है। हमारे यारो तो हम चलती हैं बाहर आने तक क्या होगी, बाहर आने तक क्या होगी, अनुराधा पौडवाल की ओर हम बढ़ते हैं।

और सनम तुझे कितना भी चाहूं और मोहब्बत इनायत कर्म दिखते हैं तो उसके बाद हम चलते हैं और एक सॉन्ग की ओर हम बढ़ते हैं। ये जो मोहब्बत में तीसरा होता है, ये जो मोहब्बत में तीसरा होता है, मुझे उस तीसरे से नफरत है दोस्तों, कि तेरे पास आका मेरा, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। पद्माश्री मोहम्मद रफी आशा जी का गाया हुआ सॉन्ग। इस फिल्म में माला सिन्हा धर्मेंद्र ने काम किया है और आकर सब कुछ मिलकर सब लोग मिलकर इस गीत को और सुना जाए। उस फिल्म में न सिर्फ माला सिन्हा धर्मेंद्र काम किए, महमूद जी भी काम किया है और कितने लोग काम किए। सुपरहिट फिल्म 1957 का ये गीत है दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए।

तेरे पास आकर मेरा वक्त और वो तो गुजर जाता है कि कहते हैं जिंदगी में प्यार का पौधा लगाना सबसे जिंदगी में प्यार का पौधा लगाना लगाने से पहले जमीन को परख लेना क्योंकि हर मिट्टी की फितरत में बेवफा नहीं होती है। जिंदगी में प्यार की पौधा लगाने से पहले जमीन को परख लेना क्योंकि हर मिट्टी के फितरत में वफा नहीं है। हमारे यारो ती चलते हैं और आगे को एक सॉन्ग लेकर कि भरी दुनिया में आखिर दिल होता है पद्माश्री रफी जी का आवाज में। इस फिल्म में आशा परीख मनोज कुमार ने काम किया है।

और फड़ी दुनिया में आखिर दिल और अगले दुनिया में आखिर दिल पर माशी रफी जी का सॉन्ग ये गीत था हमारे यारो। और उसके बाद हम अपना प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं, तो चलते हैं आओ मिल जाएं। फिल्म के नाम है प्रीत, प्रेम गीत की ओर है। जी हाँ दोस्तों, प्रेम गीत की ओर है कि तेरे बेवफाई के गम नहीं, मगर तू बेवफा है ये दुख भी कम नहीं। बहते है तेरी बेवफाई का गम नहीं, मगर तू बेवफा है ये दुख भी कम नहीं है। ये कभी कभी लोग बेवफाई करते हैं दोस्तों, तो दिल जो है वो बहुत टूट जाता है। और जिसको दिल टूट जाता है उसको जोड़ने में बहुत दिन लगता है। उसको कोई दवा दारू ठीक नहीं कर सकता है। अगर तो दिल को ठीक करना है तो उसको प्यार जो प्यार है वो प्यार को फिर से वापस लाना है, फिर वो प्यार को जगाना है। उस प्यार को उस दिल को उस भरोसा देना है कि दिल अब तुम्हारा हम कभी नहीं तोड़ेंगे, ये दिल के बात है। तो हम चलते अनुराधा पौडवाल की ओर है।

और आओ मिल जाए, आओ मिल जाए हम दोनों। फिल्म प्रेम गीत का ये सॉन्ग है जगदीप सिंह अनुराधा पौडवाल का गाया हुआ सॉन्ग है दोस्तों। तो कभी कभी एक दर्द भरी शायरी होता है, जब किसी को दिल टूट जाता है तो जुड़ने में बहुत दिन लगता है, कि कहते हैं मोहब्बत की मोहब्बत की मोहब्बत की सबसे बड़ी कमी ये है, मोहब्बत की सबसे बड़ी कमी ये है कि भरोसा गुजर जाने के बाद भी मोहब्बत रहती है, भरोसा गुजर जाने के बाद भी मोहब्बत रह जाती है दोस्तों। कभी कभी कि लोग कहते हैं कि लोग कहते हैं भी देख कुछ महसूस नहीं होता, लोग कहते हैं बिन देखे कुछ महसूस नहीं होता, हम तो बिन देखे यूं ही हर पल यूं ही हर पल हर लम्हे महसूस करता हूं कि बेखुदी में सनम रोमांटिक रोमांटिक सॉन्ग आपको हम सुनाते हैं।

और बेखुदी में जो सनम उड़ गए। और दोस्तों ये एक रोमांटिक सॉन्ग फुल सॉन्ग थे दोस्तों। और इसके बाद हम करते हैं जाते हैं कि कहते हैं क्या कहते हैं मोहब्बत की सबसे बड़ी कमी आप तो जानते हैं दोस्तों, ये है कि भरोसा किसी यानी भरोसा गुजर जाने के बाद भी मोहब्बत रह जाती है। तो और इसके बाद हम चलते हैं और एक सॉन्ग के ओर हम जाते हैं। हमारे दोस्तों है कि कभी कभी या रात को जो लोग सो नहीं पाते हैं तो उसको वजह क्या होता है, इस गीत से आपको मिलेगी।

और आप की कसम किशोर जी और नैतिकेल लता जी का ये सॉन्ग है, ये अगर रात को आपको नींद नहीं आती है तो उसको क्या कहते हैं।

0: रहो में हो, तुझको चाहे तो तेरी राहों में हो, हर वो कड़वट हो पूरा जो तेरी आंखों में हो। तो दोस्तों ये कुछ प्यार भरी गीतों की बहान प्रोग्राम यहाँ से है, और ये गीत जो है ये गीत हम मेरे ख्याल से हम पहला बार इसको चला रहे हैं। सॉन्ग के नाम है बुम बुम भोले, फिल्म के नाम है तारी जमी पर।
1: अक्को टक्को इडी गिडी गिडी गो इडी पाई विडी पाई चिकी चक चो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकनक हुक बुकुरे टुक बुकुरे चकलक बिको चिको सिली सिली सिली गो बगड़ दुम जगड़ दुम चिकी चक चो।

और बूम बूम भोले फिल्म के नाम ही तारे जमी पे, तारे जमी का ये सॉन्ग है हमारे आएंगे। और ये जो गीत है हमारे यारो, आप लोग को हम कुछ एक दो शेरी बीच बीच में भी बोल देंगे। तो कहते हैं मत सोच तू इतना यारो, मत सोच तू इतना कि जिंदगी के बारे में, मत सोच तू इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दिया है यारो उसने भी तो कुछ सोचा होगा। तो हम चलते एक फिल्म के नाम है दरिंदा। दरिंदा एक बहुत हिट फिल्म थी। हम इस फिल्म के कोई ज़माने में सूरीनाम में हमने देखी थी, तो हम तो छोटे थे दोस्तों, लेकिन ये फिल्म नहीं खती सीफ तक में रिलीज हुआ था हमारे सूरीनाम में। जहाँ तक मुझे याद है कि इस फिल्म को हमने मालूम नहीं कौन थिएटर में देखे थे, लेकिन उस वक्त हमारा जो उम्र थे बहुत बड़े नहीं थे। यंग रिटायर्ड का ये फिल्म है, तो आपको हम सुनाते हैं दरिंदा का, फिल्म दरिंदा का एक सॉन्ग।

और प्यार कर ले, और कर ले हमारी गोरी, और ये गोरा रंग जो आपकी है वो एक दिन उतर जाएगा। कि कहते हैं जब आपका नाम जुबान पर आता है, जब आपका नाम जुबान पर आता है, पता नहीं दिल क्यों मुस्कुराता है। है तसल्ली होता है मन को, कोई तो है अपना जो हंसते हुए हर वक्त याद आता है। तो है अपना ना दिल, तो अपना दिल जो है दोस्तों, तो वो तो आवारा होता है ना भाई। तो आप लोग को फिर कहते हैं कि दिल जब आवारा होता है तो उसको जोर से पकड़ना है। कि हेमंत कुमार आपको क्या कहते हैं, हेमंत कुमार आपको क्या कहते हैं, जब आपका दिल भटकता है तो आओ मिलकर जुना जाए।

0: है अपना दिल तो आवारा है और जो ना जाने तो किस पे वो आ गया है कि कहते हैं दर्द में कोई मौसम प्यारा नहीं होता। दिल हो प्यासा तो पानी से गुजरा नहीं होता। कोई देखे तो हमारी बेबसी हम सब के हो जाते हैं पर कोई हमारा नहीं होता। ऐ दोस्त मैं तेरी खुशियाँ बांटते शायद ना सकूं। हाँ ये वादा रहा जब गम आए तो कबर खबर कर देना सारे के सारे ले आऊंगा। तो और हम चलते हैं प्यार से भी ज़्यादा तुझे हम चाहते हैं। आशा जी और मोहम्मद अजीज इस गीत को गाया है। आओ मिलकर सुना जाए हमारे यारो सुनने वालों इस गीत को। मूवी का नाम है इलाका फन आउट 1989।
1: ज़्यादा तुझे

0: और प्यार से भी ज्यादा तुझे हम और क्या करते हैं दोस्तों, प्यार करते हैं ना, कि मेरी आंखों भी मुझसे एक दिन ये एक ये कह देंगी कि ख्वाब उसके ना देखो करो हमसे अब रोया नहीं जाता। मेरी आंखें भी मुझसे एक दिन ये कह देंगी कि ख्वाब उसकी ना देखो देखा करो हमसे अब रोया नहीं जाता। क्या कहूँ तुम्हें, ख्वाब कहूँ तो बिखर जाओगी, दिल कहूँ तो टूट जाओगी। तुम्हारे नाम जिंदगी रख देते हूं मौत से पहले हमारे साथ ना छोड़ पाओगे। कि दोस्तों हम चलते हैं, मूवी का नाम है तीसरी मंदिर, जिसमें शमी कपूर, आशा परेख, प्रेम चोपड़ा, हेलेन ने काम किया है और ये बहुत मशहूर फिल्म थी एक जमाने में। और ये फिल्म आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों इस गीत को आपको सुनना चाहिए, मूवी के नाम है तीसरी मंजिल।
1: मुड़ मुड़ कर देख रही हैं
0: और हम भी देख रहे हैं।
2: पीछे आप हैं, खास बात नहीं।
1: यूं ही देखती रहीं आप तो यूं ही चलते रहेंगे हम पीछे पीछे।
2: यूं ही चलते रहे हम तो रास्ता कौन देखेगा?
1: रास्ता देखने वाला जो है पीछे पीछे।
2: और अगर ठोकर लग गई तो गिरेगा कौन?
1: गिरने की बात कैसी, थामने वाला भी तो है पीछे पीछे।
2: अच्छा अब आइए साथ साथ चले।
1: जी नहीं, हमारी यही जगह है पीछे पीछे।
2: पीछे पीछे पीछे पीछे, दीवाने तो नहीं हो गए आप?

और दीवाना मुझसे मुझसा नहीं और इस पीछे पीछे क्या होता है दोस्तों, पीछे पीछे और कुछ होता है तो आपको हम बताते हैं कितने लोग बहुत बेवफा होता है और जो बेवफा होता है उसके लिए आपको हम जरूर कुछ बताएंगे कि बेवफा लोग को क्या करना चाहिए, कि मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला अगर हो तो फासला क्या है, हौसला अगर हो तो फासला क्या है, वो तो ज़दा देके दूर जाकर बैठे हैं, अब किसी से पूछो कि मेरा खता क्या है। दोस्तों सब कुछ भुला दिया, ये मेरी वफा का कैसा सिला दिया, सब कुछ भुला दिया, ये मेरी वफा का कैसा सिला दिया, मौत हमें आते नहीं और जिंदगी हम ये पते नहीं।

अगर आपकी आंखें किसी को देखे तो उसको क्या पता है कि उसका हाल क्या होता है। हमारे यारों की कहते हैं, रोए तो बहुत तेरी बेवफाई की बात, रोए तो बहुत तेरी बेवफाई की बात, तेरे याद ना गई तेरी जाने की बात। तुम हमेशा खुश रहना, तुम हमेशा खुश रहना, बस मेरे साथ किया ये एक वादा निभानी। और हम चलते हैं मैं चली पद्माश्री मोहम्मद रफी, नाइटिंगेल लता मंगेशकर का ये लवली सॉन्ग आओ सुना जाए।

और मैं चली ना, और मैं चली। और ये गीत है पद्मश्री मोहम्मद रफी का और लता जी का, नैतिकी लता जी का ये जोंग है हमारे यारो। और इसके बाद और आगे का प्रोग्राम हम आपको जरूर शायद, तो हम चलते हैं और आगे को हमारे यारो क्या कहते हैं कि पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है, किसी को चाहो तो सच्चा दिल से, क्योंकि जिंदगी फिर कहाँ मिलते है, कहाँ मिलते है यारो। तो हम चलते हैं गीत की ओर, और गीत है आपकी करीब हम रहते हैं, तो हम चलते हैं इस गीत की ओर।

और कहते हैं दोस्तों, पलकों से आंखों की हिफाजत होती है, धड़कन दिल की अमानत होती है, है में हमारे रिश्ता भी बड़ा प्यारा है, कभी चाहत तो कभी शिकायत होती है, हमारे यारो। और ये प्यार भरी गीत हम आपके लिए, और इससे गीत जो है दोस्तों ये है ओ मेरे दिल की चैन, जिसमें रजेश खन्ना ने काम किया है, किशोर कुमार, एक रोमांटिक फॉल प्यार भरी गीत है जो हम आप लोग को चलाते हैं।

और दोस्तों ये प्यार भरी गीत जो है और ये मस्त भरी गीत है किशोर जी के, किशोर दादा जी इस गीत को गाए है। ये गीत जो है जो अब हम चलाने जाते हैं वो है काली काली काली काली यार लता जी का, नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है, लता जी के सॉन्ग है कि मैं चाहूं सपनों में भी साथ उसका हूं, इन हाथों में मेरी बस हाथ उसका हूं, चाहत मुझे इतना है उसे कि दिल मानता नहीं, कोई मेरे बात उसको बता देते। तो हम चलते हैं काली काली राती और काली काली राती याद सताते हैं, तो इस गीत आओ मिलकर सुना जाए।

और काली काली रतिया ये याद सताते हैं, काली काली रतिया याद सताते हैं हमारे यारो और यारो, तो ये बात है हमारी काली काली रतिया के बारे में। तो कहते हैं हमारे यारो, क्या कहते हैं कि प्यार का बदला कभी चुका ना सकेंगे, चाह के भी आपको भुला न सकेंगे, चाह के भी आपको भुला न सकेंगे, आप ही हो मेरे लबों की हस्ती, आपसे बिछड़ जाने तो कभी मुस्कराना न सकेंगे। तो उलझन सुलझे ना की ओर हम चलते हैं।

साथियों, जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना है कौन ये वक्त ही बताता है। रिश्ते की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। और मित्रों, सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बादल के बिना बरसात नहीं होती, और आप जैसी दोस्त की याद के बिना दिन की शुरुआत नहीं होती।

मित्रों, इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है। कल इतनी थी, आज इतनी बढ़ गई। ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है। कल इतनी थी, आज इतनी कम हो गई। मित्रों, दुनिया की रैन बसेरा में पता नहीं कितने दिन रहना है। जीत ले सबके दिलों को, बस ये ही जीवन का गहना है।

साथियों, मदद करना सीखिए फायदा के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर, मुस्कुराना सीखिए सेल्फी के बगैर, और प्रभु पर विश्वास रखिए किसी शंका के बगैर, किसी शंका के बगैर। और मित्रों, शंकर का अर्थ है शं यानी मैंने, कल्याण, कर यानी मैंने, करने वाला, मतलब शंकर का अर्थ है कल्याण करने वाला, कल्याण करने वाला।

साथियों, मदद करना सीखिए फायदा के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर, मुस्कुराना सीखिए सेल्फी के बगैर, और प्रभु पर विश्वास रखिए किसी शंका के बगैर, किसी शंका के बगैर। और मित्रों, शंकर का अर्थ है शं यानी मैंने, कल्याण, कर यानी मैंने, करने वाला, मतलब शंकर का अर्थ है कल्याण करने वाला, कल्याण करने वाला।

मित्रों, क्या करना था, क्या कर रहे हैं, क्या हो गया? पैसा कमाना ठीक है, मगर पैसों के बस में मत हो जाना। सब कुछ यहीं रह जाएगा, सिर्फ तुम नहीं रहोगे। क्या छोड़ कर जाना है? इज्जत, इज्जत और ये कमाना है। मित्रों, इस गीत के माध्यम से

जब तक संसार शरीर का आश्रय सर्वथा नहीं मिट जाता, तब तक जीने की आशा, मरने का भय, करने का राग और पाने का लालच, ये चारों नहीं मिट सकता।

चक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनं कुरुमिदेवा सर्वकार्यशु सर्वदा।

गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

नमः माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं तिक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

सुनने वालों के सेवा में मैं संजय आपके साथ जुड़ गए हैं। जो बीमार है, लाचार है, भगवान से विनती प्रार्थना किया जाता है कि स्वास्थ्य में परिवर्तन आवे। जिनके घर से नया शिशु ने जन्म लिया है परिवार में, तो उन्हें बहुत बहुत सा बधाई दिया जाता है। जिनके जन्मघाट आज जन्मदिन है, उन्हें बहुत सा बधाई भी दिया जाता है। जो अपना तैयारी कर रहे हैं नौकरी की ओर बढ़ने के लिए, तो आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत किया जाता है। और हर बार की तरह इसको भाई दोहरा देता हूं, महात्मा गांधी जी ने इस बात को कहे थे कि ये मत सोच कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर रहे हैं, ये सोच कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूं। तो मां सरस्वती को भूलना नहीं। बुद्धि और ज्ञान का भंडार देने वाले माँ सरस्वती या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपे न संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।

जो हमारे देश में सफर करने को आए हैं, मैं फकांसी, तो मैं आपको हार्दिक से स्वागत करता हूं और यह कहना चाहूंगा कि ये देशों में एक देश है जिसे हम स्वर्ग भी कह सकते हैं। आप ना सिर्फ अपने परिवार के साथ, पर यहां जितने भी लोग रहते हैं हॉलैंड, अ ब्यूटीफुल कंट्री, एक देश जहां कितने सारे मंदिरों है, और सबसे ज्यादा वही जहां जहां सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी रहते हैं, और सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी रहते कहां हैं? कहा जाता है कि तनहाक शहर, और वहां आपको मिलेंगे मंदिरों जैसे देव मंदिर खासलान में, जो हर रविवार को और होते दाखों पे लगते रहते हैं। जरूर ये कहना चाहूंगा कि दर्शन करके जाना, जो हर रविवार 2 बजे से 5 बजे तक रहता है, कुछ न कुछ कार्यक्रम रखा जाता है। राधे कृष्ण मंदिर यानफा हो इस रात तनहाक शहर से, और यहां भी कार्यक्रम हर मंगलवार को 5 बजे से 8 बजे तक रहता है। इसी प्रकार से मंदिर सेवा धाम तनहाक शहर, राम मंदिर दनहाख, और शायद आप रोटरडम शहर में रहते हैं तो वहां भी शिव मंदिर नौ समांसरात, हर रविवार को सुबह से 9 बजे से 12 बजे तक, इसी प्रकार से राम मंदिर रोटरडम, नंदा देवी मंदिर, अगर आप सुतमेर के निवासी हो तो सुतमेर में लक्ष्मी नारायण मंदिर जो प्रिस्मालान में है, सुतमेर में हर मंगलवार को, और आप जा सकते हैं वहां का कार्यक्रम जो 6 बजे से 9 बजे तक होते हैं।

कहा जाता है कि अगर आप दूर शहर का निवासी हो, जैसे कि आलमीर, तो श्री विष्णु मंदिर, जो यूरोपा का और सबसे सुंदर मंदिर कहलाते हैं, लोग दुनिया के अन्य देशों में से आकर के वहां दर्शन करते हैं। आलमीर का श्री विष्णु मंदिर, जो कि हर रविवार को 2 से 6 बजे तक

इसी प्रकार से हम लोग का देश में धार्मिक स्थानों भी एक दो है। कुछ ऐसा संस्थाओं भी है कि हमारे पुरखों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जैसे कि एकता, एक संस्था जो 50 साल से भी ज्यादा

संस्था जैसे हिंदू परिषद नीदरलैंड, संस्था जैसे हिंदी परिषद नीदरलैंड, जो कुछ 40 साल से भी ज्यादा एक संस्था जहां पर हिंदी का आपको सिखाया गया, लिखाया गया, पढ़ने पढ़ाने एक संस्था जो गौरव के साथ कह सकते हैं कि मेयर दान 12,000 सर्टिफिकेट uitgeschreven. सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूं. एक देश जहां पर पार्थिव लिंगम पूजन भी किया जाता है हर गर्मी महीना में. उसी में ये मैं जोड़ देता हूं, गर्मी में जब श्रावण मास आता है तो कितने मंदिरों में श्रावण मास पूजा खूब विधि विधान से किया जाता है, जरूर उसमें भाग लेना. सुनने वालों, मैं आपके साथ जुड़ा हूं सुबह का औखतंत भजन प्रोग्राम, जहां से दनहाग मैके स्ट्रात सेस हिंदू बासस स्कूल फाउन फरेनिंग अलगमेने हिंदू अंडरवाइज की ओर से सभी बच्चों, सभी सदस्यों, सभी अंडरवाइजर्स और सभी दिरक्सी लेदके ओर से एक सुंदर सा भजन के ओर हम बढ़ते हैं.

इतिहास के हर पन्ने पर लिखा है कि दोस्ती कभी बड़ी नहीं होती, निभाने वाला हमेशा बड़े होते हैं। ये सुंदर सा भजन जो हम सब चलाए गए हैं, फाहुन स्कोल जो तनहाख मैकेन्सरात नमरोसेस हिंदू बासस स्कोल फाहुन फरीनखिंग अलगमीन हिंदू अंदरवेश की ओर से।

कहते हैं कि समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छे होने में समय नहीं लगता है। तो दोस्तों, आज अपना समय पे भी ध्यान देना। क्योंकि समय जिसे हम जानते हैं काल से, बहुत बलहारी कहलाते हैं। रुकने वाले नहीं हैं। उसे आप प्रियोर्स भी नहीं कर सकते हैं। जिसे हम कहते कि हम उसे पिछाड़ भी नहीं कर सकते हैं। तो समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छे होने में समय नहीं लगता है। हमारा अगला भजन को स्पॉन्सर करने वाले हैं लिफोर्नो मेनकंदम हुक इंदिरा गांधी वेख श्री भक्त राज शिव पार्वती मंदिर, जिनके अगर आपको वहां मालूमात करना है तो भाई सुहास महावीर से जरूर आप संपर्क कर सकते हैं। जिनका तार का नंबर 00597867 5877। सुंदर सा भजन उनके ओर से।

Suriname, Livorno, Menkendam, Hoek Indira Gandhiweg, Sri Bhaktaraj Siv Parvati Mandir, के ओर से ये सुंदर सा भजन को और चलाया गया।

दोस्तों कहते हैं कि ये रिश्ते भी अजीब होते हैं। ये रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते हैं और बिना धोखा से खत्म नहीं होते।

जरूर ध्यान देना, अगर कोई विश्वास आप पे रखते हैं। नीदरलैंड्स में ये कहा जाता है, वरा की मार इन किरक्वेट, आप खुद समझदार हैं और समझ गए होंगे

अगला भजन जो रोटरडम होफ्लीट टेक्सस वेग 5 श्री विष्णु मंदिर संस्था हिंदू सेवा संघ संस्था जागृति श्री गंगा माता मंदिर रोटरडम वेस्ट ब्लॉक मार्करस्ट्रात 46 से सरस्वती माता स्कोलन कॉम्प्लेक्स भवन से ऑन द लाइडिंग फन पंडित मंडली सभापति पंडित राजकुमार महातम जी के ओर से

सुंदर सा भजन का स्पॉन्सर करने वाले रोटरडम होफ्लीट टेक्सस वेग 5 श्री विष्णु मंदिर संस्था हिंदू सेवा संघ संस्था जागृति श्री गंगा माता मंदिर रोटरडम वेस्ट ब्लॉक माकरस्ट्रात 46 से श्री सरस्वती माता स्कूलन कॉम्प्लेक्स भवन से ऑन द लीडिंग फन पंडित मंडली सभापति पंडित राजकुमार महातम जी के ओर से ये सुंदर सा भजन को हम सब सुने।

जिनके नाम से रातों में भी उजाला हो जाए। ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम आपको सपनों में भी आए और कृपा बरसाए। प्रभु श्री राम, जय श्री राम।

चेहरे की औरों की रोशनी में मुस्कुराओ, जब किसी और का दीपक जलता है तो अंधेरा नहीं बढ़ता है, रोशनी ही फैलती है।

जो दूसरों की सफलता को देखकर प्रेरित होते हैं, वे अपने भीतर की दीपक को प्रज्वलित करता रहते हैं।

सफलता समीप्त नहीं होती। सफलता समीप्त नहीं होती, वे एक दीप से दूसरे दीप तक जलती ऊर्जा है।

सूरज बाली जी, शांता खेमाई जी, रजेश बदलू जी, राजन द्वारका जी, प्रदीप फेराई जी, विजयंती नाथू जी, रोसिता गिरजा सिंह जी, श्रीमान सुरेन जी, बबली आसरा जी, अमित अवतार जी, रोमियो होस्ट संजय, करण सिंह जी, गंगा जी, यूसुफ जी, मफरो रहीम बख्श जी, श्याम पूरन जी, अनुराधा चंदर जी और राजेंद्र सिंह जी की ओर से एक सुंदर सा भजन।

हे रब, मेरे दुआओं में असर इतना रहे, मेरे चाहने वालों का दामन हमेशा खुशियाँ से भरा रहे। ये सुंदर भजन जो चलाया गया फाहुन के दिरक्सी और क्रू के ओर से, श्रीमान कुमार घिराव जी, जॉनी सुरजबाली जी, शांता खेमाई जी, रजेश बदलू जी, राजन द्वारका जी, प्रदीप फेराय जी, विजंती नाथू जी, रोसिता गिरजा सिंह जी, सुरेन भगवान जी, बबली आसरा जी, अमित अवतार जी, रोमियो होस जी और संजय करण सिंह जी, गंगा जी, यूसुफ जी, मफरू रहीम बख्श जी, श्याम पूरन जी, अनुराधा चंदर जी, राजेंद्र सिंह जी और हैन के ओर से ये सुंदर सा भजन जो चलाया गया। आशा ये रखता हूँ कि आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत हुए यहाँ से कार्यक्रम जो दूसरा मोड़ दिया जाता है। सभी को एक शुभ दिवस।

मैं चली रफ़ी जी और लता जी के आवाज़ में ये सुंदर सा गीत हम सब सुने सुनो वालो। दोस्तों एक अच्छे और एक बुरे दिन, एक अच्छे और एक बुरे दिन में बस एक ही अंतर है, वे है कि आपके नजरिया, आपके नजरिया बस यही अंतर है। और उस पे हो सके तो जरूर काम करना, क्योंकि बुरे दिन बताकर नहीं गाते हैं।

तो कहा जाता है कि भरी बरसात में तो पी लेने दो और हमें जीने दो, पर ये बात में मत रहना, क्योंकि कहा गया है कि आज तक किसी जो पीने में दिल रखे हैं क्या कभी छोड़ पाए हैं। तो दोस्तों, कुमार शानू और रूप कुमार के आवाज़ में ये सुंदर सा गीत हम सब सुने, और देखा जाए कि आज एक शुभ दिवस आपके प्रस्तुत हुए। और ये मत भूलना कि अगर आप जो फिल्म शोले भी देखे होंगे, तो उसमें जब अमिताभ बच्चन अपना दोस्त धर्मेंद्र जी के लिए उनके हाथ मांगने के लिए मौसी के पास पहुँचे, तो मौसी से सब अच्छे अच्छे बातें और कर रहे थे अपने मित्र के लिए, पर उसमें एक संदेश जो जावद अफ्तर का और सलीम जी का लिखा हुआ डायलॉग्स में से मौसी जी के आवाज़ में हम सब सुने कि आज तक किसी का जुआ और ना किसी का दारू छूटा है। तो इस पे ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि दारू पीने वाले भी हर बार अगर कुछ दिनों के लिए छोड़ने की भी कोशिश में रहते हैं, तो औरों को बार बार सुनाते रहते हैं कि भाई मैंने तो छोड़ दिया, और चाहे आप उस पे ध्यान ना दो, फिर भी वो आपसे इसी इशारा करते रहते हैं कि मैंने छोड़ दिया है। दोस्तों, एक अगला सुंदर सा गीत की ओर हम बढ़ते हैं।

आर रहमान की आवाज़ में ये सुंदर सा गीत हम सब सुने। मसा कली जो फिल्म में काम किए हैं अभिषेक बच्चन और सोनम कपूर, फिल्म दिल्ली 6 से निकाला गया ये सुंदर सा गीत। और ये कहना चाहूंगा कि क्यों ना थोड़ा सा अलग बने, क्यों ना थोड़ा सा अलग बने, खुश रहने की सलाह ना देकर खुश रहने की वजह बने। क्योंकि सलाह देने के लिए तो बहुत होते हैं, पर खुश रहने की वजह बहुत कम है।

सुना है कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। जैसे कि अभी आपने सुने कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है।

पालेने के बेचैनी और खो देने का डर, बस इतना ही जिंदगी का सफर है दोस्तों। और जो कभी कुछ आप पा गए,

खोने का डर, क्योंकि कहा गया है पा लेने का बेचैनी और खो देने का डर। हम इसी में लगे रहते हैं, बस इतना ही जिंदगी का सफर कहलाते हैं।

नुसरत और राहत फतेह अली खान की आवाज़ में ये सुंदर सा गीत हम सब सुने। दोस्तों, कहा जाता है कि पत्तों ने रंग बदला और वो गिर गए, पत्तों ने रंग बदला और वो गिर गए, वरना पेड़ को संभालने में कोई दिक्कत नहीं थी।

लाल सिंह चड्डास फिल्म से निकाला गया ये सुंदर सा गीत, और जो अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने इस अपना आवाज़ दिए, फिल्म में काम किए हैं आमिर खान और करीना कपूर।

दोस्तों, ज़िंदगी जीने के लिए अनेकों तरीका क्यों ना हो, जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, और क्यों ना अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को संतुष्ट मिले और दूसरों को कष्ट ना पहुंचे। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है, तबलाइस्त्रन फिया इंटरनेट। दुनिया के हर एक देश में इसे सुना जा सकता है।

कहते हैं कि जीवन में एक बात तो तय है, जीवन में एक बात तो तय है कि हमारे अनुसार तय कुछ भी नहीं है, और जो तय है उसका हमें आभास भी नहीं है।

अपना बनाने की कसम खाई है और जो कसम खाया जाता है तो वो ऐसा वैसा चीज नहीं है जिसे शायद आप सोचे कि कसम खा लिए है और चलो उसे भूल जाना, क्योंकि ना संघर्ष खत्म होता है और ना शिकायतें। ना संघर्ष खत्म होता है और ना शिकायतें। एक चीज तो जरूर है कि धीरे धीरे खत्म हो रहा है हमारी उम्र। धीरे धीरे जो खत्म हो रहे हैं वो हमारे उम्र है। आज कुछ पुराने गीत और कुछ 90s के रोमांटिक सॉन्ग के साथ मैं आपके साथ जुड़े रहे। यही आशा लेकर कि जरूर कुछ न कुछ इसमें से आपको अच्छा लगे होंगे।

सुंदर सुंदर गीत आपके लिए, सेवा आपकी सेवा मैं यहाँ पर जरूर से हम ले आई हूँ, और चलेंगे आपको लेकर फिल्म सनम में। फिल्म सनम से सुनेंगे हम पुकारता चला हूँ मैं।

जवानियां ये मस्त मस्त बिनके जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानियां ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें

पानी आए मस मस बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।

कहानियां ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।

0: मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में हमको सुना दी। जवानी आए मस्त मस्त बिन पिए, तुम सा नहीं देखा फिल्म का नाम। ना चाहते हुए भी कुछ राहों से गुजरना पड़ता है, ना चाहते हुए भी अपनों के लिए खुद को ही भूलना पड़ता है। ये ज़िंदगी ऐसी होती है दोस्तों, ये ज़िंदगी ऐसी होती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सबसे बड़ी उदाहरण है हमारी और आपके सांसें।
1: उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्ता है। उधर तुम हंसी
0: मिस्टर और मिसेस 55।

उधर तुम हसीन हो, इधर मैं जवां हूँ, मिस्टर और मिसेस चार, मिस्टर और मिसेस 55 से सुने। सर पर टोपी, लाल हाथ में रेशम का रुमाल, तुम सा नहीं देखा फिल्म का नाम।

भला इतनी दूर से कहूँ क्या हुजूर से मेरे पास आइए, भला इतनी दूर

हाय भैया सदके सुंदर सा क्या कमाल का डांस इसमें भी किया गया है शम्मी कपूर जी के। मोती कभी किनारे पर खुद नहीं आते, मोती कभी किनारे पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना पड़ता है। मोती को पाने के लिए समंदर में उतरना पड़ता है। घर बैठे सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए मैदान में भी उतरना पड़ता है। फिल्म नाइट इन लंदन से नजर ना लग जाए।

दो कलियां से ये सुंदर सा गीत लता और रफ़ी की आवाज़ में कि तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई। आप सुन रहे सुनने वालों फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, यहाँ पर जिस पर आप चुन हैं, और इस बार है छलकाए। मेरे हमदम, मेरे दोस्त, फिल्म का नाम।

सदाबहार गीत आपके लिए छलकाए जाम, आपके नाम मेरे हमदम, मेरे दोस्त फिल्म का नाम, और इसमें कलाकार है धर्मेंद्र जी और शर्मिला टैगोर।

0: इतने सारे इंसान, इतनी थोड़ी सी इंसानियत, पैसा वो भाषा बोलता है जो पूरी दुनिया समझ जाती है। ज़्यादा सोचना दुख का सबसे बड़ा कारण है, ज़्यादा सोचना दुख का सबसे बड़ा कारण है। दूरी ना रहे कोई, फिल्म कर्तव्य से लता जी की आवाज़ में।
1: लता मंगेशकर, लता मंगेशकर एक एहसास है जिसे महसूस किया जाता है बयान नहीं। ये एक नाम है जिसे सुनते ही मेरे दिल में सुकून और चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। To me, she's ethereal, someone from another world, larger than life, no less than a goddess, a devi. This one name evokes a million feelings inside me. I have cold feet, weak knees, a knot in my stomach, a smile on my lips, and tears in my eyes. In other words, I feel alive when I hear this name, Lata Mangesh.

अपनी अच्छी पुकार की दूरी ना रहे कोई। फिल्म कर्तव्य से ये सुंदर सा गीत निकाला गया है लता जी के आवाज़ में, और इस फिल्म में रेखा जी ने ये सुंदर सा गीत भी प्लेबैक की है, एक्ट की है। हर बात को दिल पे लेना दिमाग की बीमारी है, हर बात को दिल पर लेना दिमाग की बीमारी है। कोई दर्द पूछेगा इसका इंतजार मत करना, अपनी दवा खुद हो तुम, अपनी दवा खुद हो तुम, ये हमेशा याद रखना। पानी अगर शांत है तो, पानी अगर शांत है तो गहराई से मजाक मत करना।

सागर जैसे आंखों वाली ये तो बता आपके नाम क्या, करम करते रहिए किस्मत में जो होगा वो चल कर आएगा और जो नहीं होगा वो आकर भी चले जाएगा। जिसने एक रुपये की कीमत पता है, जिसको एक रुपये की कीमत पता हो वो कभी करोड़ों मिलने पर घमंड नहीं करेगा।

सुरेश वत्कर, अनुराधा पौडवाल, ये दोनों मिलकर हमको सुनाए कि आओ मिल जाए सुगन और सुमंद की तरह। आपने तो धुन से गीत से पता चल गया होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि वही पुराना गीत, वही मशहूर फिल्म प्रेम गीत से निकाला गया है।

कहते हैं कि पा लेने की बेचैनी, पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर। एक बार फिर, पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर, बस इतना सा है जिंदगी

जो हुआ सो हुआ, हमने सुने। सुनने वालों, फिल्म का नाम आपको भी बता दे, क्योंकि यहाँ लोग तार कर कर पूछते हैं कि कौन सा फिल्म का है। हाँ, ये तो काफ़ी दिन बीत गया है। गीत तो गुनगुना लेते हैं, पर फिल्म का नाम है ये वादा रहा नेखन दिन तुयन तख तक। ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है। और किशोरदा की आवाज़ में हमने सुने कि ऐसा कभी

अपनों की यादें खुशबू की तरह होती है, अपनों की यादें खुशबू की तरह होती है। चाहे कितनी भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा की झोंके के साथ अंदर आ ही जाते हैं। फूलों से प्यारी, फूलों से भरे हो आपके खुशबू भरे दिन। जिंदगी कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, पर अपनों के बिना सूनी लगती।

है कि कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मुझसे ना रूठे, ज़िंदगी में अपनों का साथ ना छूटे, रिश्ता कोई भी हो, रिश्ता कोई भी हो, उसे ऐसे निभाओ कि उस रिश्ते की तोड़ ज़िंदगी भर ना छूटे।

कहते हैं कि जिंदगी ढूंढना ही जिंदगी है। एक बार फिर, जिंदगी में जिंदगी ढूंढना ही जिंदगी है।

अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज मत होना, अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसे ज़िंदगी दूसरे लोगों का सपना होगा।

और चली सहरीला इंसान फिल्म का नाम और गाने वाला था है किशोर कुमार जी। 1974 के ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है। आप जुड़े हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से जो लाइव एंड डायरेक्ट आपके कानों तक लाया जाता है। आप जहां भी हो जैसे भी हो जरूर से मुस्कुराते रहना।

मर के भी हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों की सेवा में विजयंती नाथू का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नई मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है, या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को बधाइयां पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है, तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है, भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं, हम आपको हृदय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं, हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस हाल में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं। और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को विदेश में सुन रहे हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं। सुनने वालों, अब से लेकर दिन में 12 बजे तक मैं आप सभी की सेवा करने वाली हूँ, इसी आशा के साथ कि जिस तरह से मैं अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश करूँगी, आप लोग को जरूर पसंद आएगी।

अभी आप सुन रहे थे पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज़, लो मैं आ गया। हीरो है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, जी हाँ सुनने वालों, फ्रॉम द मूवी हीरो से आप सुनेंगे डिंग डोंग ओ बेबी सिंग सॉन्ग।

0: अभी आप सुन रहे थे डिंग डोंग ओ बेबी सिंग सॉन्ग। खास है वो लोग जो वक्त आने पे वक्त दिया करते हैं। एक बहुत सा सुंदर गीत हम चुन कर रखे हैं आप सभी के वास्ते। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, शबीर कुमार और लता जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी बेताब से हम पेश करते हैं।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

अभी आप सुन रहे थे जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लता जी के साथ में शबीर कुमार आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी बेताब से हमने पेश किए हैं। रिश्ते ज़रूरत के हो तो कभी खुशी नहीं देते और जज्बात के हो तो कभी साथ नहीं छोड़ते। सोनी मेरी सोनी सोनी अनवर के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी सोनी महिवाल से, अनवर और आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे सोनी मेरी सोनी सोनी, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते। फ्रॉम द मूवी सड़क से हम पेश करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम जो ना आते तो हम मर जाते। मनहर उदास के साथ में अनुराधा पौडवाल जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी सड़क से हमने पेश किए हैं। काश लोग ये समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे की फिक्र करने के लिए होते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। ओ दिल भर जानिया, फ्रॉम द मूवी प्यार झूठता नहीं आपको सुनाने वाले हैं लता जी के साथ में शबीर कुमार जी।

लता जी के साथ में शबीर कुमार आपको सुनाने वाले थे वो दिलबर जानिया फ्रॉम द मूवी प्यार झुकता नहीं। इस तरह आशिकी का अशर छोड़ जाऊंगा अमित कुमार आपको सुनाने वाले हैं।

अमित कुमार आपको सुनाने वाले थे इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। अभी आप सुन

समाना अलका याग्निक के साथ में अभिजीत आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी खिलाड़ी से हमने पेश किए हैं। सुनने वालों, एक और गीत हो जाए आप सभी के वास्ते, और गीत का बोल है, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई।

0: VAHON Hindustani Radio.
1: Dit is het VAHON Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De nieuwe voorzitter van de FNV, Hans Pekman, ziet in de stakingen van rijksambtenaren tegen de nullijn het voorbeeld dat strijd loont. Dat zei hij vanmiddag op het Museumplein in Amsterdam op de Dag van de Arbeid, waar de grootste vakbond van Nederland een protest hield tegen het regeerakkoord. De natuurbrand tussen Weert en Budel laait op sommige plekken weer op. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio komt dat door de wind en omdat de temperatuur stijgt. De vlammen bevinden zich in het gebied waar eerder brand was. We bewaken de randen en verwachten niet dat het vuur zich uitbreidt, meldt de woordvoerder. Vodafone Ziggo heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer mobiele abonnementen verkocht. Het aantal internetklanten nam opnieuw af. De omzet van Vodafone Ziggo in het eerste kwartaal daalde met 1,8% tot 981 miljoen euro. Ook de winst kwam lager uit. Die daalde met 6,4% tot 412 miljoen euro. Pensioenfondsen profiteren van de flink gestegen beurskoersen van de afgelopen maand. Volgens onderzoeksbureau Aon is hun financiële positie in april daardoor fors verbeterd, waardoor de kans op pensioenverhogingen weer is toegenomen. En dan het weer. Ook vanavond helder. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen eerst nog zonnig, maar later in de middag en avond kans op enkele regen- en onweersbuien. Temperatuur tussen de 17 en 25 graden.
1: En tot zover het nieuws op VAHON Hindustani Radio.
3: Hare kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 36 52 47. मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.
4: सुनने वालों यहां तक आपने सुने हैं विज्ञापन और प्रोग्राम को हम आगे में जारी करने वाले हैं. सुनने वालों एक गीत हम पेश करते हैं, एक बहुत सा सुंदर गीत हम पेश करेंगे द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में. और ये गीत हम पेश करते हैं स्वर्गीय बेस्टी यानी बेत्सी कल्लू संतू जी के वास्ते, जो एक सुनने वाली थी फहन हिंदुस्तानी रेडियो का और जिनकर मृत्यु हुई गत रविवार 26 तारीख अप्रैल को और कल शनिवार 2 तारीख मई को दाह क्रिया किया गया. तो उन्हीं के याद में ये गीत हम पेश करते हैं और जो हमेशा फहन हिंदुस्तानी रेडियो के प्रोग्राम को सुन रही थी, तो ये गीत हम उन्हीं के वास्ते पेश करते हैं. और ये गीत हम पेश करते हैं परिवार कल्लू के तरफ से, परिवार संतू के तरफ से, परिवार नाथू के तरफ से और फाहोन क्रू के ओर से, कि माता बेत्सी कल्लू संतू जी ये महान आत्मा जहाँ पर भी है भगवान उन्हें सुख और शांति प्रदान करें.

ये गीत हमने पेश किए हैं स्वर्ग बेत्सी कल्लू संतू जी की याद में, जिनकर मृत्यु हुई गत 26 यानी रविवार 26 तारीख अप्रैल को, और कल शनिवार 2 तारीख मई को इनकी दाह क्रिया किया गया। और जो हमेशा फहोन हिंदुस्तानी रेडियो को सुनते रहते थे, तो फहोन क्रू के ओर से और परिवार कल्लू, परिवार नाथू, परिवार शांतु के तरफ से हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी ये महान आत्मा है, भगवान उन्हें सुख और शांति प्रदान करे। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं। सुनने वालों, देखा जाए तो एक मैशअप हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे एक बैठक गाना मैशअप द टाइगर्स, यानी इस ग्रुप का नाम है द टाइगर्स। हरीश सुखदेव आपको सुनाने वाले हैं एक और मैशअप। चलिए मिलकर सुनते हैं।

हरीश सुखदेव जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे एक मैशअप सुनने वालों। सोनिया सिंह आ रहे हैं प्रोग्राम में गिलबा का ग्याल।

सोनिया सिंह की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे गिलबा का ख्याल। लीला एम आ रहे हैं प्रोग्राम में सुनने वालों, और लीला एम जी आपको क्या सुनाने वाले हैं, अब चोलिया भीजे।

अभी आप सुन रहे थे अब चोलिया भीजे पसीन बनवारी, लीला एम आपको सुनाने वाले थे। मलेसा सिरपौल आ रहे हैं प्रोग्राम में साइड चेक।

0: What's this mark?
1: Where's what?
0: What's this here, so?
1: Oh.
0: Explain, Mark. Let me hear.
1: I can tell you the truth. You sitting? I had an emergency.
2: अभी आप सुन रहे थे मलेसा शिरपोह की आवाज़ में साइड चेक रसिका दीनदयाल आ रहे हैं प्रोग्राम में बोले बोले हिरनवा

बोले बोले हिरनवा हमको न मार, हमको न मारो जंगलवा में, रसिका दीनदयाल आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम को हम आगे में जारी करने वाले हैं। सुनने वालों, पृथ्वी आ रहे हैं प्रोग्राम में, श्याम सुंदर।

अभी आप सुन रहे थे श्याम सुंदर पृथ्वी की आवाज़ में केनेथ सालिक को सुनाने वाले हैं राधिका वायुली वेंगो।

सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, हमें आशा है कि प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो आने वाले रविवार को हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए हमारी प्यार भरी, राम राम, नमस्कार, खुदा हाफिज़। Have a nice Sunday and take care of yourself. Till next time.

0: kala na jaane uchni kala na jaane jaan sursit mata dije humko apni aazir maade
1: apni betabi ko main kaise tujhse izhar karun
0: tamam radio fahun ki sunne walon ko hamara ram ram namaskar pyar bhare naam sasriya kal जोनी नंबर वन है हमारा नाम आज की देश और विदेश के समाचार सुनाना है हमारा काम यही है हमारी मोहब्बत भरी और प्यार की पैगाम

चाचा, हमारे काका और हमारे हर एक प्यारे प्यारे लिसनर्स, आपको हम यहां से बहुत प्यार देते हैं। एक बार फिर भी और लेकर चलते हैं सूरीनामी देश की ओर, कि सूरीनाम देश में भैया एक औरत रहा भैया। सोचे हैं हम आइला घरे और जाबे घरे हम, तब बहुत प्रेम से अपन खाना पीना खाए के और जाए के प्रेम से आराम करब। मैं बिचारी के का पता रहा, ये बात हुए है लान फॉन लुइस हॉफ में भैया। हाँ नाना, ये बिचारे के का पता रहा कि ओके तीन गो डाकू बैठ के घरे और अगोरे है भैया। हाँ सोचो तो, ओके बैठ के चोरन डाकू लुटेरा और बैठ के ओके रिश्ता से अगोरे जैसे कोई कटिया लगावे है। अब बोले अब्बे कुकुहिया खाई ऐसे ही औरतिया बिचारी ये घरे गईल है। और तीन बजे के बात है रात के, तो एक के पांच गोल लुटेरा भैया ऊपर फाल करी से और बताए गई है जैसे घर गईल है तुरंत ओके लूटी से और ओके 16 बरिस के एक लौंडा उस समय पे घरे रहा कर बेटवा सस्ती निया रख सुन वास ऑफ दैट मोमेंट आलीन टाइस मेंशन कैमरा बेल पे दिखिए दादस ऑन कफे द्री मुनीतन फोर हन आन कॉम्स द वोनी वारर बेन खद्रोन और ले गए हुआ से 10,000 एसर दे नानी 200 यूरो और 200 अमेरिकन डॉलर। और हमारा मनोरथ बोले हम लोग के क्रिमिनालिटी ऐसा का हुई है, कितना मुझे बोले साका ये। और ले से साया हाइटियान के ऑफिसर, हाँ तो बोले है हम लोग के सरनाम में भैया सुंदर हीरा भी आ गया है उस्ताद को उस्ताद लुंडा के नाच के नगारा के। और तो भैया हीरा हम लोग के सूरीनाम देश में हनीस मनोरज जो यूसीसीएन पुलिस के और जाय के मिनिस्टर है, बोले हम लोग के सूरीनाम के क्रिमिनालिटी साका हुई यही बिचारी घरे गए ले मीठा मीठा और पांच लुटेरा एगो उज्जर उज्जर त्यूता पे और एक के लूट ले से भैया लूट ले से और ले से हाय त्यान शाया के मनोरथ। बोले है ना, बोले है कि हमार ऑफिसर है भाई बड़ी लोग एमा एकर बारे में सोशल मीडिया पे और एकर बारे में रिएक्शन देश की कोन ना इंस्टे कोनो बोले है। और ये भैया मनोरथ बोले है, बोले हमें सो में बोले देगा, बोले का बोले हैगा अटफिस करेगा या बोले पॉलिसी ऑफिसर है जो बांसुरी नाम के। तो शीला गौरी चरण गजरी आपको भी हम स्वागत करते हैं अपना प्रोग्राम में। तो भैया हीरा और देखो मनोरथ के यहाँ का बोले पॉलिसी ऑफिसरन बोले हैगा जब शाया हाइटियान बोले जब हमारो के कंतोर रोमते में आएगा तब बोले हम ओके वेखर कर भीतर आवे के बोले उन्ना आई हमार कमरा में। बांद बोले पॉलिसी ऑफिसरन सोलन तु सोलन साया तु खांग तो कंतोर रोमसन वेखरन बै बसुकर मिनिस्टर मनोरथ के। तो ये बात है तो ऑफिसर फन पॉलिसी बोले है जेन साया मिक्सन जो रे अंदर नीमर हाइथियान है बोले ओके कंतोर हम बोले हम लोग ना आवे देबे और बोले हैगा तैदस बसुकर फॉर यूसिस हनीस मनोरथ मेलो बोले उना आई सके मनोरथ आई सके है। और बोले देत बसलाइट फलक ना दा रखे रे दोंदर डाक के फरक्लार करी से कि मिक्सन खीन ऑफिशियल बनुम द ऑफिसर हैगा ओहिक मारे जो बनुम करेगा ऑफिसर
तब साई टो के संबंधी का मो ऑफिशियल ना है तो साया ली पूछ दाग सामन में मनोरत मी तय दसर ओरियंटा ची बचुक आन ओंदर मी द क्यूरिंग डीज और बेस्टान परमारी बो खफेस्तक तो बिरो खैर फ्लाइट में अतुलन दाने शाया ओंदर नीमर भैया ओतो ओतो बेटलान से मंगावे है तो जरूर कुछ मनोरत के जरूर बोले हुई कि हम में तू ले ले तब तो तरो तो वन हम सब क्यूर करवा दे बे हो सके भैया नहीं बोली हम तो के ओ तो दे बे तो फॉल्क द ऑफिसर इज द अनवीस खैर फन मिक्सन इन द कांटोन रेड द टेन द दरखलाइक बसुकन ऑनगेविंस omdat het werk binnen justitie in hoge mate draait om vertrouwelijke informatie die te allen tijden bolle een vertrouwtje geweken te monoren donderdag bolle hij onder vuur te liggen van zowel oppositie als coalitie over zijn uitspraak een dag eerder in de interview met Ubolize bolle hij waarin hij gaf dat hij Saya als adviseur had aangetrokken en dat daar niets mis mee is. तो अब जाओ ना भैया हनीस मनोरथ अब देना के फरक्लार करो कि कैसे अब हम का करें और ओके कोई ना मांगे भैया देख सुन के ये बात है अब देखो भैया सुर जाति जो है सुर जाति के हम लोग जाने ला सुरनाम के सुर जाति के बातचीत हुए है नानी तो सुरनाम के सुर जाति भैया सुरीनाम के सुर जाति बोले मिली तेरा ना फरकेस ऑन खफाल वो भैया अरेडें कर ले रहा इंदिरा गांधी वेख पे तो हुआ एक खुरूप लंदन गए हुआ पे और हुआ का करी से 50 बरी के मिली तेरा है वो के लूट ले से भैया तो भैया फतिंगन राम रांच आपको भी हम प्यार से स्वागत करते हैं तो हनी रस मनोरथ बोले है दाल हो गए है हम तो लोग के यहाँ दिखाईला कहाँ दाल भैल है 50 बरिस के मिली तैयार एक तो बेचारा अरे डेंग भैलो के इंदिरा गांधी वैक में ऊपर से ओके एक रूप लंदन जाए क्योंकि रूफ कर ली से भैया और लेली दौरब की सिपाही एकर बारे में कारबार करे यानी कि छानबीन करे हैं फर नोमन वर्दा थे फर नोट पारा रेखते दस्तात्रे तुन्हें तेर होकते फर लिपि मकांद्र अख्तर दशीर इस्लाफ फील बहुत दूर से रमिया आवतरा भैया पारा से ते सूद गे रमिया सुर जाती चले चलावत द्वार दो राखते है फन वेक एंड बोट से है मेसेन फूर्तक तेगन स्टेनन वेक ब्लोकन द ऑटो कौन दार ने नीत मेर फेर्दर रहिदन terwijl de militair nu in zijn auto zat, werd hij plotseling benaderd en aangevallen door een groep jongens. Tijdens een gewelddadige straatroof werden zijn mobiele telefoon ook buitgemaakt. Maar ja, toen betaal, als hij je toe aanreding, maar je, chota yo, dat soort je kooi toke awe help kare, maar ja, hoe help na awe kare, hoe toke roof kare awe. Ab kaise ab toke pata miliga, maar ja, hiera fatingen, ki je aanreding hoi, ta hamme kooi आवे हेल्प करे कैसे तू जान पाइए कि हेल्प करे आवे है कि वो आवे है हमें का बोले है रूफ करे सोचो तो हरिओम तो ये बात है हमारी जनता इंदिरा गांधी व्यक्त के बातचीत हुए है अब देखो और आगे हम जाई है हम लोग के बाउफा मिनिस्टर फन बैतलान से साकर एगो हील दिल खासी पठाई जाने कहाँ पठाई से नानी मारोको में पठाई से बोलिए का करे गली से मारोको में भैया का करे गए है मारोको में हुआ पठाई से गो दिल खासी मारोको में अब उफा पठाई से मिनिस्टर फन बैतलान साक के बोले हैगा ऑफ सेन कंट्रोल एंड ड्रग द लीडर ऑफ हार्फ ऑफ सुरीनाम क्रैक्टिक द प्रेजेंटेरन से बोस का वाज डायलॉग फर्टेल्ड फॉर हार्फ ऑफ सुरीनाम एला सीन व्हाट द लैंड टू बीन ही वेरे दादा दा मारोकान के बुलाई का यार फन मिसी वार्डन मेड बार रिजल्ट फॉर सो वर्क केकन द इन्वेस्टिंग इन हेड न्यू बार एनर्जी समर वर्कन रोट ओली खास मार्क टू खान सुरीनाम से प्रोडक्टन industriële ontwikkeling en financiële samenwerkingsmogelijkheid Marokko se kaam kare mange hai hum log ke baufa minister van buitenlandse zaken ke baufa ke baatchit karela aur ab dekho hiya bhaiya Guyana ke ka kari se new charter lane dari se Guyana Suriname se baki kaise uteri ga bhala bolie jo ni tu hase
सोचो कैसे उतरीगा। जब देखो तो हुआ कम करते हुए ना भैया, तो कैसे उतरीगा। तो बोले गयाना सुरीनाम एक तारीख मई से बोले इन फौदक मांगे करे और एगो चार्टर शेरफी से ने प्लेन धरी से फ्लिक टैग धरी से सामान वर्कर में जैक्स अफेशंस में सो नाम द अने चार्टर फ्लिक टैग सो मार बूत और सुख के ई फरट्रैक होएगा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट गयाना से और जाएगा अने ह्यूमस एयरपोर्ट पे दोस्तों एडवर्ड अलेक्जेंडर ओ ते संदराई पे ना उतरे ना नहीं विश्वास ना रहेगे संदराईया के यार का बोली तो इस संदराईया पे ना उतरी मौसी ये के विश्वास ना है तो ई जाई के उतरीगा अने एडवर्ड अलेक्जेंडर ह्यूमस एयरपोर्ट इन परमारिबो में उड़ीगा यहां बता फट्रैक इज द अने उशेन एफ कार का कोरिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट ते ई ह्यूमस के एयरपोर्ट देखिए काले मीना उतारे लगे हुआ भाई फोकस बोले बिड द न्यूज एंड स्नेल एडवेंचर रेस ऑफ सी बोले द फ्लक्स के मा के यहां दिखाई से टिकट बस के एक बार है वेबसाइट मस का पे पे रिजर्वेशन अफडेलिंग में दीस न्यू लुक फॉरबिंडिंग होपन एन इनिशिएटिव नेमर द मोबिलिटी टू गयाना और सुरीनाम वन सांद्रे पे तो कोई उतर भी ना करे ना नी तक के यानी कि कम करते हुए ना रहे हैं तब कैसे होई। तो ये बातचीत है हमारी प्यारी प्यारी जनता देखियो यहाँ से हम लोग ने जाइला अब देखो कैपेसिटी है कि उतना बड़का कायलम जाए के उतर पाई फेमस के एयरपोर्ट वहाँ पे कि ना भैया लेकिन संदरई पे विश्वास ना है तो जानो कैसे तुरिया है तू और चिकुनी गुनिया रे दादा सूरीनाम में जोन आफत करी से भैया ब्राजील में भी आफत करी से माँ हम अपन देश इन महाराम तहल सिंह की भी हम स्वागत करते हैं हमारा प्रोग्राम में भाग लिया जुड़ गया है तो प्यार से हम आपको स्वागत करते हैं। तो यहाँ देखो का हुआ इरमा एनन 5% चिकनगुनिया टेस्ट इस पॉजिटिव भैया हाँ अंदर मिसिकाबा फॉलोस कसम बोले हैं पार्लियामेंट पे बोले हैगा चिकनगुनिया सुरीनाम में निकरण 20 अप्रैल ले 7371 तक मॉन्स्टर्स अफगनोमन वारफा 6504 सेन गेटेस्ट uit de geteste sample blijken 3221 mensen die positief besmet was, wat neerkomt ongeveer 51%. De 51% aanhaast het jada admii ke huwa Suriname chikungunya aur jai ke kaati se bhaiya lathere ba admii lukke. सोचो भैया कैसे आदमी हुआ रहेगा हम भी तो काटे रहा का बोले भैया सुरीनाम में जइयो तो हाथ गोड़ में लगाए के जइयो और नोडक ना है तो लीफर ना जइयो भैया जब लेक बस में तिंगवा मतलब का बोले का बोले है चिकनगुनिया मराए ना जाए भाई। हाँ अब देखो असम बलिया में भैया बड़ी चकल्लस होए है हाँ तो चकल्लस ई होवे है ब्रेंस वेक तो जाने हैगा वो भी अन अन अंदर फोर्स इतना रहेगा देना के जिस कभी कभी ओकर हाथ में भी हथौड़िया आई जा है वो एक मारे तो गैली पड़ता है वक्त संगे काम करे कि हम भी देना के का बोलेगा फोर्स इतना बन जाए या अंदर फोर्स इतना बन जाए तो ई भैया के हाथ में मुकड़ो और मुकड़ो लेके पार्लियामेंटारी ए बी जोंस के बोले टैप यू मोफो तो जाने पर एक तो भैया ओकल लगे ना है म्यू म्यू ब्रंसवेग बोले है पार्लियामेंटारियर एबी जोंस एनडीपीआर के बोले टैप ई मोफो और एबी जोंस अब दोरो चिल्ला भैया एक दिन एबी जोंस के समान झपड़िया रहा है डेमोस्ट्रेशन पे डेमोस्ट्रेट आयला करे का बोले हैगा वे अपेक्षा रखे रिंग में तस्को तो ऐसने
कुदत कारता बस कौतू दो तीन झापड़ मारे रहा और यहाँ पे फिन अपू चिल्ला है काबुल है असेंबली में इतरा हो गए कि रोनी ब्रिंस वेग बोले हैगा बोले कौतू से बोले है एक के निकार के बहरे भी द स्पनिंग लिप ऑफ नादा जोंस फॉर आउट द फरहादर साल ऑफ मार्क्ट टर्वेल फी या पी पार्लियामेंटरी किशन अन किशन राम सुकुल हेड वर्ड फॉर द टुन ब्रिंस वेग हम तो ऑर्डर दी लेडर दैट टोट अन फरहिते डिस्कशन वार वे ओवर एंड वेयर वर्ड गेस्क्रीव्ड ब्रिंस वेग सोमर द जोंस uiteindelijk om de vergaderzaal te verlaten op aandringen van andere parlementariërs werd de vergadering vervolgens kort om de rust te herstellen. Na hervatting bood Brunswijk zijn verontschuldigingen aan, maar benadrukte hij dat de geldende regels binnen het parlement gerespecteerd moet worden. Toen Brunswijk apregeile bij ja oele te sorry mange bij ja oze excuses kere. A.B. Jones se waarvan to voorzitter baat toon haat me hatauri bhaiya jai mutar bapala wat daar gaat gebeuren ma ulta jai ke aur hua pe kabul hai A.B. Jones se excuses mangi se ga to hamari janta hum apna program leke aap log ko aur aage ko sunate ande pe ke aur hum jai la ha NDP भैया सामन बवन आन वार्तक वर्क एंड इकोनॉमिक हेयरस्टाइल बड़ा सोच में हम बाटी मांगी लाभ की होई पाई NDP ब्रैंक एगो हार्टलक क्रूद बोले जितना कम करतन काम करे वाला है ओंदर नीमर से डिस फलीमन है बोले फंडास्ता द पड़ते स्टिल बे क्राफ्ट बोले हैगा ई बात बोले है सबके शाम चाहे बहु करे के और अपने लोन का करे भैया बड़ी स्टेल है रखरेंगवा नानी रखरेंगवा बड़ी स्टेल है और जो स्टेल है तो सब कोई कुछ ना कुछ बोले है नोख अन यार खलीदन बोले एक बरिश हुई है यहाँ पर बोले हैगा अन यार खलीद फरकीर दैट लैंड फॉल्स पड़ते हैं सिचुएशन फन ग्रोट फाइनेंशियल ऑनरिक्टिंग प्राइसेस टेकन विसर कुर्स्टोन ऑन द ड्रग एंड द वर्कलोस है नाम तू असाइड का होवे है असाइड द फेलन ऑफ एंड बिस होल्डर्स तो असाइड और खराब हो गए भैया इन्फ्लेशन 3.5% हो गए है फोर्थ वीक हमें कर बारे में आप लोग को बता रही कि सूरीनाम की इन्फ्लेशन इनदम गिर गए है तो सारी मन विजय भी आ गया है विजय झिंगड़ा भी हमारे प्रोग्राम में आकर जुड़ गया है तो विजय आपको भी हम स्वागत करते हैं यह है सारी मान विजय झिंगड़ा तो दोस्तों आपको और आगे को हम अपना प्रोग्राम को सुनाते हैं बस सुनते ही रहो ई हम जाई है भैया नीदरलैंड के ओर हम जाएला लोस ड्रेक के ओर जाएला वहां पे बातचीत में एक आदमी रहा भैया लोस ड्रेक में मारिस दूसर कोई के खमीन तो है इसके आईना कवाड़ी सब झाड़ के धर दी भैया सब पलाटा एकदम पलाटा भैया मार के सब फोड़ फाड़ के एकदम झांझर कर दी से और एक बारे में एक सिपाही पकड़ी से गा था अब जाए के जाने के तरह जहल पाई से भाई बहुत ढेर जहल पाई से हेल्प फॉर स्केल ऑफ अन सुपरनल सेते रख से थे ए रख बांगे ट्रैक और जाने के तरह जहल पाई से बड़ा हाट लगे बोले भैया शर्म लगे है फ्रेड फॉर दोल तो सेस वीकन सेल चाओ हफ्ता के सेल पाई से तो आशा समझ भी हमारा प्रोग्राम में आ गया है तो आपको हम स्वागत करते हैं बोले डेमोस्ट्रेशन स्टेकर ऑफ फंड फंड असिल सुकर्स जोरा ओकर बारे में बताई गई है कि 6 तारीख मई के स्टार्ट होएगा फिन से फोर्थ वीक बारे फर्स्ट के लिए डेमोस्ट्रेशन भइल हां और बोले वेट मेरन इन तैलक असिल सुकर ऑफ द फंगन और बोले हैगा 6 तारीख मई के फिनो असिल सुकर्स के और फिन से बन जाए डेमोस्ट्रेट करे कि सबन असिल सुकर्स के ना मांगे दे स्वामी भैया हाँ ऐसे बात है हमारे प्यारे प्यारे जनता अब देखो भैया फिर द अनफाल भले चार दाई एक दुई तीन चार टोनी श्री भी आ गया है टोनी आ गया भैया तरह में बैठल है कि कहाँ बैठल है देखिए टोनी जी आपको हम स्वागत करते हैं
कि अब कहाँ भी हो हमारा प्यार आप तक पहुंचे। तो तोनी स्त्री को हम प्यार देते हैं और बताई देते हैं, आई इधरो वासी लाती या तो ओली रफी नारद दई है भैया इन तो आप से ही शुक्रवार के चार दाई फिर द केयर इन एज मेर दन ट्वी वीकन ऊपर ऊपर उक्राइन ड्रोन बीगी से ये बात हुएगा रूसी से कुछ प्लाट पे जहां पे रूसलैंड के तेल के ओली राफिनार द रही है धुआं पे। तो हुआ पे चार दाई ड्रोन दांगी से उक्राइन रूसलैंड पे। तो जितने लोग आज फ्री हैं आपको स्वागत है। तो उक्राइन ड्रोन अनफॉल फॉर ओर सा फ्राइडा ब्रांड ए रूसी से हाफन साथ एक तो तेल इतना महंगा होएगे तो नहीं ट्रेम चलाइए तो ओम्बो तो ना लगे है तेल स्ट्रोम से चले है मैं अपन मोटर फिचुआ चलाइए बरोम चलाइए ओटो चलाइए तो तेल के प्राइस यहाँ से लंका पहुंच गए भैया। हाँ और इधर देखो उक्राइन रूसलैंड के हाफन पे चार दाई दागी से तो बेटा सनही बोले लाती है कि आई गेले बहुत बहुत प्यार यहाँ से। हाँ स्वागत है। तो बताई गई है बेटा सनही कि ट्वेई केर एद ब्राक एद उक्राइन से अनफल ब्रम एंड दार दो लिख द ओली प्रोडक्ट इन द स्टाट्स इन हाफ अ स्टाट्स स्टिल भैया इन वोनर्स फन तो आप से ही एक जगह नाम है रूसलैंड में दत फन द स्वार्थ से लिख क्लागन over de gevolgen van het milieu door de aanvallen zijn de olievlekken in de zee komen. Lokale autoriteiten roepen bewoners op binnen te blijven. Toen Rusland dagen Oekraïne, ik heb hier Oekraïne, de Marische Tjaardij, ook een olieraffinaderij, Tjaarke Dardese, Oudher Tolonjane, Boot na Habra Huwehega, Boot na Huwelege, Iran, Iran, Lege Sevilla. और हम लोग के बड़ी दुख है भाई। अब देखो यहाँ बताए गए हैं अमेरिका के बोर्ड जो है स्कीपन दी तोल बतालन आन ईरान बेस्ट्रार फॉर हॉर्मोस क्रेकन मोहलक संसीस। और जो अमेरिका के बोट है वो सब हॉर्मोन्स में ईरान के तौल भरे जो ने हमें हबड़ा करे स्केफ फॉर बदरई फंदी बतालेंगे दून अन ईरान फॉर दोर खांग फॉर स्टार्ट हॉर्मोन्स लोपन है तिजी को अब स्ट्राफ मात्र इखलंदार फॉर अमेरिका के मिनिस्टर फॉर फिनांसियन बोली से कर बारे में बोले है दैट हेल्प ओक फॉर बतालिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशंस अस ईरान से हाफन हाल्फमान सेक्ट मिनिस्ट्री और अमेरिका बोले है ऐस करे है होते से सैन फन ईरान से ऐसन फॉर टोल बोले द वार्स्क्यूइंग इज बदूल ओम अमेरिकन से एंड नीट अमेरिकन से पर्सोनन ते इन फॉर मिरन। तो हमार सोचेला तो लोग के हम एगो गनवा सुनाई दे तो अबे हम आ जाएंगे तो क्या सुनाएंगे जरा देखो तो हम आप लोग के लिए क्या लेकर आए हैं हमारी जनता। तो आपको हैप्पी बर्थडे पे सबको जितनी जितनी लोग के जन्मदिन है आप सबको बधाई है। लेकिन हम बोले जाए पतोहिया खोजलाई कहाँ से पतोहिया ला कोई तो नहीं लागा डाम से ला कोई किसे ही फबे से ला कोई माँ बहन चित्रा उतार भी आकर जुड़ गए हैं आपको हम स्वागत करते हैं। चलो पतोहिया पहले खोज लेवल जाए तब हम आ जाएंगे।

और आपको जरूर पता होगा कि कहां से तुहार पतोहिया आई है। तो जनता पतोहिया के तो आते जानते रहते हैं, आप लोग तो जाने हैं, लेकिन जोनी की कहानी तो आपको तो सुनना पड़ेगा उसका समाचार। तो राजा अयोध्या भी आ गया है, दिलीप जी आ गया है, बुद्धू इर्शिला भग्गू समुच श्री नाम से भी आके हमारे प्रोग्राम में जुड़ गया है, अब इसको हम बहुत बहुत प्यार देते हैं। और हमारा बहन चित्रा अवतार भी लेने से फबी से आकर हमारा प्रोग्राम को और बहुत प्यार से सुन रहा है। और आज यहाँ पे देखो भैया, अब जोन आदमी सूरी नाम में जा है सूरी बैठ के ले बुद्धू, हाँ बहुत जबर आदमी लोन हुआ, खौक करे भैया बुद्धू, बहुत जबर सब खौक करे। तो ऐसे चिनवा भी बड़ी जोर करे भैया, एक चिनैनी भाई ते चिनैनी न जाने खाली बामी नासी बनावे, खाली बामी नासी न जाने चिनैनी बनावे, चिनैनी गैला जुआ खेले भैया कैसीनो में, और इतना जुआ खेलिस भैया, जुआ इतना खेलिस कि ओकर मूड पिराए लगल है। अब बोलिए काहे के जोनी, काहे के मूड पिराए लगल? तो चित्रा बड़े नाचत नाचत ना इच्छी नैनी कसिनो में गल भुक्कर मूड़ी बहुत जबर पिरान भैया, एक से इतना फिर तक यारक चिनैनी और एक सबन ले के गल अकादमी सिकन हाइस में भैया। और जो हुआ गैल है और रहत रहा बीरम स्त्रांत में सामन में तन मन तरवेल हर एखन उतर ए शीना बड़ फर ब्लाइफ, तो एकर आदमी रहत रहा शीना में और ये बीरम स्त्रांत में रहत रहा दूसर आदमी के सगे, अरे तो मूड के पीरा है कि ना राजा बतावे द फ्रॉग बोंड अन ब्यूरोस्ट्रान इन सुरीनाम सामन मेतन मन तरवेल उकर एख एख एखनोत चिनवा शीना में रहा। और बगले का आदमी बोले फोकस बवोनट वारस है इर्दर ऑफ द आफन सामन और इस अब गए लहा कासिनो में भैया। और बोले भाई तेज कोम स्टॉप द फ्रॉ आउट द ऑटो और बोले एंड गिंग डायरेक्ट नार हार कामर, हां डायरेक्ट गए कमरा में और जैसे उतरले भैया और मुड़ी पिराए छट पियाए भाई और एक के लेके जा अकादमी सिकन हाइस में। तो बोले हेगा, बोले और कैसे ले गए भैया बताए गए हैगा, तुन द पेन आन हिल फ्रूक द फ्रॉ हेम हर सिस्टर बेलन, बोले हमार बहन के तू बेल कर हमार मुड़ी बहुत पिरा है, वो सब टैक्सी ले के गए नानी, टैक्सी ले के गई है और गई है भाई क्या कैसे यानी कि अकादमी सिकन हाइस में कौर नार द वेल द फ्रॉ नार द टॉयलेट खान मार से रिया के द फॉर फॉर नीट मेर हर सिस एंड बोन ट्रोफन हार दार बोविस्ट लूस वाले तुए मियर और त्या गिर गे मूड के पीरा से सेवर ना द कामर खबरा वन ना दिरे का एम्बुलेंस ओ घर वे गिर गे रात तसबन ओके ले गे। मां बोल ये जॉनी एकर मुड़िया काहे पिरात रहा कि ना कि एकर अदमिया एकर आदमी बेचारा चिनवा देश में रहा दूसर आदमी के रहा वही मारो कर मुड़ पिरात रहा का ना ना ना ना बहुत बड़का बदराख लाश भैल है ना कि बरेती बाटी गैला कैसीनो में भैया और बहुत बड़का बदराख इ लाश भैल कैसीनो में कि अकर मुड़ी एकदम पिराए लगल कि अस्पताल पहुँच गए है। तो हमारे मौसी लोन हमारे मौसा लोन तू लोग के हम यहाँ से बहुत प्यार से प्रार्थना करेला कि मुड़ी ना जइयो पिरवावे भैया, दस दाई हरियो तो एक दाई जीतियो और एक दाई जीतियो बोले हम जीतली बाटी में दस दाई जोन हरले बाटे ना दीदी कहन कभी ना बतावे है ना बुद्धू है कि ना चिजवा कि हम दस दाए हराई गईली। तो इच्छी नैनी बिचारी इतना पैसा लाद भल खरोट बदरा कि वो मरे से बचल भैया सिकन हैश में है, सिकन हैश में है ये औरत। तो ये बातचीत है हमारी जनता, ई है हक
आदमी जो करे है तो ओकर संगे ऐसे नहीं हुए है। जब हार जइयो भैया तो मुड़ के पीरा तू खोजो है कि ना खोजो है। अब देखो ब्रासिलियन के बात हम कहां बताएला नानी। हाँ ब्रासिलियन के बात बताएला भैया मास्कर कोखल वेरन द फेस जैसे सुर जाती भैया तू जाने मास्कर पहले अमेरिकान के और एगो यास पहले क्यों मां बंदूक अंदूक कोई दागी त लैया ना हो बड़ा होई पाई फेस और वापन भैया स्टॉलकर्स एफर लगे ई ब्रासिलियन के सभन पाई से अतुल जाने असर ब्रासिलियन भाई सोना जहां खुदा है हुआ जाय जाय बड़ी जबर रूफ करा हमान मनोरन बोले दाल होई गे है। हमार हनीज मनोरथ बोले क्रिमिनाली ते दाल होई गे है। सोचो भाई रात के तू रात के सूत ना सके है फराई डाम पे ना चल सके है जहे देख वहां लुटेरा घूमे है रात के हिम्मत है सन्ना में 12 बजे आए के वाटर कार में बैठे कम से बताओ है कोई हिंदुस्तानी है कोई मलाई जो उन बोले कि हम जाए आज वाटर कान पे 12 बजे रात के हम जाए के को ठंडा बीर पी के चली आई ना हुई पाई। पहले के जमाना में सब रहा ऐसे अपना है बोलियो हम जाए तरी सहरिया में 2 बजे रात के अपन औरत के संगे हाथ पकड़ के जाई और तरी से घूम ली वाटर कान फोर से इलान दिया और बाजार आजा लगे रात के तरी हम जाई घूमी और हो पाई भला कोई ना कर पाई। तो रोई काली भी लगा डाम से आकर हमारा प्रोग्राम में जुट गए हैं। तो हमारा छोटा भाई है रोई काली आपको भी हम प्यार से स्वागत करते हैं। गांव के दोस्त है तो आपको हम भी यहां से बहुत प्यार देते हैं रोई काली के। तो रोई काली अब बातचीत ऐसे हुए लगा डाम के आदमी बहुत हमारे पास साइड है फेसबुक के बुद्धू है भैया यरिकाबा के और शर्मक्का के आदमी हमारे पास है जो असर हमारे प्रोग्राम को हम लाइव देखे हैं और सुने हैं। तो बताओ हमसे चलो सब कोई सूरीनाम में आपके हिम्मत है 2 बजे रात के अपन आदमी नहीं अपन औरत के लेके और हाथ पकड़ के फ्राई फ्राई कर पनानी लगे बाजार लगे वाटर कान कहीं घूम पियो जाई पियो चलो भला वाका पासी ना बसता थे भैया ना बसता थे। तो पता मिले ले सूरीनाम में बहुत बारिश हो रहा है दोस्तों और जब बारिश जा आते हैं तो चिकनगुनिया के भैया फरियारी हो जाए। एक तो चिकनगुनिया 85 तक % आदमी लोग के हुआ काट चुकल है। अब मिशिकाबा बोले है टेस्ट करी से तो आधा से ज्यादा बफोल्किंग के चिकनगुनिया हुआ काटी से। तो जितना लो सूरीनाम में बाटो भैया पानी बरसात के समय है और पानी जब बरसे तो चिकनगुनिया और ज्यादा हुए है तो सबके काटे बड़ी दुख देवे भैया। सुना है कि ये के चिकनगुनिया काटे हाथ गोड़ फूल जा है और कितना हम भी तो काटे राम ले ले दे ले ओलान भैया 3 हफ्ता पलाटा रही बुद्धू। हाँ हम भी के मारे रा मार और के कटवाए फटवाए के अली भैया अबे फल उपक के नाम के ना याद करीला लेकिन जो हमारी जनता हुआ रहे वो बिचारन कहाँ जाई। आपको यहाँ से बहुत प्रार्थना करीला कि अपने के बचा कर रखना और उसकी तो जल लगा लेना। मालूम नहीं कि वहाँ पे सब लगावे पुष्पोती हुई थी मारे की नाम भैया लेकिन आप लोग अपने आप को जरूर ख्याल करना। तो इस सेशन 2 तक यार के ब्रासिलियन भैया स्टॉलकर्स एफर पे पकड़ी से उतरा ढेर चीज लेके यानी कि बंदूक रहा ओकर पास पत्रून रहा कालीबर 12 रहा हाखल पत्रून रहा ब्राउनिंग रहा नहीं ब्राउनिंग कौन जो मैरक है दर पिस्तौल के ब्राउनिंग भाई हम तो ना जाने यार हमारे पास तो ना है पिस्तौल भैया और ना है बंदूक तो हम मैरक कहां से जाने ब्रैया। तो ये बात अब देखो बेयोखे जइयो सूरीनाम में तो हुआ के कानून बोले है बिरू फरन ओपन बार खसों थे सौर बोले कौरत बुरुक पहिर के यहाँ ना आइए
कोर्तो ब्रुक पहिर के हिया ना ये बेयोखी बोले हैं, बोले क्लीडिंग फॉर स्क्रिप्ट हुआ है, बोले कोर्तो ब्रुक पहिर के ना आयो और स्लीपर पहिर के ना आयो, हाँ जूता पहिर अब बताओ जे के ना है जूता, बहुते आदमी के जूता ना भैया तो कैसे जंगियो, बोले अपन जूतवा हमें लेनी कर दे, कौन दे तो के भैया बेना लांद में जो नकाब बोले है आदमी लोन कितरे के ना है, गरीब दुखियन के कितरे जूता ना है, स्लीपर पहन के चले तो बेयोखी ना जाई पाई भाई, तो के चिकुनी गुनिया चाहे मुड़ीम काटी चाहे घोड़ में काटी चाहे आंख में काटी और चाहे हुआ काटी जहां ना चाहे काटे के तुल तो समझ गए ले कहा हम बजाय मांगीला, तो यहाँ बेयोखी बोले है क्लीनिंग फॉर स्क्रिप्ट से, बोले जइयो हमारे लगे आयो, बोले कोर्ट ब्रुक पहिर के ना आयो, स्लीपर पहिर के ना आयो, लंग ब्रुक पहिर के आयो, जूता पहिर के आयो, भैया हो श्री नाम के बांक में जइयो भाई तो टोपी उतरवा देवे, हाँ तो राज राम लगन भी आ गया है हुआ टोपी पहिर के, और तू ना जाय सको है भैया बांक में हुआ के कानून है, और जो देश में जैसन कानून है वही के कानून के मुताबिक तो चाहे चलेगे ना राज राम लगन, तो रेस जीता सरजू भी आ गया है हमारा प्रोग्राम में और भाग ले लिया है। एंटी करप्शन वेट, अरे भैया करप्शन से नमो कब दूर हो ही रहता, दुनिया भर के वेट नहीं करे देशवा में, बाकी एक को ना काम है भाई, जितने एंटी करप्शन वेट हुए उतने जबन हुआ करप्शन जगे है, जो आगे भैया जैसे तू मकई डाल दे हंडिया में भैया तो फटाफट फूटे जैसे पॉपकॉर्न, ओइसे सुरीनाम में अंडा से बच्चा ले करप्शन भाई, देखो ना यार काबा खत्म कर दे इसे बुद्धू ना करप्शन। अब देखो जो बोटिया चले गयाना सर नाम से हुआ के ने का बोले है जो अनमी एफएम में रहा उ करप्शन ने मैं लक्षांतराल करप्शन कहां कहां सीकर है करप्शन, और इतना करप्शन ही करप्शन है, इतना करप्शन है अब्बे सब बांध करे श्री नाम में एंटी करप्शन वेत के बारे में, तो हम बोले बता दे ना मन करे के बतावे के मन विश्वास ना रहेगे है, मैं फिर भी बताएला कि यहां बोले है रूप पब्लिक फंक्शनरिशन ऑफ ओम हास्ट मार्कन मेड एंडिंग फन हर फॉर क्लारी फन इन कॉमन फॉर्मूशन इन फ्रॉक्स स्प्रेक फन कम्युनिकेशन इन श्री नाम बनाद्र ACC Forsyter and Crenton Elliot Bryan इमाम बख्श दे नोट साखीर फोर बोले अब क्लोक के चाहे रखस्तरीर करके एंटी करप्शन वेट के बड़ी लंबा चौड़ा लिखल भैया, लेकिन हम कहा बोली करप्शन के बारे में हम थक गली बोलत बोलत और कभी ना ऐतरुए हुए हैं, लेकिन आप लोग को हम बताई भैया कुर्सवा के तरह सुरीनाम में है, और तू जाने नीदरलैंड के आदमी जो आवे सुरीनाम तो उसे पूछे है बोले बोले वेरवा कैसन है, रामोन बोहरी भी आकर हमारा प्रोग्राम में जुड़ गए हैं, सनाम से लोग परिवार हम लोग के आते हैं नीदरलैंड में, तो पहले बोले है ए हुआ वेरवा कैसे है यार, या सोच पहिर के चलक परी कैसे है, तो बोला मोई मोई है फिरती फैक्ती खराद है ऐसे बोल बोल छठ ठीक है ठीक है, बोले यशवा ले लिए यार, बोले यशवा हम लोग ले आवे साथ रहे तो इसके फॉल वो प्रॉब्लम ना है, और जो यहाँ के आदमी जा है सुरीनाम, हिया के आदमी नीदरलैंड के आदमी जा है सुरीनाम, तो हुआ का बोले है तो बोले ए भाई का बात है यार मोई मोई में ए कुर्सवा कितना है यार तो लोन जानो ना हिया के रमियन नीदरलैंड रमन जे जा सुरीनाम ए भाई कुर्सवा कुर्सवा कितना है यार, तो बोले मान कुर्सवा तरी से सख ओ शिट मान हम तो आए ले यार बोले कुर्सवा चाड़ल मोई मान मोई ओ ओ मोई है ना मोई है, बाकी ना सोचे है कुर्सवा जब चाड़ल तो हुआ बिचारन के सब चीजवन चढ़ जा भैया, तो फिर भी हम आप लोग को कोर्स के बारे में यहाँ बताई है सुरीनाम के कोर्स एरो है तो ये फिर तक फैफन तक तक कलियारा द्रियम फिर तक
1 euro per SRD per jo. Amerikaan dollar hè, 37,50 SRD per jo. 1 dollar per 37,50 SRD mille. Dus toe, dan moet je ook betalen dat de koers wat kies je hè. En Nederland kan me, Suriname kan me, je Nederland hij, dat betalen hij mooi weer hè. Ah, goeie, mooi weer hè. 15 se upper hè. 15 से ऊपर है 20 पहुंच जा है और कोनो कोनो रोज 24 भी पहुंच जा है मत घबराना अयो वातरकांत ना हिया स्की फनिंगन पे 24 घंटा जाए सके प्रॉब्लम ना है लेकिन हमारे वातरकांत पे हम लोग ना घूम सके ला भैया ये बड़ी दुख के बात है तो ये बात है हमारी प्यारी प्यारे मीठा मीठा जनता और आगे हम मांगे ला जाए और कुछ बताए भैया मिसी काबा का बोले हैं फॉलो फॉलोस कसंत है के मिसी काबा अनप्रिक्ट से कसंत लीफन लीफस लांग फरलामिंग भैया एको मस्कीटा जे तो के काटी अनप्रिक्ट कन फॉर स्किल बतेकनन टसन अस कसंत लीफन एंड लीफस लांग फरलामिंग दोर पोली ऑफ द हेसस कार्डर द मास्टर बिफोरबील्ड और यहां बताए गए हैं वर्ड van de ministerie van Volksgezondheid gebaantje toe he hamare janta agar aapko masla hai pouli aur kink hoste aao is sab ke bare mein aap log ko jana chahiye doctor ke paas jana chahiye hamare pyare pyare janta nahi bahut bahut musibat aapko ho sakta hai to hamare nani lon yaad karna ki अपने आप को इस समय पे बहुत एक्स्ट्रा ख्याल करना पड़ेगा हमारे जनता अब देखो और आगे हम जाएला भैया बोले खरायंद कलावन मतलब कलावे जाने का बोलो तो अरे वो कलावे है जैसे बाग के कलावे है नकुनियन जोन घुसे निकले हैं बिलार के भी कलावे है कातक कलावन और उका बोले है बेर के जोन नकुनिया घुसे है ता अब उस सब का बोले सुरिनाम देश में बोले हिया के रोफर सुन जोन बा 20 आख तक रोफर सेगा बोले एक बदुल रोव दीरन है जेके कलावे भैया खड़बोटे है वो हिया बताए गए हैं दीरन नेमन वासन उदक है बन मेर नीत अन स्लंग एट अन स्वेन एन कान मंदन फॉर द मेन स्टॉप नीत दे विल ऑलवेज मेर एंड मेर एंड मेर एंड मेर एंड मैक्स एंड हे इज स्लिम genoeg om zich op minder fraaie manieren te verrijken हिया बताए गए हैगा बोले हैगा अमनेस्टी इंटरनेशनल लीडर्स फ्रॉम इजराइल अमेरिका रूसलैंड ओमस्क्रीव ऑल द फ्रागजुक्टिके रूफ dieren in hun streven naar de economische politieke dominantie gebaantjeet hoe he hamare janta hamare pyare pyare logo ab dekho bhaiya bari dukh ke baat hai abhi abhi naya samachar aaya hai ek drian 5 tak yaar ke admi bhaiya Suriname mein मर गए भैया यहां बताए गए हैं कैसे मरल है एक एपिलेप्सी रहा भाई तो लो जाने फालंद सीखता हैगा और ऐसे वो बेचारा मर गए है और ये बातचीत हुए हैगा इनर खुद ऑन द पर्सिक बोनन वैक्सीन नाम में और हुआ गोत्रों में गिर के ये आदमी मर गए है आप लोग को पता है एक लेक में भैया को लेक बहत रहा एक लेक बहत रहा और ये लेक बहत बहत बहत बहत जाए के आइल है जहां पे असेंबली के बप्पा लोन बैठे हैं जहां बप्पा लोन बैठे असेंबली के भैया वातरकान के तुलन जानो फॉर सेलन दिया तो हॉलैंड के पांच छह मिलाए खूब गैला घूमे तो इस फॉर साइलैंडिया पे घूमे अचित्ते में का देखे भैया कि एगो लेक हिंदुस्तानी के जेस ब्रुक पहिर के ईंटा पे और फसल है भाई हां
फसल है लाइक फसल है और लाइक है तो बुरल है वो बाकी इटवा पे जाए के फंस गए है तो ई सब भैया नहीं दल अंदर के जमीन जाने रैक भैया पानी कोवे लगे शुरू करे बैल ओल करे सिपाही बैल कह जे भैया हमसे बताओ कैसे स्त्रात के सिपाही कैसे स्त्रात अवांतर काम कितना दूर है और आसाम ब्ली लगे भैया सिपाही ना आवे अगोरत अगोरत अगोरत पानी भैया चढ़ गए मारी राल्फा भैया और लाइक भई गए पाइबे ना करिस लाइक यार हम नहीं आज पाई से कि ना ई है हमारा देश श्रीनाम एगो लेक जे कहीं भैया ते का बोले हुआ तो के चाहिए तुरंत जाई के जब गैल हल्फा मारी लेक बही के भाई और अब लेक ना मिले है एगो हिंदुस्तानी के लेक के बारे में रहा इन मिडल्स ओकर बारे में ना लिखल है फिर से कि उ लेक वा मिलल है कि ना मिलल है दोस्तों लेकिन ये बात लिखल रहा कि ऐसन ऐसन ऐसन ऐसन चीज भइल है सूरीनाम देश में। दोस्तों हमारा प्रोग्राम यहां से धीरे धीरे खत्म आने को हुआ है पूरा घंटा आपको हम कुछ ना कुछ सुनाया है समाचार सुकर सुनाया है ओकर इन सिट पुते फोर्सटेल फॉर स्टार्क थेरफील अस मनीर फाउंडर ऑन फेस्ट पायन तो हमारा प्रोग्राम यहां से खत्म आ

मोहन के मुरलिया के बांध में हम यहाँ से अपना प्रोग्राम को खत्म करेंगे। एक घंटा हो चुका है, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी में हमारा बड़े भैया प्रताप अवतार भी सैफो बेई लैने सैफ आज से हमारा प्रोग्राम में आकर जुड़ गए हैं, लेकिन अब तो हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। जितने जितने लोग हमारा प्रोग्राम में साथ दिए हैं आप सबको बहुत बहुत प्यार। प्रताप अवतार

0: Adecco in het eerste kwartaal daalde met 1,8% tot €981 miljoen. Ook de winst kwam lager uit. Die daalde met 6,4% tot €412 miljoen. Pensioenfondsen profiteren van de flink gestegen beurskoersen van de afgelopen maand. Volgens onderzoeksbureau Aon is hun financiële positie in april daardoor fors verbeterd, waardoor de kans op pensioenverhogingen weer is toegenomen. En dan het weer. Ook vanavond helder. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen eerst nog zonnig, maar later in de middag en avond kans op enkele regen- en onweersbuien. Temperatuur tussen de 17 en 25 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
3: तो दोस्तों आप जानते हैं प्यार भरी गीतों की बहान प्रोग्राम आज फिर हमारा शुरुआत है कुछ नई नई कुछ पुरानी पुरानी और कुछ मीठी मीठी स्वीटी स्वीटी और यानी कि शेर और गाना भी आप लोग को हम सुनाएंगे दोस्तों कि कहते हैं कि मोहब्बत किशोर मोहब्बत किशोर नहीं सिर्फ एहसास होना चाहिए मोहब्बत किशोर नहीं सिर्फ एक एहसास होना चाहिए और हमें जिनसे प्यार है बस उन्हें पता होना चाहिए हमारे प्यारे सुनने वालों आज कुछ कॉमेडियन यानी कि कुछ चुटकली शेर भी आप लोग को हम आज बताते रहेंगे कि छोटे छोटी सपने हैं मेरी अरे छोटी छोटी सपने हैं मेरा छोटी सी है आशा पूरी दुनिया पर हुकूमत हो मेरी बस इतनी है अभिलाषा हमारे दोस्तों तो हम चाहते हैं बारिश बन जाना एक गीत की ओर आओ मिलकर बस सुना जा

दोस्तों बारिश बन जाना कुणाल कुणाल वर्मा का गाया हुआ ये सॉन्ग है और प्यार भरी मोहब्बत का पैगाम यहाँ से हम और आपके कानों तक पहुँचाते हैं। कि दोस्तों आप लोग को जैसे मालूम है फिर भी हम बता देते हैं, ये है रेडियो फाहौन। हमारा पता है न्यूटन स्ट्रैट नंबरो 520। हम सिर्फ देहाबी प्लस रेडियो पे आप हमारा फ्रिक्वेंसी है 95.3 MHz पर और नहीं कनाल 8 पर और डीएबी प्लस रेडियो पे हमारा प्रोग्राम आप सुन सकते हैं 24 घंटा। नहीं हमारा वेबसाइट जो है पूरा विश्व में पूरा दुनिया पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं सुन सकते हैं और वो है www.fahon.fm.nl पर। और हम चलते हैं, मंजिल तो एक होंगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। मंजिल तो एक होगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। तलाश खत्म हो जाएंगी मेरा, तलाश खत्म हो जाएंगी मेरी जब तेरी लबों पर मेरा नाम होगा। दत्वसलमो ये है दोस्तों कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती। अगर जब आप दूर हो, आपके चाहने वाले दूर हो, तो आप इसको जरूर अपने चाहने वालों को सुनाना कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती। बस तेरे पास आने को मेरा जी चाहता है, टूट कर सारी दुनिया की रस्मों रिवाज को तुझे अपना बनाने को जी चाहते हैं। और प्यार की बातें तो करना हमारा काम है। चिरागों में इतना नूर ना होता तो तन्हा दिल मजबूर ना होता। हम आपसे मिलने जरूर आते अगर आपका घर इतना दूर ना होता। तो हम चलते हैं, छाया है यो दिल पे क्या नशा है, दिल है तुम्हारा कविता कृष्णमूर्ति का ये सॉन्ग है। आओ मिलकर हम सब सुना जाए।

0: ठाकुर कृष्णामूर्ति, कविता कृष्णामूर्ति, शान का गया हुआ गीत है, छाया है, और ये छाया है जो दिल पे क्या नशा है। और कुछ आज हम नई पुराने गीतों से आपको हम आज सेवा करेंगे दोस्तों, कि कहते हैं उनका गुस्सा, उनका गुस्सा और मेरा प्यार, उसका गुस्सा और मेरा प्यार एक जैसा है, क्योंकि ना उसका गुस्सा कम होता है और ना मेरा प्यार कम होता है। हमारे सुनने वालों, और गुस्सा में तो प्यार करना भी आता है, और कभी प्यार में गुस्सा करना भी आता है, कि कहते हैं हमसे दूर होकर हमारी पास हो तुम, हमसे दूर होकर, हमसे दूर होकर हमारे पास हो तुम, हमारी सुनी जिंदगी के आस हो तुम, कौन कहता है हमसे बिछड़ जाएंगे हो तुम, हमारी हमारी यादों में हमारे साथ तुम हो, और सदा साथ ही रहेंगे। और ये सिर्फ लफ्ज कह सकते हैं दोस्तों, कि कहते हैं जब बारिश के मौसम आते हैं तो बारिश में और अपने चाहने वाले को याद करते हैं लोग, क्योंकि अकेले महसूस होता है, और खास करके विंटर के महीना में, कि ये बारिश का मौसम बहुत तड़पता है, ये बारिश का मौसम बहुत टपट्टा है, वो बस मुझे ही दिल से चाहता है, लेकिन वो मिलने आ भी तो कैसे आवे दोस्तों, उसके पास ना कोई गाड़ी है और ना कोई छाता है। हम चलते हैं कुणाल वर्मा के ओर, रिमझिम से ये सावन। अगर जब हम मौसम की ओर बढ़ते हैं तो रिमझिम का ये सावन और बारिश का, तो ये दोनों तो साथ में चलता है ने हमारे दोस्तों। आओ चला जाए,
1: बचाने तू मुझे, क्यों बचाया?
2: अरे तुम पागल हो गई हो?
1: वो कहता था प्यार करता हूँ, शादी के मंडप से भाग गया साला।
2: तो ये प्रॉब्लम है। ओके बाबा सॉरी।
0: सॉरी बोलने में आप मत चूक जाना।
2: ट्रेन 6 घंटे

shots by late 3 half is by

गालो मुस्कुरा लो, महफिले सजा लो, हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। हमारे प्रिय प्रिय साथियों, सुनने वालों, आज का इस सीन प्रोग्राम का शुरुआत मैं करने वाला हूं हमारे हॉलैंड देश का और सूरीनाम देश का, खास करके महान गायक जो कितने बार अपना प्रोग्राम दिया है हमारे हॉलैंड देश में और वर्ल्ड वाइड सूरीनाम देश को भी प्रमोट करते आ रहा है सदियों से, इंटरनेशनल कलाकार हमारे सूरीनाम देश का उस्तादों का उस्ताद, बैठक गाना का महागुरु द ग्रेट रॉबी उदितराम कुछ टेलीफोन के बारे में आज सभी को सुनाने वाले हैं। तो मिलके सुनते हैं द ग्रेट मैस्ट्रो रॉबी उदितराम।

शाबाश महान गायक हमारे सूरीनाम देश का, जिसपे नाज है गर्व है, उस्तादों का उस्ताद और बैठक गाना का महागुरु डिग्रेट रॉबी उदितराम जी। अगला बयान एक और महान गायक हमारे हॉलैंडिस का, द लायन ऑफ बैठक गाना को लाते हैं प्रोग्राम में, द ग्रेट रविंद्र सिंह शिवनाथ जी का बिल्कुल सुपरहिट सॉन्ग ऑफ द ईयर, झीनी झीनी बुनिया।

0: शाबाश शाबाश पियो पियो राजा बाय रविंदर भोला सिंह। अगला बयान का जबरदस्त सॉन्ग है, सुनने को जा रहे हैं आप सभी को मशहूर गायक हमारे हॉलैंडीज का उस्ताद दीपक कन्हई जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान की जा जा जा रे आई मी बॉय आसाना पियो पियो।
1: तुम हो हम है, न तुम कम हो न हम कम है।

सुंदर बयान है सुनाया आप सभी को मैस्ट्रो दीपक कन्हई फ्रॉम द म्यूजिक फॉर्मेसी रिश्ता जा जा जा रे पावन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है एक से एक जबरदस्त सुपर सॉन्ग्स फ्रॉम द सूरीनाम बैठक गाना डायनेस्टी आप सुन रहे हैं और ये भी खास करके पावन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से लाइव ब्रॉडकास्टिंग के साथ तो यारो वक्त हो गया है ना कुछ ज्ञान के बातें हो जाए। अर्ज किया है भाई भूपेंद्र जी ने कुछ यानी कि ये ज्ञान के बातें हैं तो भूपेंद्र जी को लाते हैं बाद में। उससे पहले कहा है मनुष्य के बारे में यारो बहुत ही ज्ञान से भरी हुई बातें जो मैं आप सभी के साथ बांटना चाहता हूँ। और ये कहा है कुछ विद्वानों ने कुछ मशहूर मशहूर लोगों ने पढ़े लिखे लोगों ने यही आशा उम्मीद लेकर कि इन बातों से कुछ तो जरूर हम लोग सीखेंगे। अर्ज किया है श्री हेनरी डाफ थूरो अमेरिकन स्क्राइबर 1817-1866 और हेनरी डाफ थूरो ने कहा है हम लोगों यानी मनुष्य के बारे में द मेंस फन रेक्ट एंड वेट द फॉर्मेल द कॉन्सर्वेटिव टीफ मेंस इज एन क्लोरलोस इंडिविड्यू। Nog eentje van Henry David Thoreau, Amerikaans schrijver, 1817-1862. Over Henry David Thoreau ne kaha hai yaroki, de mens vindt zichzelf het meest terug in aarde en materie. Geest is hem vreemd, hij is bang voor spoken. Shuang Tse, Bhouti Purane Zamanika Admi, Chinees, Tawit. Tistisch filosoof rond de vierde eeuw voor Christus. Uit Zhuang Tse kaha hai manushya ke bare mein aroki. De volmaakte mens heeft geen ik. De wijze heeft geen goede naam. De heilige heeft geen verdienste. Armando, Nederlands kunstschilder, dichter, violist en filmmaker. 1929-2018. Armando ne kaha hai manushya ke bare mein ki een gedreven mens is geen gelukkig mens. Jacques Henri Bernardin de Saint-Pierre, Frans ingenieur, wereldreiziger, schrijver en filosoof. 1737-1814. Jacques Henri ne kaha hai manushya ke bare mein ki eenzaamheid zorgt ervoor dat de mens ten dele terugkeert naar het natuurlijk geluk door het sociale ongeluk weg te nemen. Maximilien Robespierre, Frans advocaat en staatsman, 1758-1794. O Maximilien Robespierre, nikahahe manusje kebarmeeroki. Elke wet die de onaantastbare rechten van de mens schendt, is wezenlijk onrechtmatig en tyranniek. Het is geen wet. Hamloka apna Bapu, Sri Mahatma Gandhi, India's politicus, advocaat en vrijheidsstrijder, 1869-1948. और महात्मा गांधी ने कहा है मनुष्य के बारे में आरो की geweldloosheid is de grootste kracht ter beschikking van de mensheid. Het is machtiger dan het machtigste wapen van vernietiging door de vindingrijkheid van de mens bedacht. François Cavanna, Frans journalist en schrijver, 1923-2014. Oh, François Cavanna, ne kaha hai manushya ke bare mein aro ki.
God is een narcistische neuroot. Hij schiep de mens speciaal om aanbidend

एकदम शाबाश शाबाश मशहूर गाने वाली ऑल इंडीज का द ग्रेट आइरिश चैतू जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये थी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। अगला बयान एक मशहूर गाने वाली सूरीनाम देश हॉलैंडेस का uit de jaren 70, 80, mevrouw Ramdulari Sadhu जी को लाते हैं प्रोग्राम में। अब श्रोताओं को मालूम होना चाहिए कि ये माता जी हम लोगों का जबरदस्त संगीतकार श्री राजकुमार लक्ष्मण जी का पूज्य माता जी है। तो मिल के सुनते हैं छूटल जाए सखी रे नई हरवा श्रीमती राम दुलारी साधु।

शाबाश शाबाश। श्रोताओं को मालूम होना चाहिए कि ढोल पे था मशहूर ढोलक प्लेयर आइडियार 80-90, अब तो जबरदस्त प्रोड्यूसर हो गया है, म्यूजिक डायरेक्टर श्री अशोक अयोध्या, जो ढोलकिया बजा रहा धोबिया मर जाइए पे। और श्रोताओं को भी मालूम होना चाहिए कि

काफी दिनों बाद मशहूर गाने वाला सुरीनाम देश हॉलैंडिस का द ग्रेट रबीन चैतू मोर सजना पावन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है जोर तोर से सरनामी संगीत बैठक गाना का पहला अध्याय आप सुन रहे हैं हमारे सरनामी संगीत का अगला बयान और वो साथ ही साथ आज के हसीन प्रोग्राम में आखिरी बयान रहेगा और वो सुनाने को जा रहे हैं उभरता हुआ कलाकार विनेश एरखी ससुर गली।

शाबाश, ससुर गली जाना है। उभरता हुआ कलाकार विनेश एरखी, बैठक गाना 2024 का ये सुपर सॉन्ग। तो हमारे प्रिय श्रोताओं, ये तक था आज का ये हसीन बैठक गाना का पहला अध्याय का प्रोग्राम, जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। यारो तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूं यारो, कहीं जाना मत।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुने द प्लस रेडियो पर नतीलक उक्त बलैस्त्र आप इंटरनेट के लहर द्वारा फाउन FM.NL पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। तो जो भी रेडियो का काम हो देखकर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो खास फरमाइश से हो जरूरी खबरें या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में कॉमर्शियल बनवाकर या तो आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हो तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कॉमर्शियल बनवाकर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो तो हो सकता है कि आपका धंधा भी फटाफट चल पड़ेगा। किफायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश है आप मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से यही आप सभी से कहते आ रहा हूँ यारो कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉर्न देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख सभी जानकारी बेल टेनिस कांतोर उर फन मांडा टोट फ्रेडाग फन नीग टोट फाइव उर स्मिराग्स अप 073562247 कांतोर का नंबर या तो आप तार करें स्टूडियो में 073262277 पर। तो जो भी रेडियो का काम हो देंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रेक्लाम बनाते रहना फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के बारे में। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तह दिल से धन्यवाद। बेंती नो खेन लिट फन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने औरों को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। बेलेटेनिस कंटोर इरफमान डॉक्टर फ्रेडाग फन नीग टॉट फाइव उर स्मिराग्स अप 073562247 या तो आप सभी जानकारी को प्राप्त कर सके अगर आप स्टूडियो में तार करें 073262277 स्टूडियो का तार का नंबर है। तो जो भी रेडियो का काम हो या तो आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और हम लोगों के बारे में जरूर बातें शाते करते रहना। तो वादा के मुताबिक एक दम बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ और दूसरा अध्याय हमारे सरनामी संगीत का तो वो कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक होते हैं। अगला बयान सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को हॉलैंड देश का एक जबरदस्त गायक खबूर इन पाकिस्तान एनसिंग आउस अल्फन फियार 90 इन डिफर्स पेंस सॉन्ग मैसरो सागर मलिक का ये बिल्कुल नया सॉन्ग रिलीज किया गया है 8 सितंबर को। तू है

क्या बात है, जबरदस्त सॉन्ग आप श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया। पाकिस्तान और हॉलैंड का मशहूर गायक मैस्त्रो सागर मलिक जी का ये बिल्कुल नया सॉन्ग म्यूजिक बाय शिक कास्काविना। अगला बयान के तरफ बढ़ते हैं। एक और जबरदस्त गायक तीन मिल के गाए हैं ये अति सुंदर बयान को। पहला नंबर पे आता है इस जमाने का नौजवान कलाकार जो नाम काफी कमा चुका है, द ग्रेट सुजल उमराव। साथ दे रही है नीलम माता दीन और सत्यम माता दीन, बॉलीवुड स्मैश बाय द थ्री फ्रॉम सुरिनाम। बॉलीवुड स्मैश 2021।

Hey, शाबाश शाबाश ब्यूटीफुल सॉन्ग है सुनाया आप सभी को इस जमाने का जबरदस्त गायक नौजवान कलाकार सुजल उमराव नील माता दीन और सत्यम माता दीन के आवाजों में ये तीज सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। एक अति सुंदर मजेदार सॉन्ग जो महान उस्ताद मिस्टर स्यू गेनानी ने बनाया था, लिखा था, गाया था। और इस बार कॉफ़ी क्या है अति सुंदर बयान को राजेश गेना जी ने मारियो लाइन मैन लीफलिंग फन द गुड ओल्ड टाइम

song, wonderful song, geboren in India. Oude ben gaya, Holland maker, ek jabberjist gayak, hamare Hollandisch ka. Maestro Lucky Singh, Mary Sasso. अगला बयान सुनने को जा रहे आप सभी को एक और जबरदस्त गायक हमारे हॉलैंडेस का आइद यार 70, 80, 90 द वन एंड ओनली जबरदस्त गायक मैस्ट्रो माइकल मिशेल लक्ष्मण जी को आप सुनेंगे. म्यूजिक बाय मैस्ट्रो हफीज खान विथ हिज मस्ताना ऑर्केस्ट्रा. जीवन पथ पर

You were just Gaik from the 70s, 80s, 90s, maestro Michel Lechman, Sangeetkar, Hafiz Khan Wahid Hussein ke saanch par. तो यारो वक्त हो चुका है ना कुछ शेयर्स हो जाए हमारे शेयर्स की चाहने वालों के लिए, तो गौर फरमाए। अर्ज किया है यारो की आज उसने एक बात कह के मुझे रुला दिया, आज उसने एक बात कह के मुझे रुला दिया, जब दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते, जब दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मोहब्बत क्यों की। क्या बात है वाह। रोज वो ख्वाब में आते हैं गले मिलने को, मैं जो सोता हूं तो जाग उठती है, मैं जो सोता हूं तो जाग उठती है किस्मत मेरी। उदासी तुम पे बीतेगी तो तुम भी जान जाओगे, उदासी तुम पे बीतेगी तो तुम भी जान जाओगे। कोई नजर अंदाज करता है, कोई नजर अंदाज करता है तो कितना दर्द होता है ना। हकीकत ना समझ ऐ दोस्त लबों की हंसी को, हकीकत ना समझ ऐ दोस्त लबों की हंसी को, हजारों गम कैद है।

का मन नहीं, बस इतना सुनते जाओ। तफसील बताने का मन नहीं, बस इतना सुनते जाओ। तुम्हारी याद में दिल बेचैन बहुत है आज। कौन करता है वफाओं का तकाजे तुमसे, कौन करता है वफाओं का तकाजे तुमसे। हम तो एक झूठी तसल्ली का तलब गार थे बस।

जाने किस उम्र में जाएगी ये आदत अपनी, जाने किस उम्र में जाएगी ये आदत अपनी, रूठना उससे तो औरों से उलझते रहना। द्वेता कुछ शेयर्स हमारे शेयर्स की चाहने वालों के लिए। आप चुन है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जोर तोर से आप सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक सुन रहे हैं और अगला बयान सुनने को जा रहे हैं दो मशहूर गाने वाले आईडीआर 80-90 श्रीमती इंदिरा राम शरण जी, और साथ दे रहा है उस जमाने का जबरदस्त गायक श्री प्रदीप प्रहलाद सिंह जी, मौसम ये पुकारे।

Wagga Time, ja man. Mausem je pukare, beautiful song from the 80s kame shur ganevali srimati Indra Ramcharan aur Pradeep Palatsing ke awaz mein thi sundar bayan aap shrotaon ne suna aaj ka is haseen program mein. अगला बयान एक और जबरदस्त गायक है, खबूर इन पाकिस्तान और अपगेग्रोइड een beetje ook in Nederland en werd toen een topzanger uit de jaren eind 70, 80, 90 oud in de jaren eind 90 met hem loco छोड़ के अल्लाह को प्यारे हो गए. महान गायक मैस्ट्रो नदीम खान जी के ब्यूटीफुल आवाज में और उन्हीं के याद में ये ब्यूटीफुल सॉन्ग कंपोज बाय यारो का यार जिगरी दोस्त मैस्ट्रो बॉयक साहेब लाल ये लाल रंग.

मैस्ट्रो नदीम खान के ब्यूटीफुल आवाज में, उन्हीं के याद में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं के सेवा में मैंने पेश किया। म्यूजिक अरेंज कंपोज बाय मैस्ट्रो बॉयक शाहपलाओ। अगला बयान सुनाने को जा रहे हैं इट्स मैशअप इस जमाने का जबरदस्त गायक डिग्रेड प्रभात पंचू के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे रवि साहब जी का ये ब्यूटीफुल मैशअप।

कैसे सरनामी संगीत इंडियन पॉप म्यूजिक का जो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, एक आखिरी बयान सुनेंगे। एक और मैशअप है मादिशनाव एंड सेकी मैशअप बाया फ्रॉम द म्यूजिक फार्मेसी शो टाइम 2024।

Ik denk, ja, wat hey, beautiful song from the music formatie Showtime 2024 from Suriname, Seki Seki Meshe. तुम्हारे प्रिय श्रोताओं, ये तकताज का ये सरनामी संगीत दूसरा भाग इंडियन सरनामी पॉप म्यूजिक जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूँ, स्टे ट्यून ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

फ्रॉम हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM चैनल पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स को भी एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। अनतिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स बदंग सोशल लोबी लोबी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइशें, जरूरी खबरें, इश्तिहारे, कमर्शियल्स, इट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, और शायद आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर, या तो ऑर्गामन हो, ऑर्गा वुमन हो, इवेंट ऑर्गेनाइजर, और तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो जरूर उसके बारे में कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना करवाना यार, तो हो सकता है कुछ ना कुछ हो सकता है, चमत्कार भी हो सकता है। ये बात मैं श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। एक ही फायदे सस्ते दाम में हम लोग आपका जो भी कमर्शियल हो, जो भी संदेश हो, आप मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप सभी से ये कहते आ रहे हैं, आ रहा हूँ यार, कि फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और वो पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेलटेनस कंटोर यूर फ मांडा टॉट फ्रेडाग फन नीग यूर स्मॉर्गन टॉट फाइव यूर स्मिडाग्स कंटोर 070-365-2247 और स्टूडियो 070-362-2077। जो भी रेडियो का काम हो, देंगन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। बैंक चुनो खेल फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी हम लोगों का मेंबर बने, औरों को भी बनाए। सभी जानकारी आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी नौ सीम तक पर आप तार करें। इसी तरह हम लोगों के बारे में रेकलाम बनाते रहना यार, ढंढोड़ा पीते रहना, चर्चा करते रहना, इट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। एक ही दम बढ़ते हैं कुछ नए नए सुपर हिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। आप सुनेंगे एक ऐसा बयान चुनकर रख चुका हूं, और ऐसा गायक है, महान संगीतकार है, म्यूजिक डायरेक्टर है, सिंगर है, कंपोजर है, राइटर है, ऑलस इन एन मल्टी टैलेंटेड कलाकार हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का, जिसपे हम लोगों को और सभी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का जो मेंबर से सभी पे नाज है। ये मल्टी टैलेंटेड कलाकार के ऊपर रिमेंबर द नेम यारो, विशाल मिश्रा रूबरू, ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम। कंपोज एंड अरेंज बाय द मैन हिमसेल्फ, और लिखा है महान लेखक द ग्रेट मनोज मुंतशिर। मिलके सुनते हैं रूबरू।

अति सुंदर बयान सुनाया आप सभी को द ग्रेट विशाल मिश्रा, साथ दे रही थी असीस कौर, कंपोज एंड रिटन बाय द मैन हिमसेल्फ। अगला बयान एक ब्यूटीफुल सॉन्ग अरेंजमेंट कंपोज बाय मैस्ट्रो ए आर रहमान फ्रॉम द मूवी लकीर, और गाना का बोल है पैगाम। मिल के सुनते हैं महान गायक द ग्रेट शान और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाजों में।

जी हमारे प्रिय प्रिय साथियों, अति सुंदर बयान श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान की साक्ष पर आप श्रोताओं ने सुना। महान गायक शान साथ दे रही थी कविता कृष्ण मूर्ति जी। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है कुछ नए नए सुपर हिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। मैंने चुन कर रखा है आप श्रोताओं के नाम पे आज का इस हसीन कार्यक्रम में हाँ मुझे प्यार हुआ है अल्लाह मियाँ क्या बात है ब्यूटीफुल सॉन्ग आप सुनेंगे नदीम श्रवण की साक्ष पर अलका याग्निक अभिजीत मिलके सुनाते हैं फ्रॉम द मूवी जुदाई।

beautiful song चढ़ा रंग इश्क का from the movie बड़े मियां छोटे मियां म्यूजिक अरेंज अंत कंपोज बाय मैस्ट्रो विशाल शर्मा। प्रोग्राम आगे को बढ़ाते यारो कुछ आखिरी शेर्स हो जाए ना आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में तो जरा गौर फरमाए। तकदीर को छोड़ो हमने तो तुमको ही खुदा माना था। तकदीर को छोड़ो यारो हमने तो तुमको ही खुदा माना था। तुम अगर चाहते तो मोहब्बत अधूरी नहीं रहती। ऐसी बेवफाई कि उसने मोहब्बत भी बदनाम हो गई। ऐसी बेवफाई की उसने कि मोहब्बत बदनाम हो गई। अपनी मोहब्बत की इतनी कीमत फसूल की उसने कि हमारी अर्थी भी लीलाम हो गई। आखिर जिंदगी ने भी आज पूछ लिया मुझसे कहाँ है वो शख्स जो तुझे मुझसे भी अजीज था। बारिश और मोहब्बत दोनों ही बहुत यादगार होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है बारिश में जिस्म भीग जाता है और मोहब्बत में आंखें। आखिरी शेर यारो आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में हमने उसके बाद ना राखी किसी से मोहब्बत की आस। एक तजुर्बा बहुत था जो सब कुछ सिखा गया मुझे। तो ये था कुछ आखिरी शेर। प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ और एक अति सुंदर बयान रख चुका हूँ प्लेयर में आम श्रोताओं के सेवा में। वल्लाह बीबी एक बार फिर फ्रॉम द मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ। अब आप दोनों विशालों का कमाल सुनिए। विशाल दादलानी और विशाल मिश्रा साथ दिया है दीपाक्षी कलीता मिलके अति सुंदर बयान को गाए हैं कंपोज बाय द ग्रेट माएस्ट्रो विशाल मिश्रा। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ

ब्यूटीफुल सॉन्ग वल्लाह बीबी फ्रॉम द मूवी बड़े मियां छोटे मियां कंपोज बाय विशाल मिश्रा और विशाल दादलानी, विशाल मिश्रा दीपाक्षी कलिता के आवाज में, लिखा है इरशाद कमील। मस्त मलंग झूम यारो, एक बार फिर फ्रॉम द मूवी बड़े छोटे मियां, क्या बात है। इरशाद कमील के अल्फाजे, विशाल मिश्रा अरिजीत सिंह निकिता गांधी के आवाजे, कंपोज बाय विशाल मिश्रा।

Wonderful song, wonderful song from the movie Bade Mian Chote Mian. अगला बयान के तरफ बढ़ते हैं हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, जरा दिल थाम के बैठिए। एक जबरदस्त सॉन्ग है जो मेरे ख्याल से जरूर आपके दिल को छू लेगा। महान गायक इस जमाने का, ग्रेट सिंगर कंपोजर मैस्ट्रो अरिजीत सिंह, मिलके सुनते हैं ये अति सुंदर बयान कंपोज बाय राम संपत।

सजनी रे तेरी याद सतावे रे, महान गायक इस जमाने का द ग्रेट अरिजीत सिंह जी। अगला बयान एक जबरदस्त सॉन्ग है, दो महान गाने वालियां हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का, द क्वीन ऑफ मेलोडी इस जमाने का और द रॉक एंड रोल क्वीन ऑफ मेलोडी इस जमाने का, फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, द ग्रेट सुनिधि चौहान एंड श्रेया घोषाल टुगेदर इन वन सॉन्ग छैला। म्यूजिक अरेंज्ड बाय द ब्रदर्स सलीम सुलेमान, भूमि श्रद्धा पंडित के अल्फाजी।

0: श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया दो महान गाने वालियां हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का श्रेया घोषाल और सुनिधि चौहान विद छैरा। तो हमारे साथियों आज का मेरे हिस्से के कार्यक्रम में का आखिरी बयान आप सुनेंगे और वो सुनन को जा रहे हैं आप सभी को फ्रॉम द मूवी भूमि 2024। इस जमाने का द किंग ऑफ मेलोडी द ग्रेट सोनू निगम जी का बिल्कुल नया सॉन्ग है, मिल के सुनते हैं मायावी।
1: चंद्रा ने झुमकी माड़ी कुंडी लुहाया पुता कन्नी गुण पुता कन्नी गुण नक्षत्र तंदु को डाले।

Ja, wat beautiful song hè. आप श्रोताओं ने सुना महान गायक इस जमाने का द किंग ऑफ मेलोडी मास्टर सोनू निगम जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये ब्यूटीफुल सॉन्ग कंपोज बाय संजीत हेच। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं यही तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम जो समाप्त होने को आया। यह उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूं कि जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में यह उम्मीद है कि मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले दिनों में मैं फिर आप सभी से मिलने वाला हूं आवाज के जरिए। तब तक के लिए मुझे आप सभी इजाजत दे, जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। Bye bye, love you all from the bottom of my heart and until program ko follow karte rehna aane wale dinon mein zarur aap mujhse milne wale hain awaaz se।

और जाते जाते हमेशा की तरह तो गुनगुना देता हूँ ना, और देखा जाए आज कोशिश करता हूँ कुछ संगीत के साथ, तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना।

जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज की लई इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है। वालों के सेवा में सादर सप्रेम नमस्ते आदाब राम राम सत श्री अकाल। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है www.faunfm.nl पर, वीफी रेडियो और इंटरनेट रेडियो पर। घड़ी पर देखो तो करीबन 8 का वक्त है, 8 क्लॉक स्लग 8 और आप चुन है फाउन हिंदुस्तानी।

Radio per. जो बीमार है लाचार है तंदुरुस्ती दुआ के प्रार्थना है, जिनके घर में कोई शादी विवाह कोई भी उत्सव हो, फौन हिंदुस्तान रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयाँ पेश है। मुझसे पहले आप कार्यक्रम सुन रहे थे भैया सुरेन भगवान दीन जी का, भैया बीरबल, आप बीरबल के नाम से भी जानते हैं। भैया बीरबल आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है, आपको एक शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है फौन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, और मैं अपनी तरफ से भी, सिर्फ क्योंकि यूसुफ आज तो नहीं, लेकिन अगर यूसुफ भी होता तो उनकी तरफ से आपको एक शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है। करता हूँ एक शुभ रात्रि भैया सुरेन भगवान दिन को। सोनदागदरी में ही है जी हाँ, रविवार 3 तारीख मई है, आप तत्पर है। जो लोग चुन की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। जैसे मैंने कहा भैया यूसुफ आज नहीं है, वो कुछ ना कुछ कर रहा होगा, पता नहीं, अभी बाद में देखेंगे, शायद कौन जाने वो तार करे, अगर कोई काम नहीं कर रहा होगा, व्यस्त नहीं होगा तो शायद तार करेगा। बहरा आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया यूसुफ। गीत गज़ल के कार्यक्रम शुरू कर रहा हूँ यहाँ से, इस उम्मीद के साथ आप भाग लेंगे, आपको अच्छा लगेगा। आप तार कर सकते हैं 9 से 5 तक 3 5 6 तक 2 तक 7 तक या तो 9 से 5 तक 3 2 6 तक 2 तक 7 7 तक। और हमी को तार लेना पड़ेगा क्योंकि भैया यूसुफ नहीं है जैसे मैंने कहा, तो थोड़ी देर आप इंतज़ार कर लें। इंतज़ार के बाद हम आपसे कुछ बातचीत करेंगे। आपके पास कुछ कोई मोप हो यानी लतीफ़ा हो, खसखद हो, कोई अद्रकिंग हो, स्प्रे कोर्ट हो, कुछ ना कुछ अगर जा आपके पास होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर अगले सप्ताह देखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल आप तार कर सकते हैं 9 से 5 तक 3 5 6 तक 2 2 तक 7 4 तक और 9 से 5 तक 3 2 6 तक 2 तक 7 7 तक पर। तो जिस समय आप कोशिश कर रहे होंगे तार ढूंढने के लिए कि तार कहाँ रख दिए, बात कामर में रख दिए हैं या रसोई घर में कुकरों में रख दिए होंगे या स्लाब कामर में रखे होंगे तकिए के नीचे, बहरहाल आप ढूंढिए और तार कर सकते हैं। तो जिस समय आप तार ढूंढ रहे होंगे, चलिए हम आपको सुनाते हैं ये गीत इस तरह से है।

दिल तड़पे तड़पाए रफी साहब, ये आवाज में आपको सुनाया गया। फिल्म है पूनम की रात और ये फिल्म है निकिती फैफ सेसक का, 1965 का फिल्म है, सलील चौधरी के साज पर। और जी बीच बीच में आलाप दे रही थी, उसका नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन ये भूत का फिल्म तो हो सकता है कि भूतनी आवाज़ दे रही थी, तो भूतनी की आवाज़ तो नहीं लिखा है। बहरहाल रफ़ी के नाम तो लिखा है और आवाज़ भी रफ़ी साहब का है। फिल्म पूनम की रात में से हम आपको सुनाए हैं। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, तार का नंबर है 0 7 3 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
कोली जी हैं पेश कर रहे हैं ये गीत, सुनते हैं।

रफ़ी साहब आपको सुनाए हैं फ़ौन हिंदुस्तानी रेडियो के गीत गज़ल के कार्यक्रम में, जबकि आज सोनदरी में ये रविवार 3 मई है। अब आप तत्पर हैं, आप चुने फ़ौन हिंदुस्तानी और रेडियो पर। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, अब वो है, देखते हैं इस तरह से, द मैन विद द गोल्डन वॉइस, द मैन विद द गोल्डन वॉइस, क्या ख्याल है? अच्छा,

0: बेचैन नज़र बेताब जिगर देखते हैं तलत साहब ने आपको सुनाई द मैन विद द गोल्डन वॉइस, तलत साहब फिल्म यास्मीन में से निकाल कर। जहाँ तक मेरा ख्याल है कोई लाइन पर है, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। हेलो
1: हेलो
0: भैया नमस्कार, कैसे समाचार हैं?
1: चले समाचार चले धीरे धीरे, कैसे आपके और सबके समाचार?
0: सबके समाचार चले धीरे धीरे, हमरो चले हैं।
1: मोई खुशबाती सुने के।
0: कैसे तुम्हार समाचार ब्रूर?
1: हमार समाचार चले मोई से।
0: तब मोई बताओ कुछ, सुनाओ कुछ, बताओ कुछ।
1: कुछ पहली एगो।
0: हाँ मोई।
1: और हैगा मेरी उम्मीद, मेरे ख्वाब हो तू, मेरी हर दुआ का जवाब हो तू। ना देखी ऐसी सूरज ना सीरत कभी, यकीन मानो लाजवाब हो तुम।
0: अरे वाह क्या बात है। मोई हेर मोई प्राप्त। और कुछ थोड़ा है
1: ना? खाली एगो पहली
0: ना, तो ठीक है धल्ले रहिए। तो
1: हम मिसाल एगो छोटा कन तो यानी ओ अन क्लब ब्लच वन छोट कोन तो
0: हां हम
1: तम लिखी लावा। खाली एक एक रही तो वहां लिख सके
0: थे ना? नहीं मोई मोई मोई
1: जैसे हम लिखला तो मके अपार धर दीला।
0: भैया मोहम्मद बताओ कौन गाना मांगत रहे सुने आज की रात?
1: फिल्म हैगा फिल्म पिकनिक।
0: वक्त ही हमके मोई से लिख एक परीक्षा। हां तो इसे हम घसीट देवत रहली हम दत यूसुफ रहा। आज ना पिकनिक
1: 1966। और गीत है मौसम लहर गया नशा सा छा गया।
0: मौसम
1: वो मौसम मौसम लहरा गया
0: गया
1: नशा
0: नशा
1: शाह
0: सा छा गया
1: छा गया। और गाय से मोहम्मद रफी वो हैगा वो घरवाल लाला रुक के।
0: ओके फिल्म लाला रुक
1: ना पिकनिक है वहाँ हम फॉर मी घरवाल भी आवे पिकनिक में लाला रुक समझो कि पता नहीं तो लोग मोई देख सके और कंप्यूटर में भोपाल चीज अपना पहला इंटरनेट।
0: अच्छा हम देखा हाँ वो
1: हाँ मोहम्मद रफी और आशा भोसले गाय से
0: रिहल। और कुछ नवा हाल भैया मोहम्मद?
1: कुछ साल आएगा एक घर घरवा बाती तीफी ताकि अपन पेंशन से बाती भी
0: मोई मोई मोई हो चाहे होवे के तो नहीं तीफी या रोई तो कि हमके कोई ना ताके है।
1: सही कर सही कर वैसे ना मांगते तीफी या रोवे के
0: नहीं नहीं नहीं
1: ओके चाहे खुश रहे के तो
0: तिलक। ओके भैया मोहम्मद बहुत बहुत धन्यवाद
1: सुनने वाले के लिए। अच्छा
0: आते थैंक्स
1: प्यार और मोहब्बत के साथ
0: सही कर रही
1: थे
0: या ओके
1: ओके
0: शुभरात्रि दा
1: नमस्कार
0: वालेकुम सलाम भैया नमस्कार। अच्छा ये था भैया मोहम्मद दनहा के रहने वाला। तो जिस समय आप कोशिश कर रहे होंगे तार करने को, दोनों तार खा लिए दरी फाइव सस्तक तुन तुन तक सैफन फेर तक या तो सैफन तक दरी तुम सस्तक तुन तक सैफन सैफन तक। चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं इस तरह आ रहा है।

फिल्म में कली मुस्काई रफ़ी साहब आपको सुनाई, टाइटल सॉन्ग फिल्म से निकाल कर हमने पेश की और उम्मीद है आपको अवश्य अच्छा लगा होगा। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं। जी हाँ, ये भी एक पुरानी गीत है, निकिति एन शस्तक का। जी हाँ, निकिति एन शस्तक 1971 का, सॉरी 61 का, सरदार कोतरा के साज पर। लीजिए हम आपको सुनाते हैं गीता जी।

0: जो न गुरूर यू न रहो दूर दूर करो न गुरूर यू न रहो दूर दूर और न दिल को जलाओ
1: है

हटो हटो जाओ जी जाओ, रफ़ी साहब और गीता जी या मिल के आपको सुनाए हैं। फिल्म खिलाड़ी में से निकाल कर निकली इन सशक 1961 का ये गीत सरदल क्वात्रा के साज पर गीत गज़ल के कार्यक्रम में हमने पेश की। अच्छा जिस समय दोनों तार फ्री हैं आप तार कर सकते हैं, और जिस समय आप तार कर रहे होंगे हम आपको सुनाते हैं ये गीत इस तरह से आ रहा है।

बहुत ज़बरदस्त गीत है यह। जी आप माने या ना माने, लेकिन बहुत ज़बरदस्त गीत है यह। रफ़ी साहब और लता जी की फिल्म बनारसी ठग में से निकाले हैं निकतिन तुई सस्तक इकबाल कुरैशी के साज पर। लेकिन यूँ क्यों कह रहा हूँ, ये और अच्छा होता ये गीत अगर ये सनसना सनसना निकाल देते हैं, तब बहुत अव्वल दर्जे का गीत वैसे है। लेकिन ये सनसना सनसना पता नहीं प्रोड्यूसर डायरेक्टर के मन में क्या आया, ये सनसनाहट उसमें डाल दी। बहरहाल जो मुझे कहना था हमने कह दिया। बहरहाल ये गीत सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। शायद आप भी सोच रहे होंगे शायद गंगा ठीक कर रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है आप कहोगे गंगा तो बहुत गलत कर रहा है क्योंकि सनसना सनसना उसमें सही है। बहरहाल रात्रि का वक्त है, आप भी हैं मैं भी हूँ, और चलिए मैं भैया मोहम्मद दना के रहने वाला भैया मोहम्मद की गीत चला रहा हूँ। दना के रहने वाला जनाब मोहम्मद, शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए और साथ ही साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं के लिए डायरेक्सी के लिए प्रेम पूर्वक प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ वो ये गीत मांग रहा है और हम लोग चला रहे हैं ये गीत भैया मोहम्मद के लिए प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ। चलिए ये गीत पेश है, इस तरह से आ रहा है।

मौसम सा छा गया, गीता राव जी और रफ़ी साहब आपको सुनाए हैं और फिल्म पिकनिक में से निकाले हैं आशा भोसले और रफ़ी साहब। एस महेंद्र के साज पर हमने पेश किए ये शानदार गीत और यह गीत चला दनहा के रहने वाला जनाब मोहम्मद के लिए। जनाब मोहम्मद के लिए शुभकामना के साथ मुबारकबाद देते हुए और उन्होंने ये गीत मांगे सभी सुनने वालों के लिए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का और साथ ही साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं के लिए। सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से भैया मोहम्मद को हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। अभी सभी श्रोताओं की तरफ से भी भैया मोहम्मद को शुभकामना और प्रेम प्यार मोहब्बत भेज रहे हैं। आपने चलवाए बहुत बहुत धन्यवाद भैया मोहम्मद। और इस वक्त मेरे स्टूडियो में इस वक्त हाजिर है भैया मीनू भगवान दीन, बहुत पुराना साथी मित्र भी हैं, मेरा दोस्त मून भगवान दीन का भांजा है। कितने बार कहा आने को लेकिन अच्छा आज तो आ गया। वो बहुत बिजी रहता है और बिजी के अलावा कभी कभी बैतनाथ में भी रहता है, तो वो भी होना चाहिए ना काम के सिलसिले में। भैया मीनू आपका हृदय से स्वागत है। तो चलिए हम अगला गीत पेश कर रहे हैं और वो ये है एवरग्रीन किशोर कुमार। क्या ख्याल है एवरग्रीन किशोर कुमार की आवाज़ में हमको हम आपको ये गीत सुनाएं।

0: तो आप सुने हैं एवरग्रीन किशोर कुमार ने कहा कि प्यार कभी ना ही हारता है जी, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए प्यार कभी नहीं हारता है। चलो देखते हैं लाइन पर कोई है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो खुदनाफंत में फ्रॉम मीला एंड हु इज इट में तुम फ्रॉम मीला या मैं तो सो खुदोर एंड हु इज इट इन सूतर में स्वीट लेक सिटी Is het water nog zoet?
1: Wat zegt u?
0: Is het water nog zoet?
1: Altijd.
0: Ah, wat zoet.
1: Ja, het heeft geregend, maar het weer. Ja. Het was niet koud hoor.
0: Nee, het was gewoon van 17, 16 graden.
1: Jawel.
0: Mooi. En hoe is het met Bayam en Zoertje?
1: Oh, goed hoor, hij maakt het goed, ja. Ah,
0: mooi, oké.
1: Okay. Dus.
0: Mevrouw Mila,
1: ik een liedje aanvragen toch?
0: Sorry?
1: Een liedje. Mijn liedje wil ik doorgeven.
0: Alvast, ja.
1: Ja? Het is van film Neem Sahak.
0: Aha.
1: Dil dil se mila kar dekho.
0: Dil dil se mila kar dekho. Dil dil tweemaal se mila kar dekho. Nazaron mein sama kar dekho. Evergreen ja. Kishore Kumar lied is dat.
1: Ja, het is mooi, een vrolijke liedje. Ja,
0: het is zeker een vrolijke lied. Mevrouw Mila, dankjewel. Heb je ook iets naar mijn handen gehad, oké?
1: Nee, ik heb echt niks opgezocht.
0: Oké, geef niet. Ja. Next time. En hoe is het met de familie, kinderen,
1: ja,
0: allemaal?
1: Ja, ik wens je een mooie avond, meneer Ganga.
0: Ja, oké, dankjewel mevrouw Mila.
1: Alsjeblieft hoor. Okay,
0: dankjewel, dag. Fijne avond en heel veel luisterplezier. Ja, ja, oké, dag. ये थी मीला जी सूत्रमेर के रहने वाली। तो अगला गीत हम पेश करने वाले हैं आपके लिए और वो ये है, क्या ख्याल है, ये गीत भी हैं निकाले फिल्म बाबुल से, पुराना बाबुल, ये अमिताभ बच्चन का बाबुल नहीं है, पुराना बाबुल है, निगेटिव फाइव तक का, 1950 का, और देखते हैं तलत साहब की आवाज़ में, यानी द मैन विद द गोल्डन वॉइस, इस तरह से
2: सहारे के लिए मैं मौजूद।

मिलते ही आंखें एवरग्रीन किशोर कुमार एवरग्रीन जी नहीं तलत साहब द मैन विद गोल्डन वॉइस तलत साहब की आवाज़ और ये द्वैत आपको सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में शमशाद बेगम जी के साथ। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है महेंद्र कपूर जी। क्या ख्याल है हम आपको महेंद्र कपूर जी की ये गीत सुनाते हैं। इस तरह से आ रहा है

0: महेंद्र कपूर की आवाज में आपको सुनाया गया ऑफर फॉन हिंदुस्तानी रेडियो, इंसान किया जो काम किसी और के ना आ सके। चित्रगुप्त के साथ पर हमने पेश की ये शानदार गीत ऑफर फॉन हिंदुस्तानी रेडियो, फिल्म बूट पॉलिश में से निकाल कर, जी हाँ फिल्म बूट पॉलिश में से निकाल कर हमने चलाए हैं। चलिए घड़ी पे देखो तो 5 मिनट बाकी है 9 बजने में। यहाँ से केयर्स पेश करते हैं विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़, और न्यूज़ के बाद मैं भी सुबह फिर वापस आ रहा हूँ। चलो विज्ञापन और न्यूज़ सुनते हैं।
1: Heb ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. VAHON Hindustani Radio.
2: Dit is het VAHON Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: De nieuwe voorzitter van de FNV, Hans Pekman, ziet in de stakingen van rijksambtenaren tegen de nullijn het voorbeeld dat strijd loont. Dat zei hij vanmiddag op het Museumplein in Amsterdam op de Dag van de Arbeid, waar de grootste vakbond van Nederland een protest hield tegen het regeerakkoord. De natuurbrand tussen Weert en Budel laait op sommige plekken weer op. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio komt dat door de wind en omdat de temperatuur stijgt. De vlammen bevinden zich in het gebied waar eerder brand was. We bewaken de randen en verwachten niet dat het vuur zich uitbreidt, meldt de woordvoerder. Vodafone Ziggo heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer mobiele abonnementen verkocht. Het aantal internetklanten nam opnieuw af. De omzet van Vodafone Ziggo in het eerste kwartaal daalde met 1,8% tot €981 miljoen. Ook de winst kwam lager uit. Die daalde met 6,4% tot €412 miljoen. Pensioenfondsen profiteren van de flink gestegen beurskoersen van de afgelopen maand. Volgens onderzoeksbureau Aon is hun financiële positie in april daardoor fors verbeterd, waardoor de kans op pensioenverhogingen weer is toegenomen. En dan het weer. Ook vanavond helder. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen eerst nog zonnig, maar later in de middag en avond kans op enkele regen- en onweersbuien. Temperatuur tussen de 17 en 25 graden.
2: En tot zover het nieuws op VAHON Hindustani Radio.
4: Har kaam ke liye, हर एडवर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 070-365-2247. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. VAHON Hindustani Radio.
0: आप चुन फाओ हिंदुस्तानी रेडियो पर www.fahonfm.nl पर। जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। गीत गजल के कार्यक्रम यहाँ से जारी, यहाँ से अभी हम जारी करते हैं और आगे मैं रहूँगा करीब 10 बजे तक। और आप तार कर सकते हैं, तार का नंबर तो आपको पता है, लेकिन अगर पता नहीं, भूल गए होंगे, ढूंढ रहे होंगे, तो 0 3 5 7 2 7 4 या तो 0 3 5 2 7 2 7 7। तो आप तार कीजिए और मैं तार लूँगा, क्योंकि भैया यूसेफ तो नहीं है, लेकिन मेरे सामने भैया मीनू भगवान दीन बैठा है, लेकिन वो कोई और काम इस वक्त कर रहा है, ऐसे टेक्निशमन और नहीं ऐसे इतर दस एक कन्हम हिलमानित बलस्त बहरहाल। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और आप सुनिए इस तरह से ये शानदार गीत।

लता जी और माइत मुकेश आपको सुनाए निगे 3/5 का गीत पूनम की रात। ये भी फिल्म पूनम की रात के गीत है और हमने पेश की है सलील चौधरी के साज पर। चलिए अगला गीत चलाने वाले हैं और वो है सूत्रमेर। चलो सूत्रमेर चलते हैं और सूत्रमेर के रहने वाली मीला जी, सूत्रमेर के रहने वाली मीला जी के लिए ये शानदार गीत चल रहा है। शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए और भैया मंसूर को भी शुभ रात्रि पेश करते हुए सूत्रमेर के रहने वाली मीला जी के लिए है ये शानदार गीत फिल्म मेम साहब के 1956 निगेतन सेशन 5 का ये गीत है। इस तरह से आ रहा है मीला जी के लिए है।

एवरग्रीन किशोर कुमार फिल्म मेम साहब में से निकाले निकटी सस फैफ्त और 1956 का ये गीत मदन मोहन के साज पर। जी हाँ, मदन मोहन के साज पर ये गीत आपको सुनाया गया किशोर कुमार की आवाज़ में, और पहले आपको सुनाया गया लता जी की आवाज़ में। और ये गीत चला सूत्रमेर के रहने वाली मीला, सूत्रमेर के रहने वाली मीला जी के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए, और मीला जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फौन हिंदुस्तानी रेडियो के गीत की और गज़ल के कार्यक्रम बढ़ाते हुए

मेरे हसरतों की दुनिया रफ़ी साहब की आवाज़ में आपको सुनाया गया। और ये गीत है, फिल्म का नाम है गाल गुलाबी नैन शराबी, रफ़ी साहब की आवाज़, निकितिन त्रिय शिविंद्र का ये फिल्म, लेकिन साथ ही साथ ये द्वैत था और गाने वाली थी कृष्ण कल्ले। ये नाम शायद आपने सुने होंगे बहुत बार, कृष्ण कल्ले, ये भी एक संग्रह है, पता नहीं ये भी है या नहीं, लेकिन इसके बारे में शायद आप इस वक्त यूट्यूब पर होंगे तो देख लेना। बहरहाल कृष्ण कल्ले नाम है और इन्होंने बहुत सारे गीत गाए हैं, बच्चों के गीत भी इन्होंने गाए हैं। कृष्ण कल्ले के साथ फिल्म गाल गुलाबी नैन शराबी में से ये गीत हमने निकाले हैं, निगंदी द्रियन सैफ तक का। चलिए अगला नंबर पेश कर रहे हैं, इस तरह से आ रहा है।

0: आंखों से दिल में समा, आ जा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ, आ जा रे आ जरा आ जा रे आ जरा। शंकर जय किशन के साथ पर रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म लव इन टोक्यो में से निकाले हैं और आपको सुनाया गया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जबकि 5 मिनट बाकी है 9:30 बजने में। जी हाँ, 5:45। चलिए देखते हैं लाइन पर कोई है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो खुदनाफंद मुफर भैया कैसे रहे मुफर भैया? चले धीरे धीरे ऊपर वाला के दया से, तुलक के कृपा से और आशीर्वाद से चले
1: और अपन मेहनत से।
0: हाँ वो तो करल जाए तो मालिक पठाई से बोले कुछ मेहनत भी कर, बोले मुफ्त के रोटी ना खा।
1: नहीं डॉक्टर सर, क्या ही मेहनत करे बिगड़ मेहनत से, जना चलो कोई मेहनत ना करे तो एक स्टाप आगे भी ना जा खोए।
0: वही बात,
1: इतना मेहनत से एक स्टाप आगे भी जा है इस समय।
0: या
1: मैं तो औदर दोम
0: ना छका करल जाए।
1: या तो दतरा बोले
0: ऑल इन द गेम,
1: दत्रा बोली लोप लोप लोप मैं गोरुआ जना मांगे लोप करे तब कैसे जबरदस्ती घींचक होई।
0: वही तो।
1: हाँ बोली हमारे गोरुआ थोड़ो कुत्ता है मुके तितई बहन के घींची बेन मेंस। हाँ दत्रा हमें रोज बोली लोप लोप लोप, हम बोली डॉक्टर होमू तक लोप असन बेन नित वेल तो हम कैसे को तितई बहन के दत्रा
0: बोले बेन वेल नित हमरे के को लोप बांध किन ले।
1: हां
0: बोले सिक बोले ब्रीफिया लिख दे हम जाई ले ले आई
1: लिखल हो खुद को
0: नात कम खुद कम खुद गोयत एक तो बोले है मारत खात वेल आलते खुद
1: या एक हो पर दत खुद
0: एक लुइस्टर
1: या
0: ऑफ वे लुइस्टरन
1: वे लुइस्टर
0: या
1: समाज ने पत्नी को ये बता दिया के पति परमेश्वर होता है। समाज ने पत्नी को ये तो बता दिया के पति परमेश्वर होते हैं, मगर पति को ये पता नहीं कि परमेश्वर कैसा होता है।
0: That's a point.
1: खराबस है।
0: हाँ।
1: दस लोग कम तो हो रहे हैं।
0: नहीं।
1: या तो दस तो सो।
0: That's a point.
1: या।
0: हाँ।
1: इसे कहेगा, दन हत्तिक नख अंदर। न पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है। पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है, मगर एक बात हम आपको बताए, अच्छी शिक्षा एक
0: शिक्षा
1: अच्छी शिक्षा वही है जो अनपढ़ों के समान करे जाने।
0: नहीं so
1: so,
0: वही मेहनत करिए तो आ जाइए। मैं शिक्षा बड़ा साइफर बोल रहा
1: है। यस
0: तो इस प्रैक्टिस दैट
1: एंड इट हैव हियर नॉट एंड क्लाइन।
0: हां गो अहेड।
1: झूठे लोग से कभी नहीं जीत पाओगे। झूठे लोग से कभी नहीं जीत पाओगे, यहां सच अकेला चलता है। यहां सच अकेला चलता है और झूठ बारात लेकर निकलता है।
0: नहीं दैट इज इन द बात
1: दैट इज सो एक्सेंट ले कौन दी देंगे एंड एंड वेट te luisteren en te horen hoe het allemaal gaat.
0: Nee, klopt. Dat is goed. Toen chillai, jhoot bolie, sab koi suni.
1: Ja.
0: Maar chillai, sach bolie, koi na suni.
1: Ja, so is het. So is het.
0: भैया बताओ कौन गाना तू मांगे सुने आज बच्ची
1: कहा
0: एक तो फरवा पर है
1: बस सलमा आगा
0: हाँ
1: किशोर कुमार
0: सलमा आगा किशोर कुमार एन तीतल फनत लित पागवे देखे लोपो लोपो बोल ले तो और कागज चल गए लोपो करके
1: या मतलब कागज इस एव ओये
0: एक दिन तक नेट इस हद का सेफ फन तू
1: फंसल में आ गा
0: मेरा
1: फन्ना स्पेल करें
0: इस फन तू मेरा
1: दखिया या सो इट
0: या अच्छा हम पाया अब सलमा का किशोर कुमार
1: इस होत
0: हम पाया मैं Is goed dan, Bea?
1: Ja, is goed. Fijne avond, bedankt.
0: Ja, Bea, dankjewel.
1: Tot de volgende keer.
0: Heel veel luisterplezier en ja. Tot de volgende keer.
1: Is goed.
0: Abom. Dag, Bea.
1: Ja, dag.
0: Ja. Je hebt Bea Gujarat, die daarna keer rennen wali. En Bea, die gaat, abhi hem abhi chala denge.

आँखों आँखों तुमने क्या कहा। और ये गीत आपने सुने हो परफॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो गीत गज़ल के कार्यक्रम में हमने पेश की। ये गीत गाया गया है राजन के जरिए। आपको शायद याद होगा करीबन 35-40 साल पहले कनाडा में कुछ लोगों ने गीत निकाले थे द राजन्स, शायद याद होगा। तो उसी में से हमने निकाल कर ये गीत चलाए हैं द राजन में से, और गाने वाला था राजन। आपको ये भी शायद मालूम होगा कि एक गाने वाली थी राजन और फिरदौस, बस वही दोनों मिलके ये एलपी निकाले हैं, और उसी एलपी में से ये गीत हमने निकाल के आप कुछ सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत चलाने वाले हैं, और वो हैं दनहा, दनहा के रहने वाली बेया गजराज जी। बेया गजराज जी, आपकी मांगी हुई गीत हम पा चुके हैं, जिस गीत का जिक्र आपने की है हमने प्लेयर में रख चुके हैं। तो दनहा के रहने वाली बेया गजराज जी, आपके लिए यह गीत चल रहा है शुभकामना के साथ। एक शुभ रात्रि पेश करते हुए और धन्यवाद पेश करते हुए बेया गजराज जी के लिए।

एवरग्रीन किशोर कुमार और सलमा आगा मिलके सुनाएं फिल्म ऊंचे लोग निकली फैफ तख तक का ये गीत है। और ये चला दना के रहने वाली बेया जी, बेया गजराज जी के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए बेया जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम सलमा गाना के बात हुई तो हमने भी रख दिए हैं, देखते हैं इस तरह से है। जी नहीं, सलमा आगा नहीं, रूना लैला, रूना लैला की आवाज़ में चले हम आपको सुनाते हैं।

करुणा लैला जी आपको सुनाए भरी विराम पाओगे जब हम नहीं रहेंगे। ये शानदार गीत चला ओ फरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, जाते जाते मैं आपको ये सुना दूं।

अगर तो आबरू अपनी बचा लेती तो अच्छा था। माई तू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म लड़की पसंद है निकति ए ने सेवंत का यह गीत 1971 का यह गीत हम आपको सुनाए हैं। अगर घड़ी पर देखो तो धीरे धीरे समय हो रहा है कि हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं जो लोगों ने तार की है और वो है दनहा के रहने वाला जनाब मोहम्मद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, कार्यक्रम में आपने भाग ली। और देखते हैं सूत्रमेर के रहने वाली मीला जी और जनाब मंसूर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और दनहा के रहने वाली बिया गजराज जी, आप सबको फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से, सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा पेश किया जा रहा है।

यहाँ तक था ये गीत गजल के कार्यक्रम जो मैंने पेश की, जो जो लोगों ने तार किए आप सबको भी एक बार फिर धन्यवाद दिया जा रहा है। भैया मोहम्मद बेया गजराज जी और मीला जी, आप सबको धन्यवाद कार्यक्रम में भाग लिए। और मेरे बाद आप सुनेंगे विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़ और न्यूज़ के बाद बाकी का कार्यक्रम हमारे सहयोगी आपको सुनाएंगे। मैं आपसे मिल रहा हूँ आज कौन दिन इतवार आने वाला दोंदरदा बृहस्पतिवार को, आने वाला बृहस्पतिवार को हम आपसे मिल रहे हैं। आप सबको जहाँ भी होंगे बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग कोशिश किए होंगे तार करने को नहीं कर पाए उन लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, आप सबको नमस्कार, खुदा हाफिज़। मैं था आपका सेवक गंगा और मेरे सामने बैठा है भैया मीनू भगवान दीन, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तो तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

यहां से पहला शेर हम आप लोग को और सुनाए हैं, और ये है फॉर ऑल द लवर्स, कहते हैं तहजीब में भी उसकी क्या खूब अदा थी, तहजीब में भी उसको क्या खूब अदा थी, नमक भी अदा किया तो जख्मों पे छिड़क कर। वारे दोस्तों की तहजीब

में भी उसको क्या खूब अदा थी, नमक भी अदा किया तो जख्मों पे छिड़क करे। तो हम चलते हैं, देखे दिखने में भोले हैं, दिखने में बहुत भोले हैं, लेकिन चाल जो है वो अग्नि के समान है। तो ये बात है कि देखने में भोला है और बॉम्बई का बाबू 96.0 नेगेटिव सेस्ट काम ओवी है और क्लेश क्लेश क्लेश यानी कि क्लासिक सॉन्ग है। और इफ बॉम्बई का बाबू की ओर हम चलते हैं।

पर दिखा मैंने भोला है। और ये आशा भोसले का ये गाना है बम्बई का बाबू, और ये फिल्म का नाम है। तो जितने लोग दूर है तो दूर के मुसाफिर के लोग के लिए हम कुछ गीत और शेर आज हम आप लोग को सुनाए हैं कि कहते हैं फरियाद करके, फरियाद कर रही है ये तरस रही हुई है निगाहें, फरियाद कर रही है ये तरसी हुई निगाहें। जो लोग दूर रहते हैं तो फरियाद तो बहुत करते हैं, तो कहते हैं फरियाद कर रही है ये तरसी हुई निगाहें, और देखे हुए किसी को ज़बाना गुजर गया है, देखे हुए किसी को ज़माना गुजर गया है, और जब किसी को देखे हुए ज़माना गुजर गया है तो उसके लिए हम एक स्पेशल सॉन्ग चलाते हैं कि जब अगर दिल के अरमान जो है वो जब टूट जाते हैं तो आंसू बनकर आंखें में झलक जाती है।

और दिल के अरमां आंसू में, और वो रह गए और कहते हैं ये कह कह के हम दिल को समझा रहे हैं, हम दिल को हम कह कह के ये हम कह कह के हम दिल को समझा रहे हैं, हम कह कह के दिल को समझा रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं हमारे दोस्तों। इंतजार में लोग बहुत बहुत बहुत बहुत यादें करते रहते हैं हमारे यारो, ये सब बात होता है जब किसी के इंतजार करते हैं, वो तारों की तरह रात भर चमकते रहे, वो तारों की तरह रात भर चमकते रहे, हम चांद से तन्हा सफर करते रहे, वो तो बीते वक्त उन्हें आने ना था, हम यूं ही सारी रात भर घबराते और बतलाते रहे। और जो कभी कभी लोग कमरे में रहते हैं तो कमरे की जब ताला कर देते और चाबी गुम हो जाते हैं, तो जब चाबी गुम हो जाते हैं तो लोग तुरंत क्या सोचते हैं,

0: कभी ऐसा हो तो,
1: सोचो कभी ऐसा हूँ तो भला क्या होगा,
0: कभी ऐसा हो तो क्या हो हम तुम।
1: तो जब चाला चाभी लाश हो जाते तो लोग कांपते लगते हैं।

0: कौन।
1: और हम तुम जब अपने कमरे में बन होगा तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा, अभी आप लोग हमें जरूर बताना कि क्या सुन सकते हैं। दोस्तों नॉर्मल्स हम सब एथर पे भी सुनाई देते हैं, यानी अपनी गाड़ी में सुनाई देते हैं, ऑटो में जब बैठेगी नीदरलैंड के बातचीत होते हैं न सूरीनाम या अन्य देशों में, तो यहाँ अपने ऑटो में सुनाई देते 15.7 AM फ्रिक्वेंसी पे आप लोग 24 घंटा हमारा प्रोग्राम को श्रवण कर सकते हैं। और हम सुनते हैं और देहाबी प्लस रेडियो पर पूरा हॉलैंड देश में सुनाई देते हैं, नहीं आप लोग www.fahun.nl हमारा यानी कि इंटरनेट पे पूरा विश्व में पूरा दुनिया में हमारा प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। हमारे यारो तो हम भी चलते हैं और एक शायर की ओर, और शायरी अब क्या है, उल्फत के मारो से ना पूछो अलाम इंतजार का, उल्फत के मारो से ना पूछो अलाम इंतजार का, और 85 है जिंदगी और ख्याल है बहार का, 50 से है जिंदगी और ख्याल है बहार का, हमारे यारो एक लम्हे के लिए मेरी नजरों की सामने आ जा, एक लम्हे के लिए मेरी नजरों की सामने आ जा, एक मोहब्बत से मैंने खुद को आईने में नहीं देखा है। दोस्तों मुद्दत हो गया है, एक मुद्दत से मैंने खुद को आईने में नहीं देखा है। तो हम जा रहे नरगिस राज कपूर के ओर और मूवी के नाम है चोरी, और चोरी में क्या होता है, और दादा नहीं पद्मश्री मन्ना दी और नैतिक लता जी मंगेशकर का ये लवली सॉन्ग आओ हम सब सुना जाए।

मधुर आजा सनम मधुर चाननी में हम, और जब तुम मिलेगे तो बहारों में फूल बरसेगा। और उसके बाद हम और आगे को अपना प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। मुझको अब तुझसे मोहब्बत नहीं रही, मुझको अब तुझसे मोहब्बत नहीं रही, आई जिंदगी तेरी भी मुझे जरूरत नहीं रही। बुझ गई अब उसके इंतजार के वो दिए, कहीं आस पास भी उसकी आहत ना रही। जब किसी के दिल किसी से टूट जाते हैं हमारे यारो, तो ये सब बात निकल आते हैं। तो कोशिश करना कि अपना मोहब्बत जो है, अपनी मोहब्बत के मजबूत पकड़ के रखना, जबरदस्त पकड़ के रखना, और इतना जबरदस्त पकड़ के रखना कि उसमें दरार ना आवे। ये है कि मुझको अब तुझसे अगर जब अपने प्यार को अपने दिल को मजबूत जबरदस्त नहीं पकड़ के रखेंगे, तो ये सब शायरी आपके लिए है कि मुझको अब तुझसे मोहब्बत नहीं रही, ऐ जिंदगी तेरी भी मुझे जरूरत नहीं रही। बुझ गई अब उसके इंतजार के वो दिए, कहीं आस पास भी उसकी आदत ना रही। तो उसको भूल जाना बहुत मुश्किल की बात है। और मैथी मुकेश, नाइटी गिल, लता मंगेशकर या जोंग आपको बताएंगी कि किसी को भूल जाना कितनी दुख देता है। इस फिल्म में यानी कि जीनत अमन, मनोज कुमार ने काम किए हैं, और मूवी का नाम है रोटी कपड़ा और मकान की ओर हम चलते हैं।

और मैना भी आंभ को, मैं भी आंभ को कभी नहीं भूलूंगा। जब आंभ हमें भूले नहीं देगी तो भला जोनी आंभ को कैसे भूलेगा। हमारी यारो की कहते हैं मुझको अब तुझसे मोहब्बत नहीं रही, अभी हमने कह दिए थे लेकिन अब कहते हैं कि ये इंतजार ना ठहरा कोई बड़ा तेरी, ये इंतजार ना ठहरा कोई बड़ा तेरी, किसी की जान गई आप की अदा तेरी। जी दोस्तों कि कब आ रहे है हो, कब आ रहे हो मुलाकात के लिए, हमने चांद रुका है, हमने चांद रोका है एक हमने चांद रोका है एक रात के लिए, इसलिए कि पहला पहला प्यार में क्या होता है।

हम दोनों दो प्रेमी और दुनिया छोड़ चले रोमांटिक सॉन्ग है, राजेश खन्ना का फिल्म है, दादा किशोर कुमार जी और नाइटिंगेल लता जी का ये गाया हुआ ये सॉन्ग है हमारे यारो। और ये गीत है, फिल्म के नाम है ताज नेगती सेशन फाइव टू किया, दादा हेमंत कुमार और दादा हेमंत कुमार का ये गाया हुआ सॉन्ग है, आओ सुना जाए।

और गोरी बुलाए तेरा सावरिया, मनाए तेरा सावरिया, और ये बात है मान भी जा। तो ये फिल्म के नाम है बेताम, सोनी देओल अमृता सिंह का और नैति के लता जी का गाया हुआ ये सॉन्ग है दोस्तों। आओ मिल के सुना जाए फनत यार नीखती होंड तेंद्री इन तख्त का ये गीत है।

और जब हम जमा होगे जाने कहाँ होगे। और हम और आगे को चलते हैं, और उसके बाद हम चलते हैं भैया कांति कुमार के ओर। जोकर तो आओ मिलकर सुना जाए।

हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07536 2347। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 07536 2.

समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ प्रोग्राम लेकर स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया।

सुनने वालों, मैं आप सबको स्वप्न विज्ञान में से कुछ वृत्तांत सुना रही हूँ, यानी सपने, कि जो लोगों ने सपने देखे और उनको सपने आए उनका क्या महत्व था। पिता द्वारा पुत्रों का कत्ल। मैनचेस्टर शहर में एक महिला ने स्वप्न में देखा कि उसका पति उसके दो बच्चों को चेस्टर सिटी के भयानक खंडहर में जान से मार रहा है। वह चिल्लाकर नींद से जाग गई और पुलिस को साथ लेकर खंडहर ढूंढ निकाला। तलाश के बाद वहां से बच्चों की हड्डियां प्राप्त होने पर पति को जेल हो गई।

अब मैं एक और वृत्तांत आपके लिए रखती हूँ, मृतक पुत्र के जलने की चेतावनी। एक दिन रात्रि में सिंह मान फ्राइड के एक मित्र के बेटे का देहांत हो गया। सुबह अंतिम संस्कार हेतु रखे शव के चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थी और पहरेदार को वहां छोड़कर पिता दूसरे कमरे में सोने के लिए चले गए, जिसने एक स्वप्न में देखा कि उसका मरा हुआ पुत्र उसके पास खड़ा हुआ कह रहा है, क्या मुझे ऐसे ही जलने दोगे? पिता ने जागकर बाहर आकर देखा तो एक मोमबत्ती गिरने से शव का कान जलने लगा था। थोड़ा विलंब होता तो शव के साथ वह मकान भी जल जाता।

सुनने वालों, अब मैं एक और आपको सपने के बारे में बताती हूँ जो टीपू सुल्तान को आया। टीपू सुल्तान मुगल बादशाह हुए हैं, एक सुल्तान हुए हैं बहुत बड़े, टीपू सुल्तान तथा कांच की खान। टीपू सुल्तान ने रात में देखा कि एक बूढ़ा कांच का एक पत्थर लेकर उसके पास आया और बोला, सेलन के पास जो पहाड़ है वहाँ कांच की खान है, यह कांच मैं वहीं से लाया हूँ। इस तरह सुनते ही उसकी नींद खुल गई और वहाँ कांच की खान मिल गई।

सुनने वालों, एक डॉक्टर फिशर हुए हैं, वो कहते हैं कि एक स्थान पर प्रेत आत्मा का होना, जब एक स्त्री एक विशेष स्थान पर सोती थी तो उसे एहसास होता था कि उस पर कोई झपटा रहा है। तलाश करने पर पता चला कि यह स्त्री जिस स्थान पर सोती थी उस स्थान पर एक मनुष्य ने एक नवयुवना का गला घोंटकर खून किया था। स्थान विशेष में मानवीय विद्युत कंपन लंबे समय तक रहते हैं। शमशान की भयानकता एवं देव मंदिर की पवित्रता उसकी साक्षी होती है।

सुनने वालों, अब मैं आपको सुनाती हूँ भगवान महावीर पर 14 स्वप्नों का प्रभाव। भगवान महावीर बहुत बड़े भगवान हुए हैं, उनको 14 सपने आए। भगवान महावीर के जन्म के पहले रानी त्रिशाला ने 14 स्वप्न देखे थे। पहले में एरावत हाथी, दूसरे में सफ़ेद बैल, तीसरे में शेर, चौथे में लक्ष्मी जी, पांचवें में फूलों की माला, छठे में पूरा चांद, सातवें में सूर्य दर्शन, आठवें में पानी से भरा कलश, नौवें में नील सरोवर, दसवें में बहता सागर, ग्यारहवें में सिंहासन, बारहवें में देवव्रत, तेरहवें में रतन राशि, चौदहवें में धुआं मुक्त अग्नि। भगवान महावीर का जीवन इन 14 स्वप्नों के अनुकूल, स्वप्न के हर प्रतीक के अनुसार इस प्रकार था। हाथी धैर्य मर्यादा, एक बड़प्पन का प्रतीक, महान धर्मात्मा, अनंत शक्तियों का स्वामी, मोक्ष प्राप्त करने वाला, अनासक्त ज्ञानी, सुख शांति का उपदेशक, महान गुणवान, शांत गंभीर, त्रिकलाज्ञ एवं देवता। महावीर जी, भगवान महावीर बहुत अच्छे गुणवानी, संतोषी और एक अच्छे भगवान हुए हैं।

ये है फाहून हिंदुस्तानी रेडियो, आप सब सुन रहे हैं फाहून हिंदुस्तानी रेडियो। सुनने वालों, पिछले बार मैंने आप सबको फड़कने के बारे में बताया था कि अंग फड़कते हैं तो उन सब का क्या मतलब है, जैसे सिर का फड़कना, नेत्रों का फड़कना आदि आदि। तो आज हम चलिए कंधों का फड़कना कि जब कंधे फड़कते हैं तो उसमें से क्या क्या लाभ होता है या हानि होती है। कंधों का फड़कना, जब दायां कंधा फड़कता है तो बहुत शुभ, शीघ्र ही धन, वैभव और सम्मान और बिछड़े भाई से मिलन होता है। और जब बायां कंधा फड़कता है तो रक्त या वात संबंधी रोग होते हैं। पीठ का फड़कना, जब दाईं तरफ पीठ फड़कती है तो राज सम्मान मिलता है, सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। और जब बाईं तरफ पीठ फड़कती है तो अशुभ है, मुकदमे में लड़ाई में हार होती है। जब ऊपरी भाग का कंधा फड़कता है तो धन की प्राप्ति होती है। अब निचला कंधा फड़कता है तो बहुत से अनुयायी काम होते हैं।

घुटनों का फड़कना। सुनने वालों, हमारे घुटने जो हैं वो भी कभी भी फड़कने लग जाते हैं। जब दायां घुटना फड़कता है तो स्वर्ण प्राप्ति होती है, जब दाएं का निचला भाग फड़कता है तो शत्रु का सामना करना पड़ता है, और बाएं का निचला भाग फड़कता है तो कार्य पूर्ण होते हैं। सुनने वालों,

गर्दन का फड़कना। सुनने वालों, हमारी जो गर्दन है जिसे आप लोग नेक कहते हैं, वो भी कभी कभी फड़कती है। तो गर्दन के फड़कने से विदेश यात्रा उपरांत धन कमाकर कुशलतापूर्वक लौट आता है। कान का फड़कना। सुनने वालों, हम सब के कान भी कभी कभी फड़कते हैं, तो उसका भी कोई ना कोई मतलब होता है। जब हम लोगों का दायां कान फड़कता है तो हम लोगों को शुभ समाचार मिलते हैं और इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जब हम लोगों का बायां कान फड़कता है तो प्रियजन से मिलन मेल होता है। जब हमारे कान का पिछला भाग फड़कता है तो मित्र शत्रुवाद व्यवहार करते हैं।

बोहों का फड़कना, सुनने वाला बोहें कहते हैं वैन ब्रो को, वो भी हमारी कभी भी फड़कती हैं लेकिन हम लोग जान नहीं पाते कि वो कब फड़कती हैं। जब हम लोगों की दाई वैन ब्रो फड़कती है तो हमें इज्जत शोहरत मिलती है, जब बाई फड़कती है तो मित्र मिलन, अपने मित्रों से मिलाप होता है। गाल का फड़कना, जब गाल भी फड़कते हैं सुनने वालों, जब हमारा दायां गाल फड़कता है तो विलंब से स्वास्थ्य लाभ की स्वास्थ्य में लाभ हमें देरी से मिलता है, और जब बायां गाल फड़कता है तो काम में विघ्न बाधा तथा चिंताजनक समाचार, कन्या का जन्म या कन्या से शुभ समाचार मिलते हैं। अब जो दोनों समान फड़कते हैं तो अतुल धन की प्राप्ति होती है, तो हम लोगों को ढेर सारा धन प्राप्त होता है सुनने वालों।

ये है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सब सुन रहे हैं स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि नाक का फड़कना, सुनने वालों जब हम लोगों का नाक फड़कता है तो हमें क्या क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, लेकिन हम लोग जान नहीं पाते कि हम लोगों का नाक कब फड़कता है। व्यवसाय की वृद्धि होती है, किसी से झगड़ा होता है, आने वाले संकट रोग की सूचना मिलती है, अनेक प्रकार से सुख मिलते हैं।

सुनने वालों, अपने शरीर के सभी अंग फड़कते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि वो कब फड़कते हैं। अब मैं आपको सुनाती हूँ मुंह का फड़कना। हम लोग के मुंह भी फड़कते हैं सुनने वालों। समाचार मिलता है, सुखों की प्राप्ति होती है, सम्मान की प्राप्ति होती है। होंठ का फड़कना, जब हम लोगों के होंठ फड़कते हैं तब हमें सुख समाचार मिलता है, शत्रुओं से समझौता होता है, हितेशी का आगमन होता है कि जो हमारा कोई अपना जानने पहचानने वाला है वो हमारे घर पर आते हैं।

सुनने वालों, अब मैं आपको सुनाती हूँ कि भोजन करते समय कौन कौन से शगुन होते हैं और उसमें से कौन से अच्छे होते हैं, कौन से बुरे होते हैं। यदि भोजन करते समय सामने ही बिल्ली आ जाए तो शुभ नहीं होता, कुत्ते का रोना सुनाई दे तो अधिक अशुभ होता है। जब हम भोजन कर रहे हैं और कुत्ता रोता है तो वो शुभ नहीं होता सुनने वालों, अशुभ होता है। ग्रह क्लेश उपस्थित हो जाए, अन्न संकट है, रुदान का शब्द सुनाई दे, जब कोई रोता है तो स्वास्थ्य की हानि होती है सुनने वालों। उबकाई आने लगे, जब हमें खाना खाते खाते हम उबासी लेते हैं तो हमें अधिक नहीं खाना चाहिए, तो उसका मतलब है पेट भर गया हमारा। कुत्ता भौंकने लगे, अनाज की चोरी होती है, जब कुत्ता भौंकने लग जाता है तो अनाज चोरी होने का डर रहता है। काली चिड़िया शरीर पर बैठ जाए, सामान्य जब काली चिड़िया कभी शरीर पर बैठ जाए तो वो ना हानि है ना लाभ है सुनने वालों। पकती रोटी अधिक जल जाए, अन्न नष्ट हो, जब हमारी रोटी बनाते बनाते ज़्यादा जल जाती है तो हमारे अन्न का नाश होता है सुनने वालों।

सुनने वालों, जब हम लोग घर पर भोजन करते हैं तो क्या हमें जूते पहनकर भोजन करना चाहिए कि जूता खोलकर भोजन करना चाहिए कि जूता उतार के भोजन करना चाहिए? अब मैं थोड़ा सा वो आपको बताती हूँ सुनने वालों। जब व्यक्ति भोजन करता है तो अपने शरीर में एक विशेष ऊष्मा को संचित करता है। भोजन करते समय जो कैलोरी या ऊष्मा मुंह के द्वारा शरीर में जाती है तो उसमें एक विशेष विद्युत का निर्माण होता है। यदि इस विद्युत का पृथ्वी से संबंध हो जाता है तो उसे पूरा परिपथ मिल जाता है और वह जो भी भोजन करता है उससे पूरी शक्ति प्राप्त होती है। जब हम नंगे पांव बैठते हैं तो हमारे पैर पृथ्वी से स्पर्श करते हैं, फलस्वरूप हमें आर्थिक मिलती रहती है। परंतु जूते पहने होने पर चमड़ा विद्युत अवरोधक बन जाता है और भोजन करते समय जो ऊर्जा या विद्युत पैदा होती है उसे अर्थ ना मिलने के कारण उसका प्रवाह विपरीत हो जाता है और जो भोजन किया जाता है वह विषैला बनकर शरीर को हानि पहुंचाता है। इस प्रकार जूते पहनकर भोजन करने वालों को गैस, कब्ज आदि रोगों की शिकायत बनी रहती है।

सुनने वालों, ये स्वप्न विज्ञान है। मैं आप सबको सुना रही हूँ सपनों की दुनिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब हम रात को सोने जाते हैं तो जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं या सुनाई देती हैं उन सब का क्या मतलब है, कि वो शुभ हैं कि अशुभ हैं। सुनने वालों, जब हम रात्रि में सोने जाते हैं तो जब हम लोगों को शंख ध्वनि सुनाई दे, बैल की हुंकार सुनाई दे, वीणा का शब्द सुनाई दे, तो उन सब का शुभ मतलब है कि वो सब अच्छी चीज़ें हैं। जब हम अपने बेड पर बैठते हैं या चारपाई पर बैठते हैं, अगर चूहा दिखाई दे तो वो भी शुभ है। सुनने वालों, घर में प्रसन्नता का वातावरण हो तो वो भी लाभकारी है। जब सब घर के सदस्य हंसते हैं और हमें लाभ मिलता है, हम लोगों को अच्छी नींद आती है। सुनने वालों, अगर पत्नी की आँख में आंसू हो तो वो अपशकुन है। गीदड़ बोले या कुत्ता भौंके तो चोरी का भय रहता है। रात को जब हम सोते हैं सुनने वालों, अगर कुत्ता भौंके तो उससे हमें चोरी का भय रहता है। बिल्ली या कुत्ता लेटा हो तो अच्छा नहीं होता। घर की पालतू गाय सहसा रो पड़े तो वो अपशकुन होता है। अगर घर में हमारे गाय हैं तो अगर वो रो पड़े तो वो अपशकुन कहलाता है। पलंग पर छिपकली पाँव की तरफ भाग जाए तो वो शुभ है। कोई पान या सुपारी लाकर दे तो वो भी शुभ है। सुनने वालों, कोई सामने छींक दे, अच्छा शकुन नहीं है।

यदि आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रख लेते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच सकते हैं। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा।

0: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्व कार्यशु सर्वदा। रूबरू मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा है, अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसीलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए ये जरूर कहना चाहूँगा कि आज एक धमाकेदार और विषय लेकर हम सब फिर उपस्थित हो गए स्टूडियो में। पाचे पनेल के और हमारे भाई राजेंद्र जी बैठे हुए हैं हमारे साथ बगल में, और बबली जी और शांता जी भी दूसरा माइक्रोफोन पे बैठ चुके हैं। तो पहले शांता जी अपना एंट्री देते हैं, फिर बबली जी और राजेंद्र जी, फिर कार्यक्रम को धीरे धीरे और आगे बढ़ाएंगे।
1: एकदम बिल्कुल सही है। कह रहा है कि ये अपनी हार में भी जीत छुपा है, अपनी हार में भी जीत छुपा है। इसी शब्दों के साथ सुनने वालों, हम आपको भी दिल से अभिनंदन कर रही हूँ और आपको हार्दिक से स्वागत कर रही हूँ आज के इस ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में। सेविका शांता के स्वीकार करिए प्यार भरी राम राम प्रणाम।
2: पीड़ा एक संकेत है कि तुम जीवित हो, समस्या एक संकेत है कि तुम मजबूत हो, प्रार्थना एक संकेत है कि तुम अकेले नहीं हो, वो ईश्वर है जो सब अच्छा करेंगे। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार।
3: बहुत ही सुंदर संदेश बबली जी ने दिया है कि वही एक ईश्वर है जो सब कुछ ठीक करेगा। बात बाकी तो हर व्यक्ति का अपनी तरफ से सब ठीक ही करते हैं। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। बड़ी दूर दूर से इंतजार करते हैं कि कब प्रोग्राम आएगा, और वो प्रोग्राम आ ही गया है। तो आज बहुत ही धमाकेदार प्रोग्राम होने वाला है, लेकिन जो लोग उदास बैठे हैं, क्यों ना उनके लिए एक तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन का ही को करें, उनके लिए जरूर चलाना चाहिए।
0: जरूर राजेंद्र जी, क्योंकि हमारे मामा जी भी शायद उदास बैठे होंगे ना।
3: हाँ, वो भी वहाँ उदास
0: बैठे, सफर करके आए, दूर से सफर करके आए हैं और शायद उदास बैठे होंगे। तो उनके लिए भी खास करके और सभी सुनने वालों के लिए तेरा राम जी करे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डरे। और ये मैं जरूर अभी से आपसे कह देता हूँ कि आज का जो विषय है बड़े धमाकेदार विषय है। आप अभी विषय की ओर हम सब छलांग लगाने वाले हैं।

0: ही करेंगे, बेड़ा पार उदासी मन काय को करें। जब किसी का मन उदास होता है तो भगवान राम यानी राम जी ही उसका बेड़ा पार करते हैं। और लोग बेड़ा पार करने की सभी सोचते हैं, लेकिन कर तो एक ही सकता है। तो हम बढ़ते हैं आज का जो विषय है उसकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं उस विषय में।
1: जरूर राजेंद्र जी, विषय का बोल जो आज का वो तो अभी इर्स्त हलफ में नहीं करेंगे, हम लोग दूसरा हलफ में विषय के और अभी छलांग लगाएंगे। पर इर्स्त हलफ में जो हमारे कार्यक्रम 2 घंटा का होता है ना शांता जी, तो पहले आज विषय में हमारे विशेषज्ञों ने ये रख दिया है कि कैसे बहुत साल पहले लोग और वाहन चालक बोलते हैं ना,
0: हाँ
1: वाहन चालक,
0: वाहन चालक,
1: तो कैसे पहले कैसे हु साइंस ऑफ द इदेइख कोमन अंतखा फ्लीख। तो शांता जी आपको पता कब कब और कैसे ये इस बात पे लोग सोचे कि हम इंसान उड़ सकते हैं,
2: इंसान उड़ सकते
1: के माध्यम से, वाहन के माध्यम से।
0: हाँ जो जहाज रहा,
1: जहाज
2: और जहाज, हाँ
3: इंसान ने जब पक्षियों को उड़ते देखा तो उन्होंने सोचा कि अगर पक्षी उड़ सकते वैसे हम भी कुछ ऐसा वाहन बनाएं कि जिससे हम भी उसमें बैठ के जा सकें।
0: नहीं, इस विषय में थोड़ा सा एक गहराई हो रहा है।
3: हाँ जी मास्टर जी,
0: कि जब रामायण की कथा सुनी कि वहाँ से पुष्पक विमान में, पुष्पक विमान था उनके पास और वो लंका से सब लोग जितने भी बानर रीच और भगवान राम और लक्ष्मण जी हनुमान जी सहित सब लोग उसमें बैठ के अयोध्या आए थे, और फिर भी उसमें वो ऐसा विमान था कि उसमें जितने लोग भी बैठे बैठे फिर भी एक सीट खाली बचता था,
1: ऐसा
0: ऐसा उसकी विशेषता ये थी। तो जब ये कथा सुनी बड़े बड़े विद्वान लोगों ने और जिन्होंने ये हवाई जहाज बनाया, तब उन्होंने यहीं से आइडिया लिया कि अगर उड़ने वाली कुछ चीज होती होगी तो ऐसा हम लोग बना सकते हैं। तो वहीं से उस जहाज का जो है
1: जो शुरू हुआ
0: और आज पूरी दुनिया यहाँ से वहाँ जा रही।
1: पर मास्टर जी वो बात हो जाता कि वो तो कितने, क्योंकि ये आप बोल कह रहे हो
0: जी
1: सतयुग का बात है ना,
0: हाँ
1: तो ये सतयुग उसके बाद में
0: त्रेता का बात
1: तो त्रेता के बाद द्वापर आए अब कलयुग में, और अभी उड़ने के तो बस यानी कि जो नई खंती नॉन
2: द्री
1: नॉन द्री में जो दो भाई थे ना
2: जी,
1: दो भाई राइट जो थे, तो उन्होंने पहला बार एक ऐसा चीज बनाए थे जिसे बड़ा गर्व के साथ उन्होंने ये बात को रखे कि हमने आज एक जहाज बनाया जिसे उड़ पाए, और वो सिर्फ मेरे ख्याल से एकदम 12 सेकंड जो आसमान में थे और सैफनंद अर्थक मेतर जो उड़ पाए थे। तो पर उसी के माध्यम से उसी से और शुरू किए और आज अब देखिए कितने बड़े बड़े जहाज हो गए ना।
2: तो वो बात ये भी आए के पहुंचे हैं जैसे अभी राजेंद्र जी ने कहा ना कि ये तो अभी तो 100 साल है ना, और जो राम के कथा के वो विमान जो अभी राजेंद्र ने वो तो सालों सदियों पुराना के बाद है,
1: सदियों पुराना
2: के बाद है। और ये मैं भी सुनी हूँ कि जब जो बिब्लियोथेक वहाँ पे भारत के जो था
3: लाइब्रेरी,
2: हाँ नालंदा बिब्लियोथेक है,
3: हाँ
0: नालंदा,
2: तो उस बिब्लियोथेक वो मुगल के युग में जब वो बिब्लियोथेक को जलाने से पहले तो वहाँ से अब आज़ाद नहीं हुआ था भारत, ये हमारे अंग्रेजों और यूरोप वाला, तो वहाँ से ऐसे कई कई पुस्तकें जो हमारे ऋषि मुनि जो वहाँ बना कर रखे थे, तो वहाँ से ऐसे कई कई पुस्तकें वहाँ से सब लेकर आई है यूरोप में और ऐसे अन्य देशों में
1: और आगे तरक्की भइल है यानी कि टेक्नोलॉजी के,
2: तो वो सब तो संस्कृत में लिखा था, तो अब संस्कृत पढ़ने के लिए तो हमारे गोरेजात भी गए सीखने के लिए संस्कृत पढ़ने, तो संस्कृत पढ़ के तो वो जो किताब लिखा था तो उसको अनुलेख किया है, तो इसी प्रकार से सब ऐसे तो अब ये हमारे यूरोप वाला और ये गोरे लोग कहते कि उन्होंने निकाले।
1: पर राजेंद्र जी देखो शांता जी ने कितना जानकारी हम लोग के दे दिया ना, क्योंकि जो आज हमारे संत मुनियों के लिखे हुए से हम लोग के टेक्नोलॉजी कितना आगे, दुनिया की तरक्की कितना फैल।
2: हाँ, ये जो शब्द मैं कह रही हूँ, ये शब्द जो है हमारे भारत के एक विद्वान जो खोजबीन कर, और यहाँ पे भी एक हमारे हॉलैंड के एक रेडियो से ये प्रचार की है, तो हमने सुनी, तो वही बात मैं यहाँ दोहरा रही हूँ।
1: बहुत अच्छा रूप से। पर शांता जी, ऐसा है कि जब हमें, जब ये बुश, क्या कहते हैं राजेंद्र जी, पुष्प विमान,
0: पुष्पक विमान,
1: पुष्पक विमान, ये एक विमान था कुबेर जी का ना।
0: हाँ।
1: और जब इस बात को, जब रामानंद सागर ने जो रामायण बनाए थे ना
0: जी,
1: शासन ताकत में, तो जब हमने पहला बार इसको दृश्य देखे कि कैसे बनाया गया ना, तो अब जब इस बात का चर्चा हो रहा है, तो इसमें वो करैक्टर का ख्याल आ रहा कि रावण का करैक्टर जो था उसमें, तो क्यों ना पहले हम, शांता जी, पहले कुछ कार्यक्रम में धुन डालते हैं कि रावण जो जा करके और सीता का हरण किए थे, और फिर वहां हम लोग देखे पहला बार कि पुष्पक विमान किस प्रकार से, जो अपने संत मुनियों के और जा करके ज्ञान से वो ऐसे आफ बेल्द किए थे ना
2: जी। हाँ।
1: तो राजेंद्र जी, क्यों ना एक सुंदर सा पहले हम लोग दृश्य डालते हैं उस,
0: और जो दृश्य है उसके बोल बहुत ही अच्छे हैं, और यही रात अंतिम, यही रात भारी, रावण पूजा करता है, और इसी बहुत ही अच्छा जो भजन करता है भक्त, रावण शंकर जी का भक्त रहता है, और उसकी वो आखिरी रात होती है, तो उसी आखिरी रात के विषय में रावण की एक झलक इस प्रकार से देखने को मिली।

0: यही रात अंतिम यही रात भारी।
1: तो जब रावण की रात अंतिम हो गई है तो भारी तो होगी ही। तो बात करते हैं, अपने विषय की तरफ बढ़ते हैं। पंचवटी यानी पंचवटी का स्थान जो है, जहां प्रभु श्री राम, माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण वनवास के समय रह रहे थे, वो जगह पंचवटी नाम से, हमारे मामा जी तो वहां गए भी हैं पंचवटी में। यही सूपनखा आई थी, उस प्लेस जो जगह रहा वहां सूपनखा आई थी, सूपनखा, और भाई और लक्ष्मण से विवाह करने के लिए उपद्रव करने लगे कि हमसे शादी कर लो। लक्ष्मण जी से पहले बोला, फिर वो बोले कि हम तो यति हैं, हम तो नहीं कर सकते। फिर राम जी के पास गए, राम जी बोले हमारे पास, हमारे तो ऑलरेडी शादी शुदा है। इस प्रकार से
2: राजेंद्र जी बात यह हो जाता है वहां। अब ये बात को तो हम लोग बहुत देखे ना रामायण में।
1: हाँ, हाँ।
2: जा करके जो सूपनखा नाम ना,
1: हाँ, सूपनखा
2: रावण का बहन ऐसा जा करके और लक्ष्मण जी से ये मांग किया कि मुझसे शादी कर लो।
1: हाँ, पहले राम जी से किया, फिर लक्ष्मण जी से किया, फिर राम जी से, फिर लक्ष्मण जी से, बहुत प्रकार से, अलग अलग प्रकार से बोला था। फिर लक्ष्मण जी ने उनकी नाक कान ही काट ली।
2: शांता जी, आपको पता था?
3: हमने पढ़ी और देखी भी है।
2: पढ़ी और देखी भी।
1: हाँ, रामायण में देखी होगी। रामायण तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा
2: प्रचलन
1: वाला जो।
2: और ये बात को सभी जानते हैं कि सूपनखा जब पहले जब रामलीला हुआ था ना, तो रामलीला होते थे हमारे और गाँव में, और जिस दिन सूपनखा के नाक कटाए वाला दिन होता था तो वो दिन और ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाता था। और खास करके कुछ लोग जो राक्षस बन के, और ऐसे हम लोग बच्चे थे।
1: हाँ।
2: तो मैं थोड़ा से वो गदा से मारते थे ना हम लोग के।
1: हाँ।
2: ताकि
3: हाँ
2: साइट में रहे। और उस दिन बड़ा हंगामा होते थे जिस दिन पंचवटी में जा करके। पर ये बात तो अब आज ये, क्योंकि हम तो थोड़ा डरते थे, वो राक्षस लोग इस प्रकार से बनाया जाता था, भयानक रूप दे देते थे, क्योंकि वो भी एक ऐसा है कि सूरीनाम में कुछ कलाकारों थे जिन्होंने, जिनमें वो कला था कि किस प्रकार से जो मास्क आदि बनाने का ना, कैसे बनाते थे ये इस बात को पता नहीं, पर हर बार कहीं कोई जानवर की तरह नहीं, कोई अलग अलग रूप दे देते थे। ये बात चलो 150 साल पहले लेकर के हमारे भारतवासी जाकर सूरीनाम में चलते रहे, पर आज तलक भी देखो ना कि कितना उस समय पे, जबकि सामान कितना कम थे, और वो लोग ऐसा ऐसा और
3: अपना कल्पना,
2: हाँ,
3: और
2: अपने
3: बना देते थे।
2: सही बात।
3: फिर भी रावण के ये खूबियां
2: है राजेंद्र जी।
1: जी,
4: रावण के ये खूबियां, हम यहाँ बात करते हैं सूपनखा के बारे में ना, तो वो अपने बहन के सम्मान के लिए भगवान से लड़ चुका।
2: बहन जो यानी कि भाई के, अपने बहन के लिए।
4: हाँ, बहन के सम्मान के लिए वो भगवान से भी लड़ चुका, लड़ पड़ा।
2: तो शांता जी, अभी गत दिनों भी देखो हम लोग का भी त्योहारों में त्योहार भी आए, और एक त्योहार भी होता है भैया दूज,
4: दिवाली के
2: कुछ तीन दिन बाद में होते हैं, और वो भी एक भाई और बहन का प्रेम प्यार का बारे में होते हैं ना।
4: जी,
2: उस दिन भाई लोगन बहन के घर जाते हैं, तिलक लगाते हैं बहन, और उन्हें के लिए कुछ गिफ्ट लेकर जाते हैं ना। पर यहाँ ये वृतांत इसमें थोड़ा से जोड़ दिया गया कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक बहन के लिए भगवान से उन्होंने
4: लड़ने के भी
2: तैयारी हो गई।
4: हाँ।
2: तो दोस्तों ये सोचने वाला बात हो जाता है। राजेंद्र जी, क्यों ना हम आगे बढ़ते हैं ये वृतांत के लेकर।
1: हाँ, वृतांत को आगे बढ़ाते हुए फिर लक्ष्मण जी विवश होकर सूपनखा की नाक यानी नासिका काट दी, और आज उसी स्थान को हम नासिक महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं,
2: जो भारत में वो जो स्थान नासिक।
1: हाँ, वहीं पे नासिका काटी गई थी सूपनखा की।
4: तो ये आज पता चला।
1: हाँ, पुष्पक विमान में जाते हुए सीता जी ने देखा कि एक पर्वत के शिखर पर बैठे हुए कुछ बानर ऊपर की ओर कौतूहल से देख रहे हैं, तो सीता जी ने अपने वस्त्र की कोर फाड़ कर उसमें अपने कंगन बांध कर नीचे फेंके ताकि राम को उन्हें ढूंढने में सहायता प्राप्त हो सके। जिस स्थान पर सीता जी ने उन बानरों को ये आभूषण फेंके थे वो स्थान ऋष्यमुख पर्वत जो आज के हम्पी यानी कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद वृद्ध गिद्धराज जटायु ने,
2: राजेंद्र जी, ऋषि मुख पर्वत वहीं पर यानी कि वानरों के लिए सीता जी ने और जाकर के विमान से और अपना आभूषण
1: आभूषण फेंके थे ऋषि मुख पर्वत पे। वो स्थान कर्नाटक में है, उसको बोलते हैं हम्पी,
2: हम्पी स्थान का नाम
1: जी। इसके बाद वृद्ध गिद्धराज जटायु ने रोती हुई सीता जी को देखा कि कोई राक्षस किसी स्त्री को ब्लाक यानी अपने विमान में लेके जा रहा है। फिर जटायु जी ने सीता जी को छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध किया। रावण ने तलवार से जटायु के पंख काट दिए।
2: ओ हो हो, पंख वहीं कटा गया,
1: वहीं कटा गया। इसके बाद जब राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढते हुए पहुंचे तो उन्होंने दूर से ही जटायु का सबसे पहले संबोधन किया, हे पक्षी कहते हुए किया, और उस जगह का नाम दक्षिण भाषा में ले पक्षी यानी आंध्र प्रदेश में स्थित है।
2: स्थान का नाम आंध्र प्रदेश,
1: आंध्र प्रदेश तो वो स्टेट है लेकिन स्थान का नाम है ले पक्षी।
2: ले पक्षी,
1: हाँ।
2: तो हमारे सुनने वालों भी कितने लोग हैं जो वहां पर जरूर और जा करके दर्शन किए होंगे ना।
1: हाँ, अब समझ में आया कि पंचवटी, हम्पी, ले पक्षी, श्रीलंका, सीधा रास्ता। सब लोग समझ ही गए होंगे कि पंचवटी से हम्पी, हम्पी से ले पक्षी और इसके बाद श्रीलंका, सीधा रास्ता आता है। सबसे छोटा रास्ता हवाई रास्ता, यानी हमारे जमानों में विमान के सबूत, और जब लोग गूगल ऐप पर देखते हैं तो तब पता चलता है कि रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया सत्य इतिहास है, जिसमें समस्त वैज्ञानिक प्रमाण आज भी उपलब्ध है और लोगों को ये प्रमाण देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोग तो यहाँ से जाते हैं, अभी हमारे मामा जी भी गए थे वहाँ पे, और जहाँ पे भगवान राम रहे, और उसके बाद कई जगहों गए, और बहुत सारे लोग मैंने सुना है लोग बताते हैं कि हम श्रीलंका गए, वहाँ ऐसा हुआ। तो जो हमारे भारत के लोग पहले सूरीनाम गए, सूरीनाम से नीदरलैंड्स में आए, और उनकी जो वो रहते तो यहाँ हैं लेकिन उनका जो ब्लड रिलेशन है वो भारत ही है, और छः छः महीने में या साल भर में एक बार लोग वहाँ ज़रूर जाते हैं। तो इस प्रकार का जाना भी चाहिए, और लोग अपने अपने कार्यक्रम में छुट्टी फकांसी लेके इन लोग इन तरफ जाते हैं और इनका आनंद भी लेना चाहिए। यहाँ जाने से बड़ा सुकून मिलता है लोगों को और लगता है कि हाँ ये वो जगह है, तो जो लोग जाना चाहेंगे तो जा भी सकते हैं इन जगहों पर।
2: तो राजेंद्र जी, ये बात हो जाता है कि ना कि सिर्फ हमारे भारतीय लोग इंडिया को जाते हैं, ना दुनिया के हर एक कोना से, और यहाँ तक इराक, ईरान का लोग भी, और सभी देशों से। एक ऐसा देश है भारत जहाँ पर लोग कोई प्रकार से रुकता नहीं, उधर जाने का एक बार ये चले जाते हैं तो बार बार उसके खींचते रहते हैं। पर ऐसा भी होता है कि कितने लोग गए हैं यहाँ से एक बार और जो नहीं पसंद आया तो उसके बाद में फिर दोबारा नहीं जाता, ऐसा भी होता है ना शांता जी?
4: ऐसा भी है, ऐसे कई व्यक्ति भी गए हैं और जिसको पसंद नहीं आई वो दोबारा नहीं जाना चाहते हैं।
1: हाँ, क्योंकि हर व्यक्ति जो है एक जैसा ही नहीं होता है, अलग प्रकार के व्यक्ति हैं, अलग सोच है, अलग विचार है। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, जरूरी नहीं कि एक ही चीज सबको अच्छी लगे। तो जिस प्रकार का जो व्यक्ति है, जिसको जो अच्छा लगता है, पूर्ण रूप से व्यक्ति स्वतंत्र होता है। कोई गोवा जाता है तो कोई राम जन्मभूमि जाता है, भारत का ही एक व्यक्ति। तो जिसको जहाँ अच्छा लगता है वो जाता है, और उस प्रकार का जैसी जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्त देखी तीन तैसी, अपनी भावना के अनुसार व्यक्ति जैसी रखता भावना वैसे उसका हो जाता है।
4: जी जी।
2: पर राजेंद्र जी, जैसे हमारे खोजी सेना, जैसे आप कहते हैं ना, हमारे खोजी सेना ने हम लोग के लिए यहाँ पर और खोज करके रख दिया है ना, पंचवटी से और जा करके श्रीलंका।
1: हाँ,
2: तो ऐसा एक चित्र बनाइए, एक चित्र मेरे ख्याल से नासा का चित्र है ना, तो ऐसे एकदम सीधे सीधे वो अपना विमान से वहां पर पहुंचे श्रीलंका,
1: सीधा
2: एकदम सीधा।
5: लेकिन ये भी है कहाँ नासिक, कहाँ कर्नाटक और कहाँ श्रीलंका, एकदम नीचे।
2: तो यही बात हो जाता मध्य चित्र के अनुसार देखा जाए कि देखो एक कार्यक्रम हम लोग बनाए थे ना राम सेतु,
5: हाँ जी,
2: तो उसमें देख बताया गया कि कितना लंबा चौड़ा है वो सागर को पार करना था ना
5: जी।
2: और यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि इतना सो अक्यूरेट कि उस समय पे और जा कर के विमान जो पुष्प विमान है और जा करके यहाँ से और निकल करके एकदम श्री लंका तलक किस प्रकार से पहुंचे, तो ये एक सोचने वाला बात हो जाता कि अभी कितना चीज है जो अभी तलक लोग खोज में है।
4: वाकई में तो ठीक कहा संजय जी कि लोग अभी खोज में वेतन स्काप इस न्यू आनत सुकतर वेल दी आल बफेस्ट सेन हे फिल बफेस्ट सेन आलस इस बफेस्ट मार ओम दैट मैन हैड नीट वेल एक्सेप्टेर खान से सेल्फ अप ऑन द शुक।
2: अब जैसे नासा ने संदेश रखे थे कि सूर्य में और जाकर के कुछ छेद और उसके अंतर्गत में मंत्र द्वारा मैंने सुना है कि वो तो कितने मंत्र जो हमारे होते तो कितने पुराण
4: जी,
2: तो वो तो कब के संदेश दे चुका है, ये अब आए हैं, अब इसका ज्ञान हो रहा है कि कितना वद अफस्तान द अर्थ एंड सोन इसे इस प्रकार के, और अब संदेशों धीरे धीरे और अक्यूरेट भी और बढ़िया भी, क्योंकि अब आजकल मार्स जुपिटर और यानी कि ग्रहों पे हमारे वैज्ञानिक लोग पहुंच चुके हैं ना,
4: हाँ।
2: और फिर भी कितने चीज़ें जो आगे से हमारे संदेश में रखा गया और जब अब बफेस्तक हो रहा है, तो राजेंद्र जी क्यों ना हम एक और सुंदर सा
1: शिव तांडव जो है रावण का, रावण द्वारा रचित है, और जब रावण की रावण एक बार अपनी मस्ती में ही शिव कैलाश पर्वत को उठा लिया और फिर पार्वती जी ने बोला कि ये ठीक नहीं है, ज़्यादा उपद्रव, थोड़ा जरा मजा चखाओ रावण को, तो शंकर जी ने उसमें थोड़ा वजन और रखा और रावण के हाथ वहीं फंस गए। जब रावण के हाथ नीचे फंस गए पर्वत के नीचे, तो फिर रावण चिल्लाया शिव जी की, तो वही बोले कि जटाट हुई गलत जला प्रभाव पाओ स्थलीय अपनी बहुत जटा जूट एकदम शंकर जी की स्तुति करके, फिर शंकर जी प्रसन्न हुए इस स्तुति से और रावण के हाथ छोड़ दिए।
4: राजेंद्र जी क्यों ये रावण महाराज जो है क्यों गाय के वो शिव के पर्वत में हिलाए, क्यों के?
1: क्योंकि जब व्यक्ति पे अपनी ताकत का अभिमान हो जाता है तो वो चाहता है कि उसको दिखाया जाए, प्रत्यक्ष किया जाए, तो वही वो दिखाना चाह रहा था और उसकी दिखाई से ही वो हो गया।
4: हाँ, वो अपना दाखेंगे वो कितना उतना क्रखती रहा ना, उतना हाँ, उतना शक्ति रहा, ताकि हाँ, सब जगह अपन शक्ति प्रमाण कर चुका था, दाखेंगे अपना रह गया रहा, तब इनक तो के बचल रहा कि जहाँ शिव जी के निवास है ओके जाके हिलाए, तो देखो ना उसका ताकत और दाखेंगे। ऐसे भी एक एक सीख भी है ना राजेंद्र जी कि जीवन में ऐसे ऐसे शांत नहीं बैठना चाहिए। मैं नहीं कहती कि कुछ बुराई करो, पर शांत नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ करना
1: नहीं,
4: चाहिए
1: बुराई क्यों करो जब अच्छा ही करने के लिए है।
4: ना ना, मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये तो रावण के जो बुराई कर रहा था ना उसका, मैं ये इस बात पे कहती हूँ कि जीवन में बैठना नहीं चाहिए,
1: हाँ,
4: कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ आगे बढ़ना चाहिए अपना के उद्धार करने के लिए,
2: क्योंकि जीवन में तरक्की होना ही चाहिए।
4: हाँ, देख रावण ने उसका शिव जी के वहाँ पर्वत हिला दे और उसको नाम हो गए, आज तक उसका लोग गाते, उसका तांडव भी हो गए
2: तो उसका तांडव भी हो गया। और ये बात हो जाता राजेंद्र जी की प्यार और विश्वास दो ऐसा पंछी है, इसमें अगर एक उड़ जाता तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है, तो क्यों ना हम पहले वो शिव तांडव के बढ़ते हैं और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी संदेश बाकी है ना,
1: बहुत बाकी।
2: हो तो चला देते हैं पहले
1: की ओर बढ़ेंगे, लेकिन क्यों ना शिव तांडव पहले चला दिया
2: जाए,
1: क्योंकि लोग भी तो चाहे ना कि शिव तांडव क्या है, इंतजार कर रहे होंगे।

0: तो राजेंद्र जी, ये सुंदर संदेश जो आपने रख रहे हैं हम सबके लिए, और ख़ास करके जो रावण का और संदेश है, उसमें कुछ और आपको रखना है?
1: क्यों ना हम थोड़ा सा बात करते हैं ऋषभ पर्वत की और रावण के बारे में। हाँ बबली जी, आप बताएंगे।
2: हाँ जी जरूर। बस रावण ने सीता जी का अपहरण पंचवटी नासिक महाराष्ट्र से किया और पुष्पक विमान द्वारा हम्पी कर्नाटक, ले पक्षी आंध्र प्रदेश होते हुए श्रीलंका पहुंचा। आश्चर्य होता है जब हम आधुनिक तकनीक में देखते हैं कि नासिक, हम्पी, ले पक्षी और श्रीलंका बिल्कुल एक सीधी लाइन में है। अर्थात यह पंचवटी से श्रीलंका जाने का सबसे छोटा रास्ता है।
1: हाँ, तो यही रास्ते में जब लोग जाएंगे, ऊपर से देखेंगे जहाज से, तो एकदम सीधा दिखेगा। और उस समय जहाज तो नहीं रहा, लेकिन पुष्पक विमान तो रहा। तो उस पुष्पक विमान के अनुसार लोग चलते थे। लोग कहाँ से चलते थे, लेकिन केवल उस समय तो रावण ही चलता था, और बाद में भगवान राम ने वो पुष्पक विमान को श्रीलंका से अपने भारत में लेके आए। और वो पुष्पक विमान रावण का भी नहीं था, वो कुबेर का था। कुबेर से उन्होंने छीन लिया था, और फिर वो हमारे जहाँ पे अभी हमारे मामा जी गए थे, उस जगह पे उतरा।
0: और जहाँ पर तुलसीदास जी ने और घिस घिस करके, और
1: चित्रकूट धाम में,
0: चित्रकूट धाम,
1: हाँ, और अयोध्या में वो पुष्पक विमान उतरा था।
3: तो पुष्पक विमान रावण ले लिया था कुबेर।
1: हाँ, कुबेर से रावण ले लिया था। फिर रावण से जब रावण मारा गया, युद्ध में हार गया, मर गया,
3: हाँ।
1: इसके बाद भगवान राम ने सारी सेना बिठा के उसी पुष्पक विमान में अयोध्या की तरफ आ गए थे।
3: तो एक्चुअली में जब हम देखे, जैसे कथा हमने सुने हैं और फिल्म जो देखे हैं, तो रावण ब्राह्मण बहुत महान था, बड़ा था,
1: हाँ।
3: और उसके पास ये श्रीलंका जो है, कैसे कहते हैं, लंका जो है, ये खौद महल, वो उनका भी नहीं था।
2: सोने का लंका
3: वो उनका भी नहीं था, राजेंद्र जी।
1: हाँ नहीं, वो तो भगवान शंकर ने अपने लिए,
3: पार्वती
1: ने शंकर जी की आग्रह किया था कि ये कुछ ऐसा जगह होना चाहिए
3: जी,
1: कि हम लोग जब देखो हिमालय में बैठे रहते, कोई अपना महल नहीं, कुछ रहने का स्थान नहीं। शंकर जी ने बोला कि हमारे लिए ये सब चीज नहीं है, हम लोग तो एकदम तपस्या वाले लोग हैं, और तपस्या वाले लोगों के लिए घर नहीं होता है, उनके लिए तो पर्वत और गुफाएं ही होती है।
3: हाँ।
1: तो पार्वती जी नहीं मानी, उन्होंने बोला नहीं नहीं ये तो बनाना ही है। तो उन्होंने फिर जो देवताओं के मिस्त्री थे उनको बुलाया, विश्वकर्मा जी को, और उन्होंने ऐसे नजर फिराई, और नजर फिराते ही बन गया सोने की लंका। और समुद्र के बीच में पानी में उन्होंने बोला कि ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहाँ कोई न जाए, केवल अलग सी जगह समुद्र में बीच में बना दी। और जब रावण वहाँ पे इस प्रकार से लंका बनाई, और फिर उसके उद्घाटन के लिए बुलाया पंडित जी को, तो पंडित जी ने सोचा कि, उन्होंने बोला कि मांगो क्या मांगते हो,
3: शिव जी का।
1: पार्वती जी ने बोला कि मांगो क्या मांगते हैं, तो उन्होंने बोला कि रहने दो, क्या मांगना है होने दो। नहीं, उन्होंने नहीं नहीं अब तो ये तो उद्घाटन, उन्होंने बोला देना ही है, अगर मैंने जो मांगा तो दे दोगे, उन्होंने हाँ दे दे, अगर देना ही है तो लंका ही दे दो मेरे को, तो वो लंका ही मांग ली। फिर पार्वती जी ने बोला कि जा रावण, वो तेरे एक दिन ये लंका जो है ये भस्म हो जाएगी, और इसको एक कोई शंकर जी का अंश ही इसका भस्म कर देगा, क्योंकि हमने अपने लिए बनाई थी और तूने यही दान में मांग ली। इसलिए पंडित लोगों को तनी समझ के दान मांगना चाहिए, जो जो जो उपयुक्त हो वही दान मांगना चाहिए, नहीं तो फिर कोई काम नहीं आता, बाद में मुसीबत देता है। तो इस प्रकार से वृतांत था। अब हमारा समय जो है न्यूज की वो, और उससे पहले, न्यूज से पहले पहले हमारा समय तो चल रहा है, उसको हम पहले पूर्ण कर ले, इसके बाद अपना विषय की ओर बढ़ेंगे। तो रावण ने सीता जी का अपहरण पंचवटी नासिक महाराष्ट्र से किया और पुष्पक विमान द्वारा हम्पी कर्नाटक में पहुंच गए श्रीलंका से होते हुए। आश्चर्य होता है कि हम आधुनिक तकनीक से देखते हैं कि नासिक, हम्पी, लेपक्षी और श्रीलंका बिल्कुल एक सीधी लाइन में हैं। अर्थात ये पंचवटी से श्रीलंका जाने का सबसे छोटा रास्ता है। अब आप ये सोचिए उस समय गूगल मैप नहीं था जो शॉर्टेस्ट वे बता दे।
0: नाफी खातर भी नहीं होंगे ना?
1: ना ना वो तो अब भी नाफी खातर तो अब भी हुआ कुछ
0: नहीं, नहीं, नहीं ऐसा क्यों मैं क्योंकि ऐसा मैंने क्यों कहा
1: हाँ,
0: क्योंकि
1: हाँ।
0: आज से कुछ साल पहले घर से बच्चा जब पैदा हुआ तो स्कूल जाने लगा तो उनका ये प्रश्न था कि पापा आपके पास पहले कौन सा आईफोन था, एन था या कौन सा आईफोन था, क्योंकि अब तो आईफोन बड़ा ऊंचे नंबर से है ना
1: हाँ, हाँ।
0: तो वो लोग बच्चे लोग सोचते कि पहले कुछ और था
1: और रहा होगा,
0: जैसे कि विंडोज अख्तर नहीं तक पहले चलते थे आप और छोटे होते, ये प्रश्न वो लोग के होते हैं बच्चों के कि कैसे पहले उतना बड़ा था अब और कम हो गया। तो इस प्रकार से जैसे कि आप कह रहे हैं राजेंद्र जी आगे बढ़िए।
1: हाँ तो फिर यही बात है आगे कि सबसे छोटा और सीधा मार्ग कौन सा है, क्योंकि गूगल भी नहीं था कैसे पता चला होगा उस समय। अगर भारत विरोधियों के अहम संतुष्टि के लिए मान भी ले कि चलो रामायण केवल एक महाकाव्य है, कुछ लोग कहते हैं कि रामायण कोई सच नहीं है काव्य है,
0: काव्य जी
1: बताया गया है जो वाल्मीकि ने लिखा, तो फिर ये बताओ कि उस जमाने में भी गूगल मैप नहीं था तो रामायण लिखने वाले वाल्मीकि को कैसे पता लगा कि पंचवटी से श्रीलंका का सीधा छोटा रास्ता कौन सा है। महाकाव्य में तो किन्हीं भी स्थानों का जिक्र घटनाओं को बताने के लिए आ जाता है, लेकिन क्यों वाल्मीकि जी ने सीता हरण के लिए केवल उन्हीं स्थान का जिक्र किया जो पुष्पक विमान का सबसे छोटा और बिल्कुल सीधा रास्ता था। ये ठीक वैसे ही है कि आज से 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी को कैसे पता कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लीलो ताही मधुर फल जाम, यानी 152 मिलियन किलोमीटर। आप समझे ला मिलियन कितना कर बोले ला
0: बहुत

0: पृथ्वी से सूर्य की 152 मिलियन किलोमीटर।
1: सही बात।
0: तो कैसे उन्होंने लगाया युग सहस्त्र योजन पर भानु, युग सहस्त्र योजन मतलब 152 मिलियन किलोमीटर, जबकि नासा ने हाल में ही कुछ वर्षों में इस दूरी का पता लगाया है। नासा जो एक साइंटिस्टों का सेंटर है जहां से सब चीज़ों का पता लगाया जाता है, तो उन्होंने पता लगाया तो एकदम एक्यूरेट निकला है। तो इसीलिए कहते हैं कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, इसलिए हमारे जो रामायण है, भगवद गीता है, पुराण है भारतीय, ये ऋषियों मुनियों ने जो घोट घोट के और खींच खींच के और खोज खोज के काम किया है वो आज भी एक्यूरेट है। और विज्ञान अभी उस वहाँ तक नहीं पहुँचा, विज्ञान तो केवल देख रहा है अभी कि कैसे हो रहा है, लेकिन वहाँ वो ऑलरेडी उस समय न होते हुए भी इतनी सुविधा हो चुका था। तो अब हमारा समय जो है न्यूज़ की तरफ चलता है, बात करते हैं फिर आगे की।
1: जरूर, न्यूज़ और कमर्शियल की ओर,
0: कमर्शियल
1: वालों आप हम लोग से जुड़े रहना, क्योंकि अभी न्यूज़ और कमर्शियल के बाद हम सब फिर दोबारा और आज का ऑफिशियल विषय जो उसे लेकर हम सब आने वाले हैं। ये फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो है और हम सब यहाँ लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है दनहाग शहर से न्यूटन स्ट्रैट 25। ये कार्यक्रम जो ज्योति का प्रकाश, जिसमें हम सभी मिलकर के और कुछ न कुछ संदेश रखते रहते हैं, और शांता जी भी तैयार हो गए हैं कुछ हम सबको सुनाने के लिए। शांता जी, आज का और मौसम के अनुसार तो मौसम तो भी ठीक है ना?
2: मौसम तो ठीक रहेगा।
1: बबली जी, आप, मैं देख रहा हूँ कि कुछ सुनाने वाले हैं। हम सब अभी विषय की ओर बढ़ने वाले है, क्योंकि विषय जो आज का है, राजेंद्र जी क्या मैं वो विषय के बारे में कह सकता हूँ?
0: जरूर जरूर, विषय के बारे में तो कहना ही चाहिए।
1: एक शाम प्रेमी के लिए, तो एक शाम जो प्रेमी के लिए अभी हम सब सुनाने वाले हैं अपने सभी सुनने वालों के लिए, पर बबली जी भी यहाँ पे कुछ संदेश लेकर उपस्थित है सुनने वालों। और बबली जी, आपका माइक इस समय ऑन है, तो आप अपना संदेश जरूर सुना सकते हैं।
3: हाँ जी जरूर। कल दोपहर मैं बैंक में गया था।
1: आए?
4: अच्छा,
1: पैसा निकालने का क्या?
3: नहीं, ये जो मैं आपको सुना रही हूँ उसमें है।
1: अच्छा, एक वृतांत?
3: हाँ जी, वृतांत में है,
1: तो सुना दीजिए।
3: वहाँ एक आदमी भी अपने काम से आए थे, वहाँ वह कुछ ढूंढ रहे थे, मुझे लगा शायद उन्हें पेन चाहिए, इसलिए उनसे पूछा तो वह बोले बीमारी के कारण मेरे हाथ कांप रहे हैं और मुझे पैसा निकालने की स्लिप भरनी है, उसके लिए मैं देख रहा हूँ कि कोई मदद कर दे। मैं बोला आपको कोई हर्ज ना हो तो मैं आपकी स्लिप भर देता हूँ। उन्होंने मुझे स्लिप भरने की अनुमति दे दी, मैंने उनसे पूछकर स्लिप भर दी। रकम निकाल कर उन्होंने मुझसे पैसे गिनने को कहा, मैंने पैसे भी गिन दिए। हम दोनों एक साथ ही बैंक से बाहर आए तो वह बोले सॉरी, तुम्हें थोड़ा कर्ज तो होगा परंतु मुझे रिक्शा करवा दो, इस भरी दोपहरी में रिक्शा मिलना बड़ा कष्टकारी होता है। मैं बोला मुझे भी उसी तरफ जाना है, मैं तुम्हें कार से छोड़ देता हूँ। वह तैयार हो गए, हम उनके घर पहुँचे। 60x100 के प्लाट पर बना हुआ घर, क्या बंगला कह सकते हैं। घर में उनकी वृद्ध पत्नी थी, वह थोड़ी डर गई कि इनको कुछ हो तो नहीं गया, जिससे उन्हें छोड़ने एक अपरिचित व्यक्ति घर तक आया है। फिर उन्होंने पत्नी के चेहरे पर आए भावों को पढ़कर कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, यह मुझे छोड़ने आए हैं। फिर बातचीत में वह बोले इस भगवान के घर में हम दोनों पति पत्नी ही रहते हैं।
1: क्या कहे उसने बबली जी?
3: इस भगवान के घर में हम दोनों पति पत्नी ही रहते हैं, हमारे बच्चे तो विदेश में रहते हैं।
1: ऐसा?
3: हाँ जी, उन्होंने अपने घर को भगवान का घर बोला। तो
1: क्या संदेश?
3: मैंने जब उन्हें भगवान के घर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे परिवार में भगवान का घर कहने की पुरानी परंपरा है, इसके पीछे की भावना है कि यह घर भगवान का है और हम उस घर में रहते हैं, जबकि लोग कहते हैं कि घर हमारा है और भगवान हमारे घर में रहते हैं। मैंने विचार किया कि दोनों कथनों

0: में कितना अंतर है। और वह बोले, भगवान का घर बोला तो अपने से कोई नकारात्मक कार्य नहीं होते और हमेशा सद्विचारों से ओतप्रोत रहते हैं। बाद में मजाकिया लिहाज में बोले, लोग मृत्यु उपरांत भगवान के घर जाते हैं, परंतु हम तो जीते जी ही भगवान के घर का आनंद ले रहे हैं। यह वाक्य ही जैसे भगवान ने दिया कोई प्रसाद ही है। भगवान ने ही मुझे उनको घर छोड़ने की प्रेरणा दी। घर भगवान का और हम उनके घर में रहते हैं, यह वाक्य बहुत दिनों तक मेरे दिमाग में घूमता रहा। सही में कितने अलग विचार थे। हमको उपरोक्त प्रसंग से प्रेरित होकर अगर हम इस पर अमल करेंगे तो हमारे और आने वाली पीढ़ियों के विचार भी वैसे ही होंगे। अच्छे कार्य का परम सब जब से भी करो, वही नई सुबह है।
1: अति सुंदर संदेश जो बबली जी आपने रखे कि सर्वप्रथम कि ये देखो, जब शादी होता है ना, पति पत्नी का शादी होते हैं, तो जीवन कितना शुरू अच्छा लगता है और फिर बाद में बच्चे आ जाते हैं तो और भी क्या कहते हैं उसे कि फ्रेफ हो जाता है ना। पर समय आने के बाद, समय आने पर और सब जा कर के बच्चे जब समय पे बड़े हो जाते हैं तो फिर पंछी की तरह उड़ जाते हैं।
0: सही बात।
1: और उड़ जाते हैं तो ये होता है कि दिवाली के माता पिता अकेल दिया जलाते हैं, ऐसा हो जाता है। और ये बात हो जाता है कि हमें भी इस बात पे ध्यान देना है कि हमारे माता है, हमारे पिता है, आजकल तो हम सभी के पास हो गया है। ये फोन को क्या कहते हैं शांता जी, इसको बोलते हैं स्मार्टफोन ना, तो कम से कम स्मार्टफोन द्वारा उनसे बात कर सकते हैं, शायद थोड़ा दूर होगा, पर हमें उन्हें उन पर ध्यान देना। और ये संदेश जो आपने रखे कि बूढ़ा व्यक्ति यानी कि वृद्ध व्यक्ति ये संदेश दिए कि हम भगवान के घर में रहते हैं, और हम क्या कहते हैं,
0: हम लोग कहते हैं कि भगवान हमारे घर में रहते हैं।
1: किसी को कहे भाई चलो सत्संग चलते हैं, मंदिर या कहीं भी सत्संग हो रहा है, तो बोले कहाँ जाए, ठंडा मौसम है।
0: सबसे बड़ी बात कहेंगे समय नहीं है।
1: समय तो हाँ ये भी हो जाता है। शांता आपके पास समय होता है? हर वक्त समय। राजेंद्र जी जिसके पास तो समय का कमता है फिर भी वो समय बना करके यहाँ हम लोग के साथ रहते हैं।
0: कहते हैं किसी चीज के लिए समय हो चाहे ना हो, सत्संग के लिए समय जरूर निकालना चाहिए।
2: अगर हम कहें कि हमें समय नहीं, तो अगर हम कहें कि हम समय नहीं हमारे पास, तो हम नहीं होंगे।
1: तो हम नहीं होंगे। सही बात। राजेंद्र जी और क्या संदेश है, क्यों ना हम एक पहले एक सुंदर सा और गीत की ओर बढ़ते
3: जरूर,
1: क्योंकि पिटारा जो लेकर भारी भारी लगा लग रहा था।
3: हाँ, वो गीत के जो बोल हैं कि तुम ही मेरे मंदिर,
2: उसी के धुन,
3: श्याम बाबा की धुन पे बहुत ही अच्छा भजन जो शांता जी के पिटारा से निकलता है, वो तो खास होता ही है, लेकिन और भी खास हो जाता है जब भजन के माध्यम से होता है। तो सुनते हैं।

0: संभालो कन्हैया, आप संभालो कन्हैया, बहुत ही जो सुंदर फिल्मी तर्ज में गाना जो गाया है, उसका कोई धुन तो फिल्मी है लेकिन भजन के माध्यम से संदेश जो है एकदम दिल को छूने वाला है। तो बात करते हैं जो हमारा आज विषय है उसकी ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। श्याम यानी एक श्याम प्रेमी के लिए बहुत बड़ी बात होती है, और श्याम प्रेमी यानी जो भगवान के प्रेमी होते हैं, श्याम यानी कृष्ण, तो जो प्रेमी होते हैं उसके, वो अपनी ज़िंदगी की उस चीज़ से, जब ये संदेश लोग सुनेंगे तो अपनी ज़िंदगी की जो सोच है यानी जो अच्छी सोच है वो एकदम बदल जाएगी। तो जो हिम्मत है जो लोगों पे, वो सुनेंगे और बदलने की कोशिश करेंगे यानी अच्छी तरफ जाने की कोशिश भी करेंगे। किस्मत वाला ही सुधरता है और नहीं तो कौन सुधरता है आज के युग में, इसलिए किस्मत बहुत ज़रूरी है। आखिर आज श्याम से बात हो ही गई, थोड़ी गलतफहमी थी वो दूर हो गई। मैंने पूछा बाबा ये क्या हाल कर दिया, अपने प्रेमियों का बुरा हाल कर दिया, दीदार नहीं कर पा रहे मिलकर तेरे नाम का भजन, कीर्तन भी नहीं कर पा रहे हैं, निराश निशान क्या चढ़ाए भोग भी हम तुम्हें नहीं लगा पा रहे हैं, बहुत मन करता है लगाने को जोर जोर से तेरे नाम का जय जयकार, वो भी नहीं लगा पा रहे हैं, आप भी मंदिर में पट बंद करके बैठे कीर्तन करने के लिए नहीं हो सकते इकट्ठे, आप करो कुछ तो इस समस्या का समाधान, तेरे प्रेमी लगा सके तेरे चरणों में ध्यान। पहले श्याम मंद मंद मुस्काए, एक व्यक्ति ने, एक जो श्याम के प्रेमी थे उन्होंने इस प्रकार का जब भजन किया तो श्याम यानी कृष्ण मंद मंद मुस्काए, मुझे तो वो पहले से ही ज़्यादा खुश नज़र आई। श्याम मुस्का कर बोली, तुम तो बहुत भोले हो, बात तुम्हें मैं सारी बतलाऊंगा, थोड़ा ध्यान देना ये पहले कहना चलूंगा, फिर एक एक करके सारी बात बताऊंगा। पट मैंने अपने दरबार के लिए उनकी वजह से बंद, जो कहते थे कुछ भी हो जाए, मुझे 11 पर खाटू जाने से न कोई रोक पाए, हम तो 6 महीने पहले ही सारी टिकट बनवाई, पहले कहते थे बाबा बुलाते हैं, अब कहने लगे हम जाते हैं, मेरे दर की मर्यादा भूलने लगे थे, मेरे दर खाटों की तुलना मकबरों से करने लगे थे, यानी भगवान जो खाटू श्याम है उनकी तुलना मकबरा यानी जो
1: मकबरा बोले तो
0: जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा हुमायूं का मकबरा,
1: हुमायूं का
0: तो मकबरा के, मकबरा जैसे
1: वो लाल किले के पीछे,
0: हाँ मकबरा जैसे तुलना करने लगे थे मंदिरों की, इस प्रकार से जो बात आ रही है। दर्शनों के लिए नहीं अपनी फ्रेंड को लेकर घूमने पिकनिक मनाने मेरे धाम में आने लगे थे, मुँह में लेकर पान गुटका दर्शनों को आने लगे थे, निशान और श्याम बनी बिना सोचे समझे बिना, शुद्धता बिन भागती भाव से सिर्फ दिखाई को वो चढ़ाने लगे थे, 2-4 बार आगे बैठ देकर रुपया करके दर्शन खुद को बड़ा भक्त बताने लगे थे, मेरे ही सेवकों के वे कर्मियों, मेरे ही सेवकों में वो कमियां निकालने लगे थे, इस पट बंद करके मैं सब देख रहा था, अब कीर्तन की बात बताऊं, सबसे पहले मुझे बुलाते सबसे बाद में मुझे निकालते, सबसे पहले मुझे बुलाते सबसे बाद में मुझे निकालते, मैंने कहा ऐसा न कहो बाबा, उन्होंने कहा पहले सुनो बेटा, बीच में कुछ न कहो, सबसे पहले पंडाल में मैं आता, मुझे पूछने कोई नहीं आता, कोई आता भी तो ये पूछ कर चला जाता, बाबा का श्रृंगार कब तक होगा, मुझे बॉक्स में बंद करके लाने वाले उसको अंदाजा बताता, फिर 2-4 बड़े प्रेमी आते मेरे को सजाने को हुक्म सुनाते, कहीं तो कोई पर्दा भी न लगाता, मेरे जब श्रृंगार होता तब तक 5-7 जल्दी करो बहुत टाइम लगा दिया, पब्लिक आनी शुरू हो गई, कहते और चले जाते मेरा श्रृंगार पूरा हुआ ये ऐलान हो गया। फिर होती पूजा की तैयारी, पंडित जी पूजा करवाने को तैयार हैं, लेकिन पूजा करवाने वाला जोड़ा अभी तक फरार है। कोई कुछ नहीं कह सकता, रुपया मोटा ले रखा। पूजा का जोड़ा आया, पंडित जी से जल्दी जल्दी पूजा को निपटाया। जोत की तैयारी हो गई, जोत आने में पल भर की देरी हो गई। सब कहने लगे, बाबा नाराज हो गया। कान पकड़ो, अरदास लगाओ, 501 रुपया चढ़ाओ। भक्त जी थोड़ी कपूर डाली, जोत आ गई। मेरी जय जयकार होने लगी, जोत लेने वालों की लाइन लगने लगी। ये जो कविता है, ये कविता रूप में आज जो संदेश है, तो जो लोग समझ पा रहे होंगे और न समझे तो यहाँ तार कर सके और पूछ सके कि ये कौन रकम का भाषा तुम बतियाए लहराज। तो कविता रूप में जो लोग जानते हैं, समझ रहे हैं, बबली जी तो पूरा समझ ही रही है, संजय जी भी समझ रहे हैं, तो और जिसको नहीं समझ आ रहा तो पूछ सकते हैं। जानकारी रिश्तेदार निभाने लगी, मंडल वाले नए नए कुर्ते पहन, बड़े बड़े बिल्ले लगा पटके पहन कर आने लगी। मेरे दर्शन के बाद पहले 56 भोग के कूपन मांगने लगी। कीर्तन की शुरुआत हुई, गणेश वंदना से शुरुआत हुई, हनुमान जी की भी बात हुई, मेरे नाम का भी गुणगान शुरू हुआ। छोटे से बड़ा सिंगार आना शुरू हुआ, कुछ नेता भी आए, कुछ बड़े महाराज भी बुलाए, फूल पत्तियाँ उड़ाते हुए उनको मेरे दरबार ले आए। मोटे मोटे फूलों के हार उनको पहनाए, सोपा सजा उनको मेरे दरबार बिठाया और मेरी तरफ पीठ करके उनको बिठाया। एक को सजा गुरुजी कह रहे हैं, एक को सब गुरुजी कह रहे थे, मुझे ज़्यादा तो उनकी सेवा कर रहे थे। अचानक न जाने उनको क्या हुआ, जोर जोर से गर्दन हिलाने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसने मोर छड़ी जोर से घुमाई, मैंने सोचा ये मेरे दरबार में मेरे सामने कौन सी शक्ति आई। सबका उसकी ओर ध्यान हुआ, बाबा आया बड़ा, बाबा आया का शोर हुआ। मैं समझा मुझको याद किया, लेकिन सब कोई उस ढोंगी के चरणों में लंबा लेट हुआ। वो लगा मेरे चढ़ाव को खजाना कहकर बांटने, चमचे लगे गुरुजी के चरणों को चाटने। खैर वो अपनी करने की भोगेगा, मुझे मेरे पंडाल में आने का तर्स तुरंत याद आया। मैंने सोचा सारा कीर्तन मेरे नाम से हो रहा, मोटा मोटा चंदा मेरे नाम से मेरे प्रेमियों इकट्ठा हो रहा, मुझे ही भूल सबका स्वागत जोरदार हो रहा। खैर छोड़ो, सिंगर छोटे माहौल बनाने लगे, कुछ भोजन तो कुछ अपने पसंद के सिंगार सुनने आने लगे। पंडाल में भीड़ बढ़ने लगी, मंडल वालों की हलचल होने लगी, स्नैक्स बहुत खा लिया, भोजन की तैयारी करने लगी। बाबा को भोग लगा दो कुछ ही कहने लगी, भोग की थाली लेकर आ गई। सिंगार के भजन भोग के गवाओं ये कहने लगी, अग्निमुख है भोग ज्योति में लगाने लगी। मेरे मन भी थोड़ा खुश हुआ, बच्चों ने पिता को याद किया। फिर इत्र की बरसात हुई, जोत में इत्र डालने लगी। मैं ये सोच में पड़ गया, इनको क्या हुआ, क्या ये सब इस इत्र के पीते हैं? अगर नहीं तो क्या अपने अग्निमुख से उड़ेलते हैं? खुद के शरीर पर डलते ही जलन होती है, मेरे मुख में डालते वक्त सोचा क्या होगा, बच्चे हैं या सोच भूल गया। फिर थोड़ी कीर्तन में ध्यान दिया, मैं सज धर कर बैठा हूँ। मुझे ये गुमान हुआ प्रेमी मेरे मुझे ही निहारेंगे, ये ध्यान हुआ। मेरे नाम का जय जयकार हुआ, 56 भोग देकर डिब्बे, कीर्तन में लड़कियों को फंसाते, कीर्तन में सिंगार भजन कोई पूरा न गाता, दो चार लाइन सुनता फिर दूसरा आता। वो भजन कब झूठे किस्से कहानी सुनता, उससे बड़ा सिंगर आता, यानी गाने गाने वाला। वो चटकारेदार बातें सुनाकर कभी चीखता कभी चिल्लाता, कीर्तन में भाव भक्ति को भुला, युद्ध भूमि में जैसा माहौल बनाता कोई। इस प्रकार से जो है आज का जो कविता का कविता से श्याम के बारे में बातचीत चली, तो मुझे लगता कि बहुत सारे लोगों ने वो समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे तार के माध्यम से समझ सकते हैं। संजय जी आप कुछ पूछना चाहते हैं?
1: जरूर जरूर, अति सुंदर और संदेश जो आपने रखे राजेंद्र जी, और ये बात हो जाता है कि कविता के माध्यम से आज आपने ये संदेश को रखे। और ये जरूर कहना चाहूँगा कि जीवन के किसी के प्रति की गई भलाई व्यर्थ नहीं जाता है ना। जीवन में किसी के प्रति की गई भलाई व्यर्थ नहीं जाता है, वह कब किस रूप में आपके पास लौट कर आएगी ये सिर्फ ईश्वर जानते हैं। तो हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ेंगे और गीत के बाद फिर हम सब फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।
0: हाँ, तो बढ़ते हैं गीत की तरफ। जया किशोरी जी का जो भजन है बहुत ही सुंदर है, और उस सुंदरता के भजन उन्होंने गाया हुआ बड़ा अच्छा है।

0: कार्तिक। अब हमने चोर को पकड़ लिया।
1: चलो चलो
0: चलो भागो जल्दी। कहानी बनना है ना स्कूल में।

0: जया किशोरी जी ने, और ये सुंदर सा भजन हम सबके लिए गीत के रूप में और रखे। और शांता जी, जैसे कि अभी राजेंद्र जी ने वो कविता के रूप में हम सबको ये संदेश सुनाए ना, तो कविता किस, व्हाट इज कविता? ओके, थोड़ा नीदरलैंड्स में तो सुनाओ। तो
1: कविता जैसे मेरे ख्याल से तो हमने तो उसका रिसर्च नहीं की, पर जो रैम होते हैं एक दूसरे से, एक लाइन से दूसरा लाइन पर जो एक जैसे रैम जाए के होते हैं वो उसको कविता कहते हैं। और जब हम देखें तो हमारे जो चालीसा भी है तो वो भी जाकर वैसे ही रैम होता है, और चौपाई भी जो है तो वैसे जाए के जैसे शुरू होता है वैसे जाकर दूसरा चौपाई में वैसे ही अंत होता है।
0: शांता जी, यानी कि रैम, देखो अब इस पे जब बात हो जाता है ना, जैसे भारत देश में फिल्म बनते कितने और कितने गाना वहाँ लिखा जाता है, कोई कोई ये कोई 6,500 गाना लिख चुके, कितने उससे भी ज्यादा लिख चुके गाना, तो वो सब रैम होना चाहिए।
1: हाँ, तब तो करेगा सुंदरता भी आएगा ना,
0: उसमें सुंदरता आ जाता। बबली जी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने कभी कुछ कविता लिखे या नहीं लिखा अभी तक?
2: नहीं नहीं, मैंने कभी कविता नहीं लिखी, सुनी जरूर है, पढ़ी जरूर है, लेकिन लिखी नहीं।
0: पर शांता, शेर शायरी में जो होलांत में और रेडियो स्टेशन से चलता है, तो लोग कहते हैं कि ना सिर्फ आजकल आप गीत और गाते हैं और शेर शायरी में सबसे ज्यादा आप ही गान करते हैं।
2: हाँ जी, मैंने भी सुना है शांता जी बहुत अच्छी शेर व शायरी करते हैं और अपने से लिखते भी हैं।
0: अपने से भी लिखते भी आप?
2: ये चीज हर कोई नहीं कर सकता, ये भगवान की देन है। कोई कोई कविता लिखता है, मेरी हर कोई सिंगर बन जाता, कवि बन जाता, सब नहीं बन पाते।
0: तो शांता जी, इसमें आपके कैसे ये कला है, आपसे कैसे, कुछ बताइए इसके बारे में।
1: अभी तो जैसे बबली जी ने कहा, ये तो भगवान के देन है भी है।
0: और आप ऐसे ही लिखते रहते हैं, हम सबके सभी आकाशवाणी द्वारा लगभग 188 देशों तक ये कार्यक्रम को जो चलाया जाता है ना।
2: हाँ जी,
1: वो तो है। हाँ,
0: और हम सभी सुनते हैं और हम लोग के भी अच्छा लगता है, सुनने वालों भी। और इसमें भी ये बात, अभी एक श्रीमती जी ने टेलीफोन पे आए और उन्होंने कह रहे थे कि जो आपने जिस प्रकार से और कहते हैं संदेश रूप में, तो अच्छा लगता है सुनने को लिए।
1: तो इसी बात पे एक शेर शायरी हो जाए।
2: हाँ जी, जरूर।
0: इसी बात पे एक शेर शायरी हो जाए तो इसमें
2: ये भी कोई पूछने की बात है शांता जी।
0: क्यों, माइक आपका तो ऑन है।
1: कहते ना कि नेकी और पूछ।
2: हाँ, सही बात।
1: हाँ, तो कविता ऐसे सुन लिया कि हो जाती है गलती, हो जाती है गलती क्योंकि इंसान है हम, माफ कर देना, माफ कर देना क्योंकि दिल से बड़े नादान है हम।
2: वाह वाह शांता जी, बहुत अच्छा।
0: क्योंकि दिल से बड़े नादान है हम,
1: तो देखना आप इसमें कैसे रैम होते हैं ना, कि इंसान है हम और नादान है हम।
2: सही बात, इंसान और नादान मिल गया तो।
1: हाँ, तो ये था एक छोटी सी कविता शेर शायरी,
0: एक छोटी सी झलक और
2: शेर शायरी।
0: बबली जी, आप भी कुछ सुनाने वाले थे और मैं देख रहा हूँ कि आपके पास हो गया है।
2: हाँ जी,
0: तो आप भी कुछ सुना ही दीजिए हम सबको, ताकि हम सब के समय पे भी ध्यान देना।
2: हाँ जी, जरूर। मेरी तरफ से प्रेरणा जो मैं सुनाने जा रही हूँ।
0: प्रेरणा?
2: हाँ जी,
0: प्रेरणा
2: मीन्स
0: रोशिन का बेटी का नाम।
2: नहीं नहीं, हाँ वो नाम भी होता है प्रेरणा। प्रेरणा,
0: हाँ जी,
2: ना ना, इसका मतलब है कि सबक, हम हर किसी सीखना।
1: हाँ,
2: हम हर किसी चीज से कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो इंसान हों। हाँ जी, तो संसार में दो प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं शांता जी।
1: जी,
2: पहले अपना फल स्वयं दे देते हैं, जैसे आम, अमरूद, केला, और दूसरे होते हैं जो अपना फल छिपा कर रखते हैं, जैसे आलू। हाँ, अदरक, प्याज,
1: जमीन में जो है।
2: हाँ जी, जो फल अपने आप दे देते हैं उन वृक्षों को मनुष्य व प्रकृति दोनों सुरक्षित रखते हैं, और ऐसे वृक्ष फिर से बारंबार फल देने के लिए तैयार रहते हैं। किंतु जो अपना फल छिपा कर रखते हैं वह जड़ सहित खोद दिए जाते हैं, उनका अस्तित्व फल के साथ ही खत्म हो जाता है। हाँ जी,
0: जैसे आलू और प्याज आदि, वो यही मालक होते हैं ना।
2: हाँ जी, और वो तभी खत्म हो जाते हैं अगर उनको जमीन में से निकाल लो तो।
0: वो जो छुपा के अपना रखता है। हाँ। ये इसमें काफी गहराई वाला संदेश है।
3: बहुत गहराई वाला संदेश बबली जी ने जो दिया है कि कुछ तो अपने फल दिखा के रखते हैं, कुछ छुपा के रखते हैं।
2: हाँ जी,
3: तो जो दिखाने वाले फल है वो तो एकदम कोई भी खा सकता है, लेकिन छुपाने वाला फल तो जो लगाया है वही खा पाएगा, क्योंकि उसको क्या पता चलेगा औरों को कहाँ छुपा रखा है।
2: हाँ जी, ठीक इसी प्रकार मानवता को प्राप्त भी होने वाले फल जैसे धन, विद्या व शक्ति भी कल्याण के कार्य में उपयोग होने से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, तथा वह महान आत्मा इस लोक व परलोक दोनों में सम्मानित होती है। वहीं दूसरी ओर जो मनुष्य अपनी विद्या, धन व शक्ति को अपने स्वार्थ निहित छिपा कर रखते हैं व उपयोग करते हैं, वह कर्म के फल बीज सहित नष्ट हो जाते हैं।
0: तो राजेंद्र जी, इस बात बबली जी ने ऐसा संदेश सुनाया कि मेरा बस ये हो जाता कि राजेंद्र ये तो बिल्कुल आप पे निर्भय है।
3: हाँ।
0: आप कभी आइंडहोफ में लेस देते हो तो कभी अमस्टरडम में लेस देते हो, तो कभी यहाँ मंदिर में देते हो, तो कभी लुंडन में देते हो, इस प्रकार से आप लगे रहते हो।
3: कभी तो हाँ, लेकिन अभी जो वर्ल्ड योग इंस्टीट्यूट का जो इंस्टीट्यूट है वो तो पेपनवैक में है, लेकिन अभी बाबा जी से बात हुआ कि हम लोग उसको यहीं जो आर्य समाज मंदिर के बगल में जनवरी के बाद बनेगा, तो हम लोगों का ज्वाइंट वेंचर रहेगा और वहाँ भी रहेगा इस प्रकार का कार्यक्रम।
0: तो यहाँ भी बड़ी चीज होने वाला,
3: बड़ी चीज होने वाला,
0: जबकि आप लगातार लगे हुए हैं और हमारे सभी सुनने वालों भी आपका इंतजार में लगे रहते हैं कि ये दिन ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम आएगा और आप हम सबके अपना संदेश सुनाएंगे
3: जी।
0: और बबली जी का जो ये फल वाला संदेश, ये बड़ा इसको क्या कहे, धमाकेदार या मजेदार या स्वादिशदार।
3: हाँ, बहुत मजेदार।
0: हाँ, क्योंकि बड़ा गुप्त वाला बात हुआ ना, जो छुपा छुपा कर रखते तो वो बस एक ही दान के लिए, जो जैसे एप्पल होता वो ऋतु फल होता ना राजेंद्र जी।
3: हाँ,
0: ऋतुओं में जैसे आम आदि, आम फलों का राजा आम, अमरूद आदि, तो ये हर बार और देते रहते खाना, यानी कि हम सबको फल। और इसी प्रकार से हम मनुष्य के लिए ये संदेश भी है, अपना और ज्ञान अपना और जो बांटते रहे एक दूसरे के साथ, और हम इसी प्रकार से और जा कर के पका हुआ फल बन कर के रहेंगे।
3: हाँ।
0: तो राजेंद्र जी, क्यों ना एक दूसरा गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर समय का खेल निराला,
3: भोले बाबा शरण में तुम्हारी, इस तरफ बढ़ते हैं, समय का खेल तो निराला है ही।

भोले बाबा शरण में तुम्हारी। तो जैसे ही हमारा लागी छूटे ना का समय होता है तो पता चलता है कि हमारा जो समय है वो बढ़ रहा है आगे। तो क्यों ना सब लोगों को सुना दिया जाए कि लागी छूटे ना अब तो सनम।

0: हम लोगों का समय जो है इजाजत नहीं दे रहा है, तो बबली जी सबसे पहले इजाजत लेगी सब लोगों से।
1: सत्य सूर्य की तरह होता है, जो अधिक समय के लिए ना तो छुप सकता है और ना ही रुक सकता है। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार।
0: पिताजी।

0: कहते हैं कि डर से मत डर, डर से मत डर बल्कि कुछ अलग कर, डर से मत डर कुछ अलग कर। तो हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ सुनने वालों कि आपने ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में हिस्सा दी और साथ देने के लिए हम आपको भी बहुत से धन्यवाद कहती हूँ। स्वीकार कीजिए सेवी का शांता की भी प्यार भरीश नमस्कार।
1: दूर हूँ फिर भी दिल के करीब निशाना है तेरा। हम लोग रेडियो में यहाँ बैठते हैं फाउन रेडियो में और लोग अपने अपने घर पे या गाड़ी में सुनते हैं, दूर रहें लेकिन दिल का निशाना यानी हम लोगों से जुड़े रहते हैं दिल से, तभी तो हमारी बात को वहाँ तक सुनते हैं। तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगली बार फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय कुछ नया कार्यक्रम लेके। तब तक के लिए सबको नमस्कार।

0: जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। ये कार्यक्रम जो हम सब चलाए आज के, जिसमें भाग लिए शांता खेमाई जी, बबली आसरा जी, हमारे पैनल के पीछे भाई राजेंद्र सिंह जी, और मैं हूँ आपका सेवक संजय। और यही कहना चाहूँगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। सभी को एक शुभ दिवस। नमस्कार।
1: हाँ सर।